रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम पूजा के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको पूजा।
2: नमस्कार रिया, सभी को मेरा नमस्कार। पूर्व मंत्री नंदू बोधा के पुत्र रीनू बोधा की मौत दम घुटने से हुई है। कल रात पुलिस के चीफ फोरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर सुदेश कुमार गंगादीन द्वारा किए गए पोस्टमार्टम से ये पता चला है। रीनू बोधा को कल दिन के दौरान लानी कोलिया में मृत पाया गया। इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। रीनू बोधा का अंतिम संस्कार आज दिन के दौरान किया जाएगा। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके पिता नंदो बोधा के मकान सुल्फेगिनो नंबर 5 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा महल की सिमिट्री ले जाई जाएगी। MBC शोकग्रस्त परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। कैम्ब्रिज के जून संस्करण के लिए ए लेवल मैथमेटिक्स में भाग लेने वाले 440 कैंडिडेट्स अनिश्चितता में हैं। कारण है गणित की 2 परीक्षा पत्रों के

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीक होने की संभावना। एक बयान में मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट MES ने पुष्टि की है कि 29 अप्रैल का प्रश्न पत्र कई क्षेत्रों में समय से पहले साझा किया गया था, विशेष रूप से अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में, और इसलिए कैम्ब्रिज ने आधिकारिक तौर पर इस परीक्षा को रद्द कर दिया है और 9 जून को एक नया सत्र निर्धारित किया है। जहां तक दूसरे पेपर की बात है, जिसके मूल्यांकन मंगलवार को हुआ और जिसे भी लीक होने का संदेह है, MES ने बताया कि वो कैम्ब्रिज के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। शनि जयंती हिंदू धर्म का एक बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन भगवान शनि देव का जन्मदिन मनाया जाता है। ये दिन अमावस्या तिथि को आता है, इसलिए इसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है। साल 2026 में शनि जयंती 16 मई 2026 को यानी आज मनाई जा रही है। इस पवित्र दिन भगवान सूर्य और माता छाया यानी स्वर्णा ने शनि देव को जन्म दिया था, इसलिए ये दिन शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर स्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय तथा शाम को बादल घिरे रहेंगे। ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी और रात को भी बादल छाए रहेंगे तथा देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी। कोहरा भी छाया रहेगा ऊंचाइयों पर और हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। और दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 24 से 26, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:31 पर, सूर्यास्त शाम 5:41 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
0: तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30।
1: Your news
3: 819 kilohertz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। सांसरवास के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, देवी और सज्जनों, आप सभी को आज प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 6:04 हो रहे हैं इस समय मॉरिशस में और आप सुन रहे हैं आप ही लोगों का लोकप्रिय राष्ट्रीय स्टेशन, योर नंबर वन रेडियो स्टेशन AM2 MBC रेडियो मॉरिशस। मीडियमय बात से 19 क्लास पर हमारी आपकी प्यारी सी मुलाकात हो रही है। भोर किस बिरा में हम कहेंगे आपको शुभ प्रभात, सभी का हम स्वागत करते हैं। और आज है शनिवार, शनिवार 16 मई साल 2026 और आज हम मना रहे हैं शनि जयंती, शनि भगवान का जन्मोत्सव। सो शनि जयंती आप सबको की हार्दिक शुभकामनाएं। और शनि भगवान जो है सभी के जीवन में उसका प्रभाव होता रहता है, तो शनि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में सुख शांति हो और सभी लोग हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। और यही प्रार्थना करते हैं दोस्तों कि आज की सुबह, आज का दिन आप सभी लोगों के अच्छी तरह से बीतेगा। और ऐसे में चलिए शुरू करते हैं इस प्रातःकालीन सभा को गहलोत राजपूत महासभा के कार्यक्रम के साथ। प्रोग्राम है वैदिक नाथ।

शांति। सब प्रकार के ऐश्वर्य के अभिलाषी हे मनुष्यों, तुम परस्पर मिलकर चलो, मिलकर बातचीत करो, ज्ञानी बनकर तुम अपने मनों को भी एक बनाओ। जैसे कि तुमसे पूर्व विद्वान देव पुरुष सम्यक जानवान और एकमति वाले होकर अपना भाग प्राप्त करते रहे हैं।

आदरणीय श्रोताओं को पंडिता सरस्वती तौरिया रामबोजन का सादर नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की प्रस्तुति वैदिक नाथ कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, यह मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि मिलकर समाज और सृष्टि के कल्याण के लिए जीना ही सच्चा वैदिक जीवन है। यज्ञमय जीवन क्या है? श्रोताओं, जब यज्ञ शब्द सुनते हैं तो सामान्यतः हमारे मन में अग्नि, हवन और आहुति का चित्र आता है, लेकिन वेदों की दृष्टि में यज्ञ केवल अग्नि में घी अर्पित करना नहीं है। वास्तव में यज्ञ एक जीवन पद्धति है। यज्ञ जीवन जीने की एक दिव्य कला है, एक सोच है। यज्ञ त्याग, सेवा और समर्पण का नाम है। वेद हमें सिखाते हैं कि मनुष्य केवल अपने लिए नहीं जीता। वेद कहते हैं इदं न मम, अर्थात यह केवल मेरा नहीं है। यही यज्ञ का मूल है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए जीने लगता है तब उसका जीवन यज्ञमय बन जाता है। वेदों का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है। वेद हमें केवल पूजा कराना नहीं सिखाते, वे हमें जीवन को पवित्र बनाना सिखाते हैं। वास्तविक पवित्रता तब आती है जब विचार शुद्ध हो, जब वाणी मधुर हो, जब कर्म निःस्वार्थ हो और जब जीवन सेवा तथा करुणा से भर जाए। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र कहता है अग्ने मेरे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतिजम, अर्थ मैं उस दिव्य अग्नि की स्तुति करता हूँ जो यज्ञ को पवित्र बनाती है। यह अग्नि केवल बाहरी अग्नि नहीं है, यह हमारे भीतर की चेतना, प्रेरणा और पवित्रता की अग्नि है। सत्य को अपनाना, कर्तव्य को धर्म मानना और दूसरों के हित में जीना ही वास्तविक पवित्रता है। जब मनुष्य का मन स्वार्थ से मुक्त होता है तब उसका जीवन यज्ञमय बन जाता है और यही वेदों की सच्ची प्रेरणा है। माँ का अपने बच्चों के लिए त्याग यज्ञ है, पिता का परिश्रम यज्ञ है, शिक्षक का ज्ञान देना यज्ञ है, किसान का अन्न उगाना यज्ञ है, ईमानदारी से किया गया कार्य यज्ञ है। जब कर्म में सेवा होती है तो वही कर्म पूजा बन जाता है। वेदों ने प्रकृति को पूजनीय माना है, वह हमारे जीवन की आधार शक्ति है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांच महाभूतों के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। वेद हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, संतुलन और सम्मान का संबंध होना चाहिए।

चाहिए। माता भूमिः इत्रोऽहं पृथिव्याः। यह पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। आज संसार में अशांति, प्रदूषण और असंतुलन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मनुष्य केवल लेना चाहता है, देना भूल गया है। यज्ञ हमें सिखाता है, जितना लो उससे अधिक लौटाओ, प्रकृति का सम्मान करो, संतुलन बनाए रखो। यही वैदिक संस्कृति है। वेदों में जल को भी देवता कहा गया है। आपो हिष्ठा मयो भुवाः। जल सुख और जीवन देने वाला है। इसी प्रकार वायु, सूर्य, अग्नि और वनस्पतियों को भी वेदों में दिव्यता का स्थान दिया गया है, क्योंकि वेद हमें सिखाते हैं कि जहाँ कृतज्ञता होती है वहीं संस्कृति जीवित रहती है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। वेदों में अज्ञान को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश कहा गया है, इसलिए सूर्य आध्यात्मिक जागृति का भी प्रतीक है। तमसो मा ज्योतिर्गमया, अर्थ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वेदों में सूर्य को जीवनदाता, ज्ञानदाता, आरोग्यदाता और धर्म का प्रेरक माना गया है। सूर्य हमें यह संदेश देता है कि जैसे वह बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन को प्रकाशमय, उपयोगी और परोपकारी बनाना चाहिए। वायु हमें सिखाती है निरंतर गतिशील रहना, जीवन में शुद्धता बनाए रखना और सबके जीवन का आधार बनाना। जैसे वायु बिना भेदभाव के सबको प्राण देती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में सेवा, करुणा और उदारता अपनानी चाहिए। वेदों में अग्नि शुद्धि की शक्ति है, ज्ञान का प्रकाश है, ऊर्जा का स्रोत है और यजमय जीवन की प्रेरणा है। अग्नि हमें सिखाती है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में प्रकाश, ऊष्मा, त्याग और प्रेरणा फैलानी चाहिए, ताकि उसका जीवन स्वयं भी उज्ज्वल बने और दूसरों को जीवन को भी प्रकाशित करें। वनस्पतियों हमें त्याग और सेवा की शिक्षा देती हैं। वृक्ष स्वयं धूप, वर्षा और कठिनाइयों सहकर भी दूसरों को फल, छाया और जीवन देते हैं। वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते। वनस्पतियों हमें सिखाती हैं कि जीवन ऐसा हो जो स्वयं भी बढ़े और दूसरों को भी जीवन, सुख और शांति प्रदान करें। मनुष्य, पशु पक्षी और संपूर्ण जीव जगत वनस्पतियों पर निर्भर हैं। वेदों में कहा गया है कि वनस्पतियों पृथ्वी को जीवन देती हैं। श्रोताओ, यदि मनुष्य प्रकृति के प्रति श्रद्धा का भाव रखे तो जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन जब वह प्रकृति को केवल उपभोग की वस्तु मान लेता है तो संकट उत्पन्न होता है। इसलिए वेदों का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रकृति का सम्मान ही मानवता का सम्मान है। आज विज्ञान ने मानव जीवन को सुविधाओं से भर दिया है। संसाधन बढ़ गए हैं, तकनीक बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ साथ तनाव, अकेलापन और स्वार्थ भी बढ़ता जा रहा है। मनुष्य के पास साधन तो हैं,

परंतु शांति नहीं। भौतिक प्रगति तो है लेकिन आत्मिक संतुलन कम होता जा रहा है। ऐसे समय में वेदों का यज्ञ भाव अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सच्चा सुख लेने में नहीं देने में है। सच्ची शांति स्वार्थ में नहीं सेवा में है। और सच्ची महानता अधिकार में नहीं त्याग में है। तेन तत्येन भुंजिथा। इस उपनिषद का यह दिव्य वाक्य वैदिक संस्कृति का अत्यंत गहरा और जीवन बदल देने वाला। त्याग की भावना के साथ जीवन का उपभोग करो। श्रोताओं, यजमय जीवन केवल बड़े कार्यों में नहीं होता, छोटे छोटे कार्यों भी यज्ञ बन सकते हैं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी वृद्ध का सम्मान करना, शब्द भी किसी के जीवन में प्रकाश या अंधकार ला सकते हैं। वेदों की प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह मंत्र संपूर्ण मानवता के लिए करुणा का उद्घोष है। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति।

0: अभी आप सुन रहे थे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से कार्यक्रम वैदिक नाद।
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता।
2: सुबह के 6:18 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां। वाकवा मौसलमो हाई राइज साइडिन रोड रूट ग्रासी मौसलमो मनबोध और आसपास में जो गलियां हैं वहाँ के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 17 मई को सुबह के 8:30 से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। ओरिएटा मिरास लेन कॉमापुलेन 1 कॉमापुलेन 2 पार्टी कॉन्फिडेल रेजिडेंस ला चैपेल और आसपास जो गलियां हैं वहाँ के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 17 मई को दिन के 9 बजे से शाम के दिन के 9 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और मौसलमो सैंत आंद्रे तागो रोड और डॉक्टर मनीलाल रोड एसएसआर रोड और रॉयल रोड के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 16 मई को सुबह के 8:30 से शाम के 3:30 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और सेबास्तोपोल विलेज दे पेलग्रिन सेबास्तोपोल रोड सीताराम रोड टूरिस्ट स्ट्रीट क्लावेट रोड सुदिया रोड रेजिडेंस ओपाल बॉम्बे स्ट्रीट और आसपास के गलियों में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 17 मई को दिन के 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और फ्लोरियल डिबर्ग एडवर्ड स्ट्रीट किंग जॉर्ज 5 एवेन्यू मॉन्गो स्ट्रीट बाशलेन हेस्केट हाइट स्ट्रीट क्वीन मेरी एवेन्यू जॉन केनेडी एवेन्यू और जॉर्ज कुबेर स्ट्रीट पार्टी दे लाला लेन लुसियन दे शाजल स्ट्रीट और एनएस हारेल स्ट्रीट के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 17 मई को सुबह के 8:30 से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीएन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
3: 819 किलोहर्ट्ज़ यह है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: कहते हैं दोस्तों कि ये संसार जो है

इसमें सुख दुख दोनों हैं। सुख जब आता है तो इंसान मुस्कुराता है, पर जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है तो मनुष्य घबरा जाता है। घबराइएगा मत, जब दुखों का पहाड़ टूट पड़े उस समय आप भगवान का नाम लीजिएगा, हरि का नाम लीजिएगा, वही बेड़ा पार करेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अगर इस महामंत्र का जाप आप रोज करें सुबह या दिन के दौरान या कोई भी समय निकालकर यह महामंत्र आप कई बार अपने मुख से कहें तो दुख के ये जो बादल है वो छट जाएंगे।

प्रिय श्रोताओं, देवी और सज्जनों, संगीत प्रेमियों, हरे कृष्णा का नाम लेते रहिए और याद रहे यह भजन हमें लेकर जाएगा ठीक 6:30 बजे। ठीक 6:30 बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का हाल और स्पोर्ट्स रिव्यूज़ के बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह के 7 बजे मस्त मॉर्निंग शो में, सुबह का नजाना प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए प्रेम से AM2 MBC रेडियो मॉरिशस।

सुबह के 6:30 बजे है। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। पूर्व मंत्री नंदो बोधा के पुत्र रीनू बोधा की मौत दम घुटने से हुई है। रीनू बोधा को कल दिन के दौरान लैनिकुलिया में मृत पाया गया। इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें आज सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। 28 फरवरी को ईरान में पहली हवाई हमलों के बाद मार्च में पर्यटन आगमन स्थिर रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में 1.3% की वृद्धि दर्ज की गई।

0: फिर अप्रैल में 3.7% की गिरावट नोट की गई, लेकिन साल के पहले चार महीनों में कुल मिलाकर विजिटरों में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। कैबिनेट ने राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश करने की सहमति दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य गणराज्य के राष्ट्रपति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करना है, जो संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने और सिफारिशें देने के लिए जिम्मेदार होगा। आज 16 मई को मनाई जा रही है शनि जयंती। हिंदू धर्म में शनि देव को कर्म फलदाता और न्याय का देवता माना जाता है। आज शनिवार का दिन होने के कारण इस जयंती का महत्व अनंत गुना बढ़ गया है, क्योंकि शनिवार स्वयं शनि देव को समर्पित है। विदेश में ट्रंप का चीन में धूमधाम से स्वागत। इस बीच प्रतिद्वंदी महाशक्तियों के बीच संबंधों को नई शुरुआत दे सकती है। पूर्व मंत्री नंदो बोधा के पुत्र जीनू बोधा की मौत दम घुटने से हुई है। कल रात पुलिस के चीफ फोरेंसिक ऑफिसर डॉ. सुदेश कुमार गंगादीन द्वारा किए गए पोस्टमार्टम से ये पता चला है। जीनू बोधा को कल दिन के दौरान लानी कोलिया में मृत पाया गया। इस मामले में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें आज सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच जीनू बोधा का अंतिम संस्कार आज दिन के दौरान किया जाएगा। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके पिता नंदो बोधा के मकान सोल्फेरिनो नंबर 5 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामामेल की सिमिट्री ले जाई जाएगी। एमबीसी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। कैम्ब्रिज के जून संस्करण के लिए ए लेवल मैथमेटिक्स में भाग लेने वाले 440 कैंडिडेट्स अनिश्चितता में हैं। कारण है गणित की दो परीक्षा पत्रों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीक होने की संभावना। एक बयान में मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट ने पुष्टि की कि 29 अप्रैल का प्रश्न पत्र कई क्षेत्रों में समय से पहले लीक किया गया था, विशेष रूप से अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में। इसलिए कैम्ब्रिज ने आधिकारिक तौर पर इस परीक्षा को रद्द कर दिया है और 9 जून को एक नया सत्र निर्धारित किया है। जहां तक दूसरे पेपर की बात है, जिसके मूल्यांकन मंगलवार को हुआ और जिससे भी लीक होने का संदेह है, एमईएस ने बताया कि वो कैम्ब्रिज के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। मॉरिशस ने मध्य पूर्व में संकट को अपने इलाके के प्रतियोगियों की तुलना में बेहतर तरीके से संभाला है। कम से कम ये पर्यटन के उपमंत्री का दावा है। 28 फरवरी को ईरान में पहली हवाई हमलों के बाद मार्च में पर्यटन आगमन स्थिर रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में 1.3% की वृद्धि दर्ज की गई। फिर अप्रैल में 3.7% की गिरावट भी नोट की गई, लेकिन साल के पहले चार महीनों में कुल मिलाकर विजिटरों में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। सुमेरा अकबर अली का विवरण पेश है, रिपोर्ट प्रणव बिहारी की है।
1: मध्यपूर्व की जंग की शुरुआत से सिडनी पियर हर जुमेरात को एक क्राइसिस कमेटी की अध्यक्षता संभालते हैं। इसमें पर्यटन सेक्टर के मुख्तलिफ साझेदार और प्रधानमंत्री दफ्तर के एक जिम्मेदार भी हिस्सा लेते हैं। पिछले साल की पहली तिमाही में 4,46,586 पर्यटकों के आगमन से इस साल तक 4,64,000 सयाहों की मुर्शसामत से ये बात साफ जाहिर होती है कि अगर मध्य पूर्व में जंग नहीं होती तो ये आंकड़ा कई ज्यादा होता। सिडनी पिया बताते हैं, अगर समस्या नहीं होती तो मार्च और अप्रैल के महीने रिकॉर्ड तोड़ होते। दुबई हब के जरिए 20% से ज्यादा पर्यटक मुर्शस आते हैं। इस साल के अप्रैल महीने में पिछले साल के मुकाबले 5,000 कम पर्यटकों ने मॉरिशस का दौरा किया। जूनियर पर्यटन मंत्री के मुताबिक संकट के चलते ये प्रभाव बहुत कम है। टर्किश एयरलाइंस की 3 साप्ताहिक उड़ानों की बदौलत इस साल हवाई कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। ये हमारे लिए एक मौका है ताकि हम

0: जल्दी कदम उठाएं। टर्किश एयरलाइंस की उड़ानें भरने के कदम से विविधता लाई गई है। ये कमेटी सक्रिय है। संकट के बावजूद साल 2026 के लिए पर्यटकों के आगमन में 2% की बढ़ोतरी दर्ज होने का अनुमान है। मंत्री सिडनी पिया ने कहा कि चीन में शंघाई हब से वो प्रत्यक्ष विमानन एक्सेस के पक्ष में है, ताकि मंडियों में विविधता हो और मॉरिशस की यात्रा पर आने वाले सयाहों की तादाद में भी वृद्धि हो। पिछले साल 1,04,250 पर्यटकों ने मॉरिशस का दौरा किया था। इस साल मई में 1,15,090 पर्यटक मॉरिशस आए।
1: कैबिनेट ने राष्ट्रीय सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश करने की सहमति दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य गणराज्य के राष्ट्रपति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करना है, जो संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने और सिफारिशें देने के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और लोकतंत्र तथा संस्थानों का सुदृढ़करण शामिल है। और कैबिनेट ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्री स्तरीय समिति बनाने की सहमति दी है, जो मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों की जांच करेगी। फिर विशेष रूप से एकाधिकार और अर्ध एकाधिकार मंडी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उचित मूल्य प्रथाओं को सुनिश्चित करने और सिफारिशें तैयार की जा सके। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे: उप प्रधानमंत्री, जेंडर इक्वालिटी मंत्री, आवास और भूमि मंत्री, सामाजिक सुरक्षा मंत्री, वित्तीय सेवा मंत्री, विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री, श्रम और औद्योगिक मंत्री, व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और छोटे और मध्यम तथा सहकारिता मंत्री। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की मांग करता है, ताकि गंगा तालाब को हिंदू समुदाय के पूजा और तीर्थ स्थल के रूप में सम्मान दिया जा सके। ये बात तब सामने आई जब एक पर्यटक पर गंगा तालाब में हमला किया गया। बताया गया है कि उसे वहां मांसाहारी भोजन करते हुए देखा गया। इस घटना की जानकारी पर्यटन मंत्रालय और कला एवं संस्कृति मंत्रालय को एक पत्र के माध्यम से दी गई, जिसमें मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने दोहराया कि स्थल पर निर्देशात्मक बोर्ड लगाए जाएं। पर्यटन मंत्रालय का कहना है कि उसने टूरिज्म अथॉरिटी को आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि जल्द ही कार्रवाई की जा सके। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी प्रकार के आक्रामक व्यवहार की निंदा करता है। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट भोजराज गुरबीन को सुनते हैं, उनसे बात की सुमेरा अकबराली ने।
2: फेसबुक पर एक अलग अलग से कान बिया है जो बिन में है, और लोग मांस खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं गंगा तालाब में। ये बात तो अभी हम लोगों ने शुरू नहीं किया। हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारा जो मॉरिशस में जो गाइड है ना, जो टैक्सी ड्राइवर है, तो जब वो लोग जाते हैं टूरिस्ट को लेकर गंगा तालाब जाते हैं, तो उन लोगों को बता देना चाहिए कि यहाँ पे खाने के लिए नॉन वेज अलाउड नहीं है, और ढंग के कपड़े वहां पर you're not allowed to smoke cigarettes. तो हमारी मांग क्या है गवर्नमेंट से और मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, कि हमें जल्द से जल्द ये ठीक करना है, इन्फॉर्म करना है पूरी टूरिस्ट में, होटलों में, कि जब टूरिस्ट लोग आए कि व्हेन यू आर गोइंग टू गंगा तालाब यू आर नॉट अलाउड टू eat non-veg and you're not allowed to drink alcoholic drink. This is very important.
1: आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या है। जी हाँ, ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, और आज के ही दिन शनि जयंती मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में शनि देव को कर्म फल दाता और न्याय का देवता माना जाता है। मान्यता है कि आज ही के दिन सूर्य पुत्र शनि देव का जन्म हुआ था। आज शनिवार का दिन होने के कारण इस जयंती का महत्व अनंत गुना बढ़ गया है, क्योंकि शनिवार स्वयं शनि देव को समर्पित है। पंडित संजय नारायण पौरे को सुनते हैं, उनसे बात की सुमेरा अकबराली ने।
3: शनि देव महाराज तो न्याय का देवता है, और बहुत लोग सोचते रहते हैं कि शनि से डरना चाहिए, शनि से दूर रहना चाहिए। नहीं, अगर आपका कर्म

0: आपका काम धाम अच्छा चल रहा हो, आपका धर्म अच्छा निभा रहे हो, तो आपको शनिदेव से कभी डरना नहीं चाहिए। तो शनिदेव का पूजा पाठ बड़े सरल भाव से, ऐसा नहीं कि केवल जब आप पर शनि भारी पड़े तभी पूजा पाठ करना चाहिए, बल्कि हर शनिवार को आप एकदम शांत भाव से आराम से शनि देव का नाम लेकर पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे कि दिया जलाते हैं तो दिया तिल का तेल लेकर जलाते हैं या करवा तेल लेकर जलाते हैं, केवल बैठकर उनका नाम लेकर जप कर ले। मैं 108 का नाम जप, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ये नाम का जप भी आप लोग कर ले 108 बार, तो ये भी आप अपने जीवन को फलित कर सकते हैं। शनि देव को जितना आप मनाएंगे, जितनी आप पूजा पाठ करेंगे, उतना फल हमको प्राप्त होता है। विशेष समय निकालकर ध्यान देना चाहिए और विशेष समय निकालकर उन पर न्योछावर होना चाहिए, जैसे कि श्रद्धा भक्ति भाव से जो कुछ आप शनि देव के नाम पर कुछ कर सकते हैं ना, तो आप लोग करिएगा।
1: खबरों को हम जारी रखते हैं। उनका शिक्षा के क्षेत्र में 38 सालों का अनुभव है। वे फिलहाल SSS बॉयज में हिंदी पढ़ाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुजी गौतम लाल बिहारी के बारे में। उनकी लिखी गंतव्य नामक पुस्तिका का लोकार्पण समारोह आज कांजाबलग के कैलाशनाथ मंदिर में होगा। कोविड काल से उनका ये सफर शुरू हुआ था और आज जाकर इस पुस्तिका का विमोचन हो रहा है। चलिए गौतम लाल बिहारी जी को सुनते हैं।
2: आज मेरी पुस्तक गंतव्य का लोकार्पण समारोह है। आप सभी लोगों को ये गंतव्य समर्पित है। दशकों की हिचकिचाहट के दौर से गुजरने के बाद आखिरकार आज हिम्मत कर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी प्रथम प्रकाशित रचना गंतव्य। गंतव्य की संकलित कविताएं मेरे जीवन की गति देखी व्यष्टि एवं समष्टि की लघु बड़ी कहानियां हैं। हाँ, ये कविताएं कहानियां ही तो है मेरी, आपकी, सबकी। कहीं ना कहीं हर कविता एक कहानी कहती है। क्षणिक, आकस्मिक, स्थाई, अस्थाई भावनाओं, घटनाओं की लंबे चौड़े शब्दों में कहानी का स्वरूप न देकर मैंने इस पुस्तक में जो कहानी संग्रह है उसके अंतर्गत ऐसी कहानियों को मैंने पद्यबद्ध रूप देने का प्रयास किया है जो लघु है और जिसके पीछे एक संदेश है। गंतव्य न केवल मेरी कृति है, बस आप सब की कहानियां हैं। हम सभी इस जीवन यात्रा में चल पड़े हैं और इस जीवन यात्रा की प्रक्रिया में आप आनंद के साथ जो भी कुछ करना हो बस गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो हर किसी के जीवन के जो पहलू हैं मैंने इस संग्रह में संकलित किया है। ये न केवल मेरे अनुभव की कहानियां हैं, कविताएं हैं, बल्कि आप सब लोगों की कविताएं हैं, कहानियां हैं। आप सबको समर्पित है गंतव्य।
1: विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के पहले दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका भव्य स्वागत किया। ये एक ऐसी यात्रा है जो प्रतिद्वंदी महाशक्तियों के बीच संबंधों को नई शुरुआत दे सकती है। ट्रंप का स्वागत करने के लिए इस दौरान एक बैंड अमेरिकी राष्ट्रगान के साथ हुआ उनका स्वागत और चीन और अमेरिका के झंडों के साथ खड़े जय जयकार कर रहे स्कूली बच्चों को हेलो कहने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप दो बार रुके। और आपको बता दें कि 15वीं शताब्दी के टेंपल ऑफ हेवन के अपने दौरे पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि चीन खूबसूरत है। और अब चलिए आखिर में जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान सुबह के समय तथा शाम को बादल घिरे रहेंगे, हल्की वर्षा होगी ऊंचाइयों पर। रात को भी बादल घिरे रहेंगे। देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर मौसम बरसाती रहेगा और ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके

के 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं और दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 24 से 26 शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान

6:47 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड लॉन्ग माउंटेन में 62 साल के 62 years old श्री मुनिराज रामजतन, जिन्हें लोग विवेश नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। कि अर्थे आज दिन के 12 बजे इनकी बहन संध्या मिश्री के मकान रॉय रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर थियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून। मौसल मोतारा कैस्ट्रेल लेन तेरूज में 59 साल के 59 years old जनाब अब्दुल बासिया मंगरू, जनाब अब्दुल बासिर मंगरू, जिन्हें लोग करमचंद नाम से जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज शाम 4 बजे इनके मकान मौसल मोतारा कैस्ट्रेल लेन तेरूज से उठाकर दफनाने के लिए बुआ मौशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। एवेन्यू बेल इतवाल पॉम्पलेमूस में 69 साल के 69 years old श्री रोनिताश रामदीन, जिन्हें लोग सुरेश नाम से जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके मकान एवेन्यू बेल इतवाल पॉम्पलेमूस से उठाकर कालबास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। रूट 15 रॉयल रोड प्रोविडेंस कच्चे मिलिटिया में 102 साल की 102 years की श्रीमती, ये शोक समाचार फिर से सुन लीजिए। रूट 15 रॉयल रोड प्रोविडेंस का चिमरितिया में 102 साल की 102 years old की मिसिज मैमून सुधू, पैदाशी नाम सुकू, और जिन्हें लोग सादारिन नाम से भी जानते थे, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज दिन के 11 बजे इनके बेटे अब्दुल रहीम सुदू के मकान रूट 15 रॉयल रोड प्रोविडेंस का चेमिलिटिया से उठाकर दफनाने के लिए अलमा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। एवेन्यू बैग हॉलीवुड नंबर 1 वाकवा में 82 साल की 82 years old कुमारी देवरानी सुकलाल, जिन्हें लोग गोरे नाम से जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थे आज दिन के दो बजे इनके मकान एवेन्यू बैग हॉलीवुड नंबर 1 वाकवा से उठाकर थामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। एवेन्यू ब्रिगेड बॉम्बू में ब्रिगानल बॉम्बू में 73 साल की 73 years old श्रीमती रुकमीन करीम सिंह, जिन्हें लोग लीलावत नाम से भी जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थे आज दिन के एक बजे इनके मकान एवेन्यू ब्रिगानल बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंट सुविया बॉम्बू किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। कुजन लेन कॉटोरेल में कुंजन लेन कॉटोरेल में 60 साल के 60 years old श्री महेश्वर रामदीन, जिन्हें लोग सत्यलाल नाम से जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी माँ कुलवंती रामदीन के मकान कुंजन लेन कौतुरैल से उठाकर कौतुरैल के श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। लाफोंटेन रोड मद ऑस्ट्रेलिया में 70 साल की 70 years old

श्रीमती भुवनेश्वरी देवी देवी, भुवनेश्वरी देवी देवी जिन्हें लोग नारायणी नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे सजन बुल्डन के मकान लाफोंटेन रोड मध ऑस्ट्रेलिया से उठाकर ला शापेल रोड मध ऑस्ट्रेलिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। ब्रांच रोड मोचिदा सेंट जुलियन दो मामे 89 साल की 89 years old श्रीमती लालरू लक्सिमो, श्रीमती लालरू लक्सिमो पैदाशी नाम लक्सिमो और जिन्हें लोग गहिरा नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे माजो लक्सिमो के मकान ब्रांच रोड मोचिदा सेंट जुलियन दुतमाओ से उठाकर मेजिन कौदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। पोलिवर्जिनी स्ट्रीट लेस्पेरांस का अच्छे मिलते में 75 साल के 75 years old श्री जानेश्वर बीस बिहारी, श्री जानेश्वर बीस बिहारी जिन्हें लोग दनेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थे आज दिन के एक बजे इनकी पत्नी बिजवंती बीस बिहारी के मकान पोलिवर्जिनी स्ट्रीट लेस्पेरांस का अच्छे मिलते से उठाकर लेस्पेरांस का अच्छे मिलते की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। वाल्टोन लॉन्ग माउंटेन में 83 साल की 83 years old श्रीमती कयोली मोहन जिन्हें लोग देवरानी नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके भाई सत्यम दीनाराम के मकान वाल्टो लॉन्ग माउंटेन से उठाकर वामाशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। अलेब्रियन कास्टेल में 48 साल के 48 years old श्री विनय जगनारायण जिन्हें लोग विनय नाम से अधिक जानते थे और जो पहले पुलिस सर्जेंट थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी पत्नी कृष्णी जगनारायण के मकान अलेब्रियन कास्टेल से उठाकर अलेब्रियन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। और सीतेतायाक में विलेज हॉल के पास 93 साल की 93 years old श्रीमती दयावादी कारूपानेन पैदाशी नाम चेलेन और जिन्हें लोग अमाई दया नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे इंदिरन काहूपानेन के मकान सीतेतायाक से उठाकर तायाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 11 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 6:56 और 36 सेकंड हुए हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़।

लिवरपूल फुटबॉल क्लब के इतिहास का सबसे बदतर और सबसे शर्मनाक साल घोषित किया जा सकता है। एक और हार, एक और खराब रैकेट और लिवरपूल के लाल फिर लुढ़क गए, फिर लटक गए। एस्टन विला 4, लिवरपूल 2। कल प्रीमियर लीग का 37वां सप्ताह आरंभ हुआ इस हार के साथ लिवरपूल के लिए, और चैंपियंस लीग स्पॉट अभी तक बैलेंस में है लिवरपूल के लिए, जबकि एस्टन विला क्वालिफाइड हो गया है, चौथा स्थान उसके लिए एकदम पक्का। एस्टन विला 4, लिवरपूल 2। अटैक हो या डिफेंस, सब में सत्यानाश, यहां तक कि लिवरपूल के महादिफेंडर वर्जिल वान डाइक को महास्कोरर बनना पड़ा। दोनों ही गोल उसी ने स्कोर किए, दोनों में हेडर, जबकि उधर से मोगान रोजर्स फिर बना विलेन, ओली वाटकिंस ने दो गोल दागे, और अंत में 89वें मिनट पर कप्तान जॉन मैकगिन का सुपर्ब चिप। एस्टन विला 4, लिवरपूल 2। डिफेंस में, मिडफील्ड में, अटैक में कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी सही नहीं। द विलेन्स क्वालिफाइड हो गए हैं। उन्नई एमेरी ने पिछले 10 सालों में पहली बार लिवरपूल को हराया। इस साल क्लब की ये 19वीं हार है। अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशन, सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर 19 बार लिवरपूल इस बार हार गया है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, एक नया रिकॉर्ड है। केवल 17 वर्षीय रियो एनगुमोहा थोड़ी बहुत लाज रख पाया, वो लिवरपूल का भविष्य है, जबकि ऑने स्लॉट एक भारी भूल है। अब बस एक मैच बचा है, अगले रविवार को लिवरपूल खेलेगा अपने एनफील्ड में ब्रेंटफोर्ड के विरुद्ध। उसको ये मैच जीतना ही होगा यदि लिवरपूल को यूरोपियन चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाइड होना है। लेकिन अभी भी खतरा बने हुए हैं, खतरे हैं सामने बोर्नमुथ और ब्राइटन के रूप में। लिवरपूल के पास है अभी 59 पॉइंट्स, बोर्नमुथ 55 अंक, ब्राइटन के पास 53, यानी ब्राइटन और लिवरपूल के बीच 6 अंकों का अंतर। यदि ब्राइटन ने अपने दोनों मैच जीत लिए और लिवरपूल अपना आखिरी मैच हार गया तो बात खलास। बोर्नमुथ और लिवरपूल के बीच केवल 4 अंकों का अंतर। अभी बोर्नमुथ के सामने 2 मैच खेलने हैं और 4 अंकों की दूरी है, सो लिवरपूल को बस अपना आखिरी मैच जीतना है। लेकिन अब तक एकदम गड़बड़। सो लीग टेबल में आर्सेनल पहले स्थान पर, अभी उसके पास है 79 पॉइंट्स, मैनचेस्टर सिटी के पास है 77, दोनों ने 36 मैच खेले हैं, 2 अंकों का अंतर। मैनचेस्टर यूनाइटेड 65, एस्टन विला 62, ये 4 क्लब यूरोपियन चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं। एक और स्थान अभी बचा हुआ है लिवरपूल, बोर्नमुथ और ब्राइटन के बीच ये संघर्ष होगा। सो इतना सब कुछ कल के इस एक मैच को लेकर। आज प्रीमियर लीग में कोई भी मैच नहीं है, क्योंकि आज शाम 6 बजे एफए कप का महाफाइनल खेला जाएगा चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के बीच। सो सिटी एक और ट्रॉफी आज उठाएगी या फिर चेल्सी बर्बाद करेगा, देखते रहिए और सुनते रहिए। शाम 6 बजे एफए कप का फाइनल, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। जबकि प्रीमियर लीग का 37वां सप्ताह 37वीं कल रविवार को जारी रखा जाएगा निम्न मैचों के साथ। कल शाम 3:30 बजे अर्ली किक ऑफ, 3:30 PM मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंगहम फॉरेस्ट, ये कल का पहला मुकाबला होगा। फिर शाम 6 बजे से ब्रेंटफोर्ड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, एवर्टन का मुकाबला सन्डरलैंड से, लीड्स यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन, वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स खेलेगी फुलहम के विरुद्ध। जबकि कल का लेट मुकाबला, कल रात 8:30 बजे न्यूकासल यूनाइटेड खेलेगी वेस्टहम के विरुद्ध। और इस सप्ताह का एक और मुकाबला सोमवार रात 11 बजे खेला जाएगा आर्सेनल के एमिरेट स्टेडियम में, जब आर्सेनल खेलेगा बर्नले के विरुद्ध। सो आखिरी मुकाबला होगा इस 37वें हफ्ते का आखिरी मुकाबला मंगलवार रात, मैनचेस्टर सिटी एवे जाएगी बोर्नमुथ के मैदान पे, जबकि चेल्सी खेलेगी टोटेनहम हॉटस्पर के विरुद्ध। टोटेनहम के लिए भी ये मुकाबला भी एकदम निर्णायक साबित हो सकता है। टोटेनहम के पास अभी हैं 38 पॉइंट्स, वेस्टहम के पास 36, अभी भी बहुत कुछ देखना सुनना खेलना बाकी है।

आज शाम 3:30 बजे स्कॉटिश प्रीमियर लीग का भी फैसला तय होगा। आखिरी मैच, आखिरी मुकाबला सेल्टिक वर्सेस हार्ट्स। पहली बार के लिए कई सालों बाद हार्ट्स पहले स्थान पर है। आखिरी ये सप्ताह है, हार्ट्स के पास है 80 पॉइंट्स, सेल्टिक के पास है 79, एक अंक का अंतर। सेल्टिक के मैदान में ये मैच होगा। जीत की स्थिति में सेल्टिक फिर चैंपियन बन जाएगा, लेकिन एक ड्रॉ पर्याप्त होगा हार्ट्स को चैंपियन बनने के लिए पहली बार उसके इतिहास में। कल के खेले गए मैचों में, कल लीग टू के प्रमोशन प्लेऑफ के सेमीफाइनल में जो मात्र मैच खेला गया, उसमें दो मैच खेले गए, उसमें साल्फोर्ड और ग्रिम्सबी के बीच मैच ड्रॉ रहा 2-2, और एक्स्ट्रा टाइम के बाद साल्फोर्ड की जीत हुई 4-3 से। फिर नॉट्स कॉन्टी भी 0, चेस्टरफील्ड 0, एग्रीगेट कुल मिलाकर नॉट्स कॉन्टी जीत गई 1-0 से। फिर बाकी जो चैंपियनशिप है उसमें उनमें भी एक दो मैच खेले गए। फ्रांस के प्ले ऑफ में सेंटेचेन और रोडेज ने मैच ड्रॉ किया 0-0, सो सेंटेचेन की जीत हुई पेनाल्टी पर 7-6 से। और इंडियन सुपर लीग में मुंबई ने एवजाकर मोहम्मदन को 4-0 से परास्त किया। इतना सब कुछ फुटबॉल को लेकर। टेनिस की बात करें तो विश्व नंबर 1 यानिक सिनर अभी सेमीफाइनल, इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में जीते अभी भी नहीं जीत पाया है, क्योंकि तीसरा सेट रोक दिया गया बारिश के कारण। एक समय पहले सेट में यानिक सिनर की जीत हुई 6-2 से डैनिल मेदवेदेव के विरुद्ध, फिर दूसरे सेट में डैनिल मेदवेदेव की जीत हुई 7-5 से, और एक तीसरा सेट खेला जा रहा था 4-2 से यानिक सिनर की जीत हो रही थी, लेकिन तभी बारिश ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। सो ये मैच, ये तीसरा सेट आज खेला जाएगा सेमीफाइनल में, डैनिल मेदवेदेव वर्सेस वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर। क्रिकेट की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग के मैच जारी है। कल जो मात्र मैच खेला गया उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से परास्त किया। आज इसी आईपीएल में एक और महामैच खेला जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला आज ईडन गार्डन्स में गुजरात टाइटन्स से होगा। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।

0: आज की सूचनाएं।
1: आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है, श्री कबीर काउंसिल द्वारा एक ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इस सैटरडे 16 मई को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक लंदन वे वाक्वा सुपरमार्केट के पार्किंग एरिया में। प्रभु ग्रुप एंड कृष्णानंद काली माता मंदिर प्लेंडे घोष में शनि पूजा का आयोजन हो रहा है 17 मई 2024 को। भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री वेंकटेश्वरा भक्तुला संगम द्वारा स्पेशल शनि देव पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस शनिवार 16 मई को सुबह 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। श्री सनातन धर्मिया ब्राह्मण महासभा द्वारा संस्कृत परीक्षा के फीस कलेक्शन का आयोजन किया जा रहा है। इस शनिवार 16 मई 2024 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक। फीस कलेक्शन के सेंटर्स हैं क्यूपिक कॉलेज, हिंदी भवन लॉन्ग माउंटेन और मॉडर्न कॉलेज सेंट्रल फ्लैग। सभी संस्कृत कैंडिडेट्स से निवेदन है कि समय पर पहुंचकर अपनी फीस जमा करें। रुद्रनाथ मंदिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और श्री अजय यज्ञिक ग्रुप जो इंडिया के सहयोग से अधिक पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष में एक महीने का रामायण पाठ और प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। ये पवित्र कार्यक्रम शनिवार 16 मई से संडे 14 जून 2026 तक हर शाम 7 बजे से रात के 9 बजे तक होगा। एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार 16 मई 2026 को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक लंदन वे वाक्वा पार्किंग के सुपरमार्केट में। चेतक ग्रुप और अन्य ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महाराणा प्रताप सिंह के जन्म जयंती पर उपलक्ष्य में

एक मेगा ब्लड डोनेशन और फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम शनिवार 16 मई 2026 को सूर्यवंशी सोशल हॉल सेंट्रल फ्लैक में दोपहर 3 बजे से शाम के 5:30 बजे तक होगा। श्री वेंकटेश्वरा भक्तुला संगम बोकलीमा द्वारा एक स्पेशल शनिदेव पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस शनिवार 16 मई 2026 को सुबह 9:30 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक। और एक सूचना है कि आले भैया हिंदू युवक संघ में 17 से 24 मई 2026 तक श्रीमद् महा भगवत कथा का आयोजन पूजा बाबाजी गिरीश शर्मा जी के मुख से होगा। 17 मई को कलश यात्रा और कथा प्रारंभ होगी। 18 से 23 मई भजन कीर्तन और 24 मई को पूर्णाहुति यज्ञ होगा। सभी भक्तों से आगमन है कि अपने परिवार को लेकर जरूर आएं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नू त्रावाय नू लावेनिय। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में डीना आराबी बेकरी लिमिटेड जोन रॉयल रोड मेजिन कॉन्डमास्क में पावल जाला दूगो मेल बेकरी ऑपरेटर्स खोजता जिनकर एक बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न तो टेलीफोन करिया 77 05 61 54। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 21 मई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सेक्टर में तुलसी फर्नीचर लिमिटेड जन बेले रिविया सेश में पावल जाला 3 मेल ग्रेड 1 कारपेंटर्स खोजता जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न तो टेलीफोन करिया 52 55 23 03। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 मई 2026। टूरिज्म के सेक्टर में शुगर वर्ल्ड लिमिटेड जन बोप्लान पॉम्पलेमूसेस में पावल जाला एगो फीमेल क्लीनर खोजता जेकर 1 से 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोन करिया 204-08-08। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 22 मई 2026। एग्रीकल्चर के सेक्टर में मोजांडे जी लिमिटेड जन एवेन्यू दे बेंगालिस मोचिदा में पावल जाला 3 मेल ग्रेड 2 स्किल्ड फार्म वर्कर्स खोजता जिनकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोन करिया इन नंबर पर 52 53 57 51 न 57 87 47 62 न तो हौजे पहुंच जाइया। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 20 मई 2026। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में लाइट हाउस टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड जन रॉयल रोड लालमाची में पावल जाला एगो मेल प्लम्बर खोजता जेकर फोम सैंग बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न तो टेलीफोन करिया 417-30-69 न 52 57 05 70। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 23 मई 2026। जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजत हुआ त ई भी सुनते चला कि लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के तले लोकल गवर्नमेंट सर्विस एगो कारपेंटर खोजता। एप्लीकेशन करे खातिर यही वेबसाइट विजिट करिया http://ljsa.gov.org और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 18 मई 2026। एगो प्राइवेट हाउसहोल्ड पीतों के रिज्यूमे में एगो सोफे खोजता जन कैंडिडेट एंटरेसे होवन चाहेला 10 बरिस के एक्सपीरियंस होई के और एप्लीकेशन करे खातिर गुडलैंड्स ईआईसी टेलीफोन करिया ई नंबर पर 282 59 17 न 282 59 18। त ई रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से नू त्रावाय नू लावेनिय।
2: Malou la caisse, me tiens d'en pouce.

0: mal pays mobile, me tiennent en puce. Mal restaurant, me tiennent en puce.
1: Hé, hey, calmé. Avec le Tri Mighty Money, t'es capable de gagner des millions de roupies in the pocket. Jusqu'à le 10 juillet, tout au paiement et top up te fait à l'eau Mighty Money, donne-toi sens, gagne des millions, 500 000 ou 300 000 roupies cash et plein les autres cadeaux.
2: Allô, qui te dit
0: Eh bien avec Mighty, in the pocket.
3: Mighty Money est un service de Cell Plus Mobile Communication Limited qui opère sous licence de la Banque de Maurice. Termes et conditions applicables.
4: Mighty, Mighty CIESA!
5: सुबह 7:12 सौ रहे रेडियो मॉरिशस पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। और रबली जी सुनिए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। रोशब्रुन, मोसेलमों, सैन डैनियल और आसपास में जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 16 मई को सुबह 11:30 से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। Saint Pierre, La Laura Malinga, Beaubois, Nouvelle Découverte, Symmetry Road, Sia Constance, NSDC Vignol, Morcellement Azali, के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 17 मई को सुबह के 11:30 से शाम के 3:30 के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। रोजेल अवेन्यू टूरो, डॉक्टर प्यारू अवेन्यू, नाबी अवेन्यू, फिलाओ अवेन्यू, बैठका अवेन्यू, सेंट एन अवेन्यू बैतू और आसपास में जो गलियाँ हैं वहाँ के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 17 मई को सुबह के 11:30 से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और मोरोश, बकोरी सिंह, स्कूल लेन, वेर्ज बिसाम्बा, पार्टी रेमो रिवे और आसपास में जो गलियां हैं वहां के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 16 मई को दिन के सुबह के 11:30 से 9 बजे के बीच और दोपहर बाद के 1:30 से 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और मोसेलमों तानाकुदी, मोसेलमों लाइमुन और एनएचडीसी रियांबेल सुरीनाम के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार 18 मई को दिन के 9 बजे से शाम के 3 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबी सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां।

नई सुबह की शुरुआत, नए दिन का आगाज AM2 MBC रेडियो मॉरिशस के साथ। सुबह हो या दिन, रात सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, 24 घंटे सुनिए आप ही लोगों का नंबर वन रेडियो स्टेशन MBC रेडियो मॉरिशस, जहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलते हैं, मनोरंजन से लेकर शिक्षा तक, शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक, आप लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन कार्यक्रम 24 hours a day 7 out of 7। सुबह का वक्त है तो सभी दोस्तों को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मॉरिशस। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। ये है आपका मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजराना, सुबह का नजराना अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक। और आशा करते हैं कि आपको कल रात अच्छी नींद आई होगी और अब मीठी मीठी नींद से जागने का समय आ गया। यस यस यस, सुबह का वक्त है और नींद से जागना तो पड़ेगा। जानते हैं कि सर्दी का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, मन तो करता है कि बस यूं ही सोते रहे, परंतु क्या करे नींद से जागना तो पड़ेगा। सो वेकअप, जाग जाइए मीठी मीठी नींद से और चले आइए MBC रेडियो की लहरों पे। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम लाए हैं सुबह का नजर प्रोग्राम, जहाँ पर चलते प्यारे प्यारे गाने, लवली म्यूजिक, बॉलीवुड न्यूज, खाना खजाना, छोटी सी कहानी और एंड सो मच मोर। तो आशा करते हैं कि आज की मॉर्निंग की शुरुआत एक मुस्कुराहट से हुई है, पूरा दिन आप यूं ही मुस्कुराते गाते रहेंगे। ऑलराइट, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, अच्छा हो।

0: होगा। जी हाँ, नकारात्मक विचारों को मन से दूर निकालिए, अच्छे अच्छे विचारों को सोचिए, अच्छे अच्छे लोगों से मिलिए, दोस्ती कीजिए और जिंदगी में हमेशा मेहनत और लगन से काम कीजिए। और आप देखिए, मेहनत और लगन से काम करने से फल बड़ा ही मीठा होता है। सुबह के 7:17, चलिए शुरू करते हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम को आज के चिंतन के साथ डॉक्टर जमन की जुबानी।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: शुद्ध न्याय में शुद्ध दया होनी चाहिए। न्याय का विरोध करने वाली दया दया नहीं बल्कि क्रूरता है।

दोस्तों आज शनिवार सोलह मई को मना रहे शनि जयंती। शनि भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम है। और शनिदेव हिंदू धर्म में न्याय के देवता माने जाते हैं। उन्हें कर्म फल दाता भी कहा जाता है, यानी इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फल देने वाले देव है शनिदेव महाराज। शनि का संबंध ग्रह शनि सैटर्न से भी माना जाता है। मान्यता है कि शनिदेव अनुशासन, मेहनत, धैर्य और न्याय का प्रतीक है। वे अहंकार, अन्याय और गलत कर्मों को दंड देते हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीता है उस पर शनि की कृपा मानी जाती है। लोग शनिदेव की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं को कम करने की कामना होती है। शनि की साढ़े साथी यानी कि धैया जैसी ज्योतिष अवधियों में लोग मानसिक शांति चाहते हैं। न्याय, स्थिरता और कर्म के महत्व को याद रखने के लिए भी शनि पूजा की जाती है। शनिवार को शनिदेव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कई लोग तेल चढ़ाते हैं, दान करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं क्योंकि मान्यता है कि इससे भय और नकारात्मकता कम होती है। और बेशक शनिदेव को क्या पसंद है, प्रसाद के रूप में उन्हें काला तेल चढ़ाते हैं, सरसों का तेल, उड़द दाल यानी कि काली उड़द, गुड़, काला कपड़ा, भुने चने, खिचड़ी, काले तिल के लड्डू और नारियल चढ़ाते हैं। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और गरीबों या ज़रूरतमंदों को दान देना भी शनि पूजा का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। सो आज जितने भी भक्तगण हैं शनि देव की पूजा कर रहे हैं और पीपल के पेड़ में जो है उसकी पूजा की जाती है, सो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, आपका व्रत सफल हो। श्रोताओं, जितने भी लोगों ने शनिदेव का व्रत रखा है आज, तो आपका व्रत सफल हो और आशा करते हैं कि शनिदेव की उनका आशीर्वाद उनके अनुकंपा पर बनी रहे और जीवन के सभी कष्ट जो है दूर हो, जीवन में हम सभी को सुख शांति मिले। हे शनिदेव महाराज, सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। चलिए सुनते हैं एक शनिदेव पर एक प्यारा सा भजन।

श्रोताओं लीजिए सुनिए एक जरूरी सूचना। जागृति काली मंदिर प्रभुदयाल रो जो माता बहन पाया जाता है सभी लोगों को आमंत्रित करता है वार्षिक काली पूजा में भाग लेने के लिए। आज शनिवार 16 मई को और कल रविवार 17 मई को वहां पर पूजा की जा रही है और आज शाम के 7 बजे से रात के 9 बजे तक कलश स्थापना, पूजा और अभिषेक और कीर्तन, और कल रविवार 17 मई को दिन के 9 से 12 बजे तक काली पूजा, यज्ञ, आरती और महाप्रसाद का वितरण होगा। और व्यास वाचक होंगे श्री संदेश सिरपत जी और आचार्य श्री

महेश जोशी जी। तो ज़रूर इस काली पूजा में भाग लीजिएगा, सभी लोग आमंत्रित है इस काली पूजा में भाग लेने के लिए, जो कि लग रहा है प्रभुदयाल रोड माताबा के जागृति काली मंदिर में। सुबह का नजराना प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस पर। जी हाँ, रेडियो मॉरिशस आप ही लोगों का मनचाहा रेडियो चैनल है कि नहीं और ऐसे ही मुस्कुराते गाते रहिए, हमारा साथ देते रहिए। दोस्तों, कल शुक्रवार 15 मई को दुनिया भर में मनाया गया परिवार दिवस। हर साल इस दिवस को मनाते हैं, वर्ल्ड फैमिली डे, इंटरनेशनल फैमिली डे। और इस दिन का उद्देश्य होता है परिवार के महत्व, आपसी प्रेम, सहयोग और समाज में परिवार की भूमिका को सम्मान देना है। और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने शुरू किया यह इंटरनेशनल फैमिली डे। और इस दिन को क्या हम करते हैं, चिंतन मनन करते हैं परिवार के महत्व के बारे में। वैसे तो परिवार के साथ प्रेम, सम्मान और समय बिताकर मनाया जाता है। लोग अलग अलग तरीक़ों से इस दिन को मनाते हैं। पूरे परिवार एक साथ भोजन करते हैं, घर में मिलकर खेल या बातचीत करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों के साथ समय बिताते हैं, परिवार के साथ घूमने जाते हैं। और यह जो परिवार दिवस है, हमें याद दिलाता है कि इंसान दुनिया में अकेला नहीं आया है, वो समाज में आया है। तो अपने परिवार के साथ, माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें इतना योग्य बनाते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। और जब पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के प्रति कुछ न कुछ अवश्य करें। और आजकल पारिवारिक मूल्य जो है लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि ये एक मटेरियल वर्ल्ड सा बन गया है, सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त है। पर आपको बता दें, याद रहे कि परिवार अगर ना होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। सो ऑलवेज रिमेंबर, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली इज़ अ रूट कोज ऑफ एवरीथिंग। जो अगर हमारा जो परिवार नहीं होता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। तो सभी हम सभी यहाँ पर एमबीसी पर भी हम एक परिवार के समान हैं। जब रात दिन आपकी प्रोग्राम करते हैं, आप लोगों का स्ट्रेस हम दूर करते हैं प्रोग्रामों के जरिए, तो एमबीसी और श्रोताओं का भी एक परिवार है, एमबीसी फैमिली है कि नहीं। सो परिवार दिवस बहुत बहुत अभिनंदन हो, कल हमने मनाया। और असल में देखा जाए तो एवरी डे शुड बी फैमिली डे है कि नहीं। रोज़ हमें परिवार दिवस मनाना चाहिए। ये नहीं कि केवल एक दिन हम परिवार से मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, परिवार के साथ घूमने जाते, नहीं, ऐसा रोज़ होना चाहिए। हम जानते हैं कि आजकल हमारे पास उतना समय नहीं होता है, पर थोड़ा सा समय अगर आप रोज़ निकालें अपने माता पिता, अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, दोस्तों के लिए, तो कितनी अच्छी बात होती है ना। और कहते हैं ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और फैमिली का दूसरा नाम ही है शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो जितने भी लोगों ने कल परिवार दिवस मनाया और आज भी मना रहे और मनाते रहेंगे, आप सभी के लिए प्यारा सा गाना, जितने भी लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं, ये गीत आपके नाम, मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।

0: मेरा छोटा सा संसार, छोटा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार।
1: मेरा छोटा सा घर, मेरा छोटा सा संसार। घर चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, पर अंग्रेजी में कहते हैं होम स्वीट होम, और अपना परिवार तो अपना परिवार होता है। और अभी कुछ समय पहले हमने जिक्र की परिवार दिवस के बारे में, सो फैमिली कम्स फर्स्ट, है कि नहीं। और अब रेडियो प्रोग्रामों का झरोका, सो आज रेडियो मोशन पर कौन कौन से प्रोग्राम रखे गए हैं। अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम, 7:45 बजे होगा ज्ञान सरोवर प्रोग्राम हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से, भोजपुरी समाचार 8 बजे, 8:10 पर सुबह का नजराना पार्ट टू डेडिकेशन टाइम, 9 बजे समाचार, 9:03 पर किरण जान की चट्टू के साथ प्रोग्राम पिक टाइम मैगजीन आज की चर्चा, 10 बजे समाचार, 10:02 पर अनवर के साथ उर्दू प्रोग्राम, 11:03 पर तमिल कार्यक्रम पूवना के साथ, दिन के 12:15 बजे बालानंदम प्रोग्राम वंदना के साथ, दिन के 1 बजे शीरीष के साथ मराठी प्रोग्राम, दिन के 2:15 बजे गीत बहार प्रोग्राम अमिता के साथ, आपके पसंद प्रोग्राम सुरेखा के साथ 2:15 से शाम के 4 बजे तक, 4:02 पर अलका जी के साथ प्रोग्राम खेल खिलाड़ी, उसके बाद शाम के 5 बजे रोशन हर नाम से खेल खिलाड़ी शाम के 5:02 पर, शाम के 6 बजे समाचार, शाम के 6:30 बजे डेविड के साथ चाइनीज प्रोग्राम, रात्रि के 7 बजे तमिल प्रोग्राम पुवना के साथ, रात्रि के 7:30 बजे गिरी शालिनी के साथ तेलुगु कार्यक्रम, रात के 7:50 पर बापू भाई के साथ मराठी प्रोग्राम, रात के 8:10 पर भजरी प्रभु का नाम अनिता की पेशकश में, रात के 8:40 पर सैदा की पेशकश में महफिल शब प्रोग्राम, और रात के 9 बजे से 11 बजे तक रत्ना पदारत की पेशकश में प्रोग्राम भोजपुरी तड़का, रात के 11 बजे नितुषा के साथ सुनहरी पल, और रात के 12 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक नॉनस्टॉप फिल्मी तराने। सो आशा करते हैं कि आप दिन भर रेडियो मॉरिशस सुनते रहेंगे और प्रोग्रामों का आनंद लेते रहेंगे। सुबह के 7:40 हो रही है, अब इससे कैसा गीत लाई है जो जिसे सुनकर आप चिंतन मनन करेंगे, आप सोचेंगे कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। बहुत सारे रिश्ते हैं पर कभी कभी अपने बेगाने बन जाते हैं और बेगाने अपने बन जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही उसी का महत्व है, कभी कभी खून के रिश्ते से बढ़कर और एक रिश्ता होता है, वो है इंसानियत का रिश्ता या दोस्ती का रिश्ता।

0: कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, और रिश्तों की बात करते करते समय भी आगे निकल गया। सुबह का नजराना पौटवान यहीं पर समाप्त होता है। 8:15 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे ज्ञान सर्वर प्रोग्राम हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से 8 बजे भोजपुरी समाचार। समाचारों के बाद हम आपसे फिर से मिल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सुनते रहिए AM2 MBC रेडियो मॉरिशस।
1: ख्वाबों की ये दुनिया है, ख्वाबों में ही रहना है, राहें ले जाएं जहां, संग संग चलना है। वक्त ने हमेशा यहां नए खेल खेले, वक्त ने हमें

सभी श्रोताओं को नमस्ते। ज्ञान सरोवर कार्यक्रम में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हार्दिक अभिवादन है। यह कार्यक्रम हिंदी स्पीकिंग यूनियन के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है और आज एक विशेष विषय लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। श्रोताओं, हम सभी मानते हैं कि परिवार मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

जन्म से लेकर जीवन के हर मोड़ तक परिवार हमारा साथ देता है। परिवार हमें प्रेम, सुरक्षा, मार्गदर्शन और भावनात्मक सहारा प्रदान करता है। लेकिन आज की व्यस्त जीवन शैली में लोग अपने कामों में इतने उलझे होते हैं कि परिवार के लिए

0: दिवस का विषय है फैमिलीज इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग, अर्थात परिवार असमानताएं और बच्चों का कल्याण। आज प्रसन्नता की बात है कि परिवार दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं डॉक्टर संयुक्ता भवन राम सहा जी। आप महात्मा गांधी संस्थान के टर्शरी सेक्टर में पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर रही हिंदी विभाग में, और वर्तमान में आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर संयुक्ता जी, ज्ञान सरोवर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: हाँ, परिवार दिवस पर हम बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी सर्वप्रथम श्रोताओं को भी आप बताइए कि परिवार शब्द की परिभाषा क्या है।
1: तो सर्वप्रथम तो ज्ञान सरोवर के नियमित श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार है, और साथ ही साथ मैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ विजेता जी। तो देखिए, विषय तो बड़ा ही रोचक है और गंभीर भी है।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि परिवार, जैसे हम देखते हैं, जैसे आपने भी कहा कि यह एक समूह है जिसमें लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं,
0: हाँ।
1: सामाजिक रूप से जुड़ते हैं और आत्मिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़ते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसमें पूरा कुटुंब आ जाता है
0: जी।
1: और कुटुंब के लिए तो कहा ही गया है कि कुटुंबे जातस्य धर्मः कुटुंबे नैव रक्षते, अर्थात कुटुंब में जन्मे व्यक्ति का धर्म कुटुंब द्वारा सुरक्षित रहता है, जैसे आपने भी कहा और हम भी कह रहे हैं और शास्त्रों में भी कहा गया है।
0: हाँ।
1: कि कुटुंब ही वह जैसे परिधि है जिसके अंतर्गत हम सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो संस्कार है, जो मूल्य हैं, वो घर से ही आरंभ होते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि माँ की गोद हमारा प्रथम विश्वविद्यालय है, इसीलिए तो हमारे यहाँ जब श्लोक बोलते हैं तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव देव तुल्य माना गया है माता पिता को। ये भारतीय संस्कृति में बड़ों के प्रति हमारे सम्मान भाव को परिलक्षित करता है। परिवार का दूसरा जो अर्थ है वह है विश्व परिवार की धारणा, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की धारणा निहित है।
0: जी।
1: वो बहुत ही प्रचलित श्लोक है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात यह मेरा है यह तेरा है, ऐसी सोच जो है ये कीर्ण बुद्धि का परिचायक है और जो उदार चित्त वाला है उसके लिए ये समस्त पृथ्वी ही एक परिवार है, जिसका उदाहरण है वट वृक्ष, जिसका बीज स्वयं परमपिता परमात्मा है और जो सभी फल फूल हैं वे जैसे हम सभी हैं, हम सभी भाई बहन हैं, एक ही परिवार है। और यदि आप शाब्दिक अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं तो परिवार शब्द संस्कृत के परि धनवार शब्द से बना हुआ
0: अच्छा,
1: है। परि का अर्थ है चारों ओर से घेराव, और वार का मतलब है परि का अर्थ है चारों ओर से और वार मतलब घेरने वाला घेराव, अर्थात हमारा परिवार वह जो चारों तरफ से हमारा घेराव कर हमारी रक्षा करते, स्नेह संबंध सूत्र में हमें पिरोते, उतार चढ़ाव में हमारा सहारा बनते। और समाज शास्त्रीय दृष्टि से परिवार वह है जहाँ हम सुरक्षित स्थान अनुभव करते हैं, जहाँ व्यक्ति जो है मुखौटा मुक्त होता है, वो मास्क नहीं होता जो बाहर उसे पहनना पड़ता है, जहाँ गिरेंगे तो उठाने वाले होते हैं, ये है परिवार, जहाँ विजयी होंगे तो साथ में खुशी मनाने वाले होते हैं, यही परिवार है। अर्थात परिवार खून का रिश्ता भी है तो इससे परे भी है। परिवार की मजबूती के लिए

0: रिश्ते में प्यार और भरोसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि परिवार एक यज्ञ है
1: जी।
0: जैसे यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं तो कहते हैं स्वाहा, जिसमें समर्पण भाव होना चाहिए। और कहते हैं इदं न मम, न यह मेरा है न तेरा है, अर्थात परमपिता परमात्मा को का ध्यान करते हुए हम समर्पित जीवन व्यतीत करते हैं।
1: तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी मानव के जीवन में परिवार का महत्व आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इस पर आप थोड़ी जानकारी दे सकते हैं?
0: देखिए, सृष्टि के आदि से
1: जी
0: एक इकाई, एक संस्था जो अभी तक इस कलयुग के अंत तक जीवित है, वह है परिवार की इकाई। छोटी ही सही, लेकिन अभी तक जीवित है और यही सबसे मजबूत समाज की नींव है। कह सकते हैं कि परिवार जो है पहली पाठशाला है, जहाँ पर मूल्यों का, संस्कारों का सिंचन होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: ठीक। परिवार एक सुरक्षा कवच है
1: जी,
0: जहाँ पर कितने भी निराश हताश व्यक्ति हो लेकिन आए तो उसको सुकून का अनुभव होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: एक तरह से हम कह सकते हैं परिवार हमारा सपोर्ट सिस्टम है
1: जी हाँ।
0: वो सेवा का एक क्षेत्र है परिवार। फिर साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात है कि परिवार जो है वो कर्म बंधन को समाप्त करने का अवसर है,
1: जी जी
0: क्योंकि किसी कार्मिक हिसाब किताब के कारण हम इस परिवार में आए हैं। तो बहुत ही सादगी के साथ, क्षमा भावना के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ इसको निभाना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवार अत्यंत ही महत्वपूर्ण धुरी है। जीवन में यदि सुख शांति चाहिए तो परिवार से जुड़ना अति महत्वपूर्ण है।
1: लेकिन डॉक्टर संयुक्ता जी, अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में ऐसे कई परिवार हैं जो पतन की ओर जा रहे हैं। क्या इनको रोकने का कोई मार्ग है?
0: जी,
1: बच्चों और जो युवा पीढ़ी हैं
0: जी
1: पथभ्रष्ट हो रहे हैं, कैसे
0: हाँ।
1: इनको रोका जाए?
0: देखिए, पतन तो थोड़ा बहुत ही थोड़ा सख्त शब्द हो जाता है, लेकिन कह सकते हैं रूपांतरण हो गया है, एक परिवर्तन आ गया है उसमें। और हम यह सोचते हैं कि बाहरी कारण ज़्यादा नहीं है, मूलतः आंतरिक और मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। तो इसका मुख्य कारण है भौतिकतावाद का बढ़ना, फिर संस्कारों में टकराव, क्योंकि आजकल व्यस्तता के कारण मनुष्य में वो समय ही नहीं रहा जहाँ वो अपने ऊपर थोड़ा मंथन करे, चिंतन करे, है ना। तो उसको लगता है दूसरे को बदलना चाहिए, मैं बदलूं तो दूसरा बदलेगा, ये धारणा नहीं है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं संवाद और संस्कार का भी अभाव है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नौकरी की व्यस्तता, इन सभी के कारण जो है आपसी संवाद समाप्त हो गए हैं। साथ बैठकर भोजन करना, आपस में बात करना, बच्चों में संस्कार भरना, जैसे ये सभी गतिविधियां समाप्त हो गई हैं।
1: जीवन शैली ही
0: बदल गई है।
1: हाँ।
0: इस प्रकार परिवार में जो है पवित्रता, शुद्धता, मर्यादा की कमी आ गई है। आजकल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के चलते हम देखते हैं पहले मैं, परिवार फिर बाद में आता है। तो ये सब कारण है।
1: तो एक स्वस्थ परिवार के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है?
0: तो सबसे पहले देखिए, हम संक्षिप्त में, क्योंकि समय का अभाव है, एक तो हम कहेंगे स्वयं को जानना चाहिए, स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए और अपने अपने निजगत अनुभव के अनुसार, विजेता जी,
1: जी
0: हम
1: हाँ,
0: कहेंगे
1: हाँ,
0: कि जीवन में आध्यात्मिकता आवश्यक है, एक आध्यात्मिक अनुशासित जीवन शैली। क्योंकि देखिए, परमात्मा जो हम सबका स्रोत है, वे गुणों के सागर है, प्रेम के सागर है, शक्ति के सागर है, पवित्रता के सागर है। तो उनको याद करेंगे, उनको जीवन में अपना साथी बनाएंगे तो क्या होगा, वे समस्त गुण, समस्त शक्तियां हम में आएंगी और इसके परिणाम स्वरूप हम स्वयं शांत भाव हो जाएंगे। और जब हम शांत हैं तो माहौल भी, घर का वातावरण भी बहुत ही सुंदर, सुखमय और शांतिमय हो जाएगा। फिर मन, वचन, कर्म में भी सात्विकता होगी। इसीलिए

0: अंग्रेजी यहाँ पर थोड़ा प्रयोग करूंगी, परिवार में वी शुडंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, है ना। हमें परिवार को मजबूत बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा त्याग तपस्या इसकी आवश्यकता है।
1: हाँ।
0: तो मेरे हिसाब से ये जो आध्यात्मिकता है, एक अनुशासित जीवन शैली,
1: जी
0: हमारा खान पान, जीवन का अनुशासन बड़ा महत्वपूर्ण है। परिवार में एक व्यक्ति भी यदि इस प्रकार का जीवन व्यतीत करेगा तो निस्संदेह ही पूरे परिवार में परिवर्तन आएगा, सात्विकता आएगी,
1: बहुत सही
0: श्रेष्ठता
1: आपने कहा
0: आएगी।
1: डॉक्टर संयुक्ता जी। और निष्कर्ष के रूप में कोई संदेश हमारे
0: हम
1: श्रोताओं
0: तो
1: के
0: यही
1: लिए?
0: कहेंगे कि विश्व परिवार दिवस के इस शुभ उपलक्ष्य में आप सभी के प्रति यही शुभ भावना है कि आप शांति दूत बन अपने परिवार और विश्व परिवार प्रति सुख, शांति, प्रेम और सद्भावना का प्रकाश स्तंभ बने, स्वयं संतुष्ट मणि बन सभी को संतुष्टता प्रदान करें, अपनी पावन दृष्टि, पावन वृत्ति और वाइब्रेशंस तरंगों से घर और घर में रहने वालों का वातावरण शांत होगा तो बाहर की कोई भी समस्या अंदर नहीं आ सकती, और घर घर नहीं बल्कि गृहस्थ आश्रम बन जाएगा जहां सदैव सुख, शांति, प्रेम, दिव्यता एवं एकता का साम्राज्य छाया होगा। यही हमारी शुभ अभिलाषा है।
1: धन्यवाद डॉक्टर जी। तो श्रोताओं, आज का ज्ञान सरोवर कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज के अतिथि रही श्री डॉक्टर संयुक्ता भवन राम साहा जी, जिन्होंने परिवार दिवस पर अपना विचार दिया। अंत में मैं भी कुछ जोड़ना चाहूँगी कि एक अच्छा परिवार ही अच्छे समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है, क्योंकि परिवार कठिन समय में हमें हिम्मत और समर्थन देता है। सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद देते हुए अगले सप्ताह तक अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद। नमस्ते।
0: ओम शांति।

0: फजर के 8 बजल बा।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: सबको एक नमस्ते। भोजपुरी के समाचार में हमने आप सबको एक स्वागत करते हैं। जा पूर्व मंत्री नंदो बोधा के बेटा रिनो बोधा के मौत दम घुट के मतलब दम गला घुट के होकर मुआदेलन से काल रात पुलिस के चीफ फोरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर सुदेश कुमार गंगादीन द्वारा करल गल पोस्टमार्टम से ये बात पता चलल। रिनो बोधा के काल दिन के दौरान लानी कोलिया में अमृत पावल कर रहल ई मामला में दुगो संदिग्ध के गिरफ्तार करल गल बा और उ लोग के आज फजर के अदालत में पेश करल जाए। और रिनो मतलब सेफ सिटी कैमरा के मदद से रिनो बोधा के हत्याकांड पर ही पता चलल। उकर परिवार उकर लापता हो के खबर गुरुवार रात से शुक्रवार के बीच पुलिस के दिले रहल। कालोजिन के रहे होला रिनो बोधा एगो डिजाइनर है और उ अपन फोन नहीं उठावत रहल। उकर माँ से उकर बात बुध के होल रहल। पुलिस माइल रोज नाम के एगो व्यक्ति के घोघुब में रिनो बोधा के गाड़ी में सफर करते बखत पकड़ल गल। पूछताछ के दौरान 21 बरिस के संदिग्ध स्वीकार कर ले बा कि उ रिनो होनी बोधा के रस्सी से गला घोंट के मोइलक। गुडलैंड के सीआईडी द्वारा करल गल पूछताछ में उई भी बोले बा कि उ अपन दोस्त के मतलब उ ड्रग्स के गो मामला पर ओकर से झगड़ा कर ले रहल। रिनो बोधा के अंतिम संस्कार आज दिन के दौरान करल जाए। ओकर माती आज दिन के 2:30 ओकर पिता नंदो बोधा के घरे सुल्फी रिनो नंबर 5 वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तो मामल के सिमिट्री ले जावल जाए। एमबीसी शोकग्रस्त परिवार के प्रति अपन सहानुभूति प्रकट करता। जून महीना के कैम्ब्रिज परीक्षा

0: खातिर ए लेवल मैथमेटिक्स में भाग ले होला 440 कैंडिडेट्स अनिश्चितता में हवन से काहे कि एग्जाम्स पेपर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीक होई के संभावना भा बा। एगो बयान में मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट पुष्टि कर ले बा कि 29 अप्रैल के प्रश्न पत्र कयन गो क्षेत्र में समय से पहले ही लीक होल बा, खास करके अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में। यही खातिर कैम्ब्रिज आधिकारिक तौर पर ई परीक्षा के रद्द कर ले बा और 9 जून के गुनावा सत्र निर्धारित कर ले बा। जहाँ तक के दूसरका पेपर के बात है, जेकर मूल्यांकन मंगलवार के होल और जेके लीक हो के संदेह बा, MES बोले बा कि वो कैम्ब्रिज के निर्देशक के इंतजार करता। मॉरिशस मध्य पूर्व संकट के मतलब मध्य पूर्व संकट के लेके बेहतर तरीके से सामना करता, ये बात पर्यटन के उपमंत्री सिडनी पिया बोले बा। 28 फरवरी के ईरान में पहला हवाई हमला के बाद मार्च में पर्यटन आगमन स्थिर रहल और जेकर में गल बरिस के तुलना में 1.3% के वृद्धि दर्ज करल गल आर अप्रैल महीना में 3.7% की गिरावट नोट कर गल, मगर बाद में साल के पहला 4 महीना में कुल मिला के विजिटर में 4% के वृद्धि दर्ज कर गलबा। मौसा सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन सब संबंधी पक्ष से सहयोग के मांग करता, जिमें गंगा तालाब के तीर्थ यात्रा के रूप में एगो तीर्थ स्थान के रूप में सम्मान देवल जा सकी। गंगा तालाब में एगो पर्यटक पर हमला के बाद ई बात सामने आल बा। बोलल जात बा कि पर्यटक के मांसाहारी भोजन करे देखल गल बा। ई घटना के जानकारी पर्यटन मंत्रालय और कला और संस्कृति मंत्रालय के देवल गल MSDTF ई बात भी दोहरलन कि स्थल पर निर्देशात्मक यानी इंस्ट्रक्शनल बोर्ड लगाए के मांग कर ले बा। पर्यटन मंत्रालय टूरिज्म अथॉरिटी के आवश्यक कदम उठावे के बोल दे ले बा, जे में बहुते हाली से ई कार्रवाई शुरू करल जा सकी। हालांकि मंत्रालय ई भी स्पष्ट कर ले बा कि वो कोनो भी प्रकार के आक्रामक व्यवहार के निंदा करता। और आज ज्येष्ठ मास के अमावस्या है, आज के दिन शनि जयंती मनावल जाला। हिंदू धर्म में शनि देव के कर्मफल दाता और न्याय के देवता मानल जाला। मान्यता है कि आज ही के दिन सूर्य पुत्र शनि देव के जन्म होल रहल और आज शनिवार के दिन होइला के कारण ई जयंती के महत्व अनंत गुना बढ़ गल बा। काहे कि शनिवार सामदी के दिन ही शनि देव के समर्पित है। दूसर देश के खबर में दक्षिणी लबनान के एगो शहर पर इजरायली हवाई हमला में 6 जना की मौत होल बा और लबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ई उ बखत आल बा जब अमरीका बोले बा कि दोनों देश 45 दिन के संघर्ष विराम पर सहमति जतई ले बा। तेकरे संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Avenue Belle Étoile, Pamplemousse, mais 69 quai 69 ans quai. शिरोहिताश रामदीन, शिरोहिताश रामदीन जिनकरा सब कोई सुरेश नाम से जानत हलन जा, गुजर घर हवन उनकर माती। आज से पहर के 3 बजे, आज से पहर के 3 बजे उनकर घरे अवेन्यू बेल इतवाल पॉपले मुझसे से उठावल जाए और क्रियाक्रम खातिर ते मिनिस्ट्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM रूट 15 रॉयल रोड प्रोविडेंस का चिमनीतिया में 102 बरी सके 102 जी हाँ 102 बरी सके श्रीमती माइमून। इस वक्त समाचार फिर से सुन ला जा। रूट 15 रॉयल रोड प्रोविडेंस का अच्छे मिलीतिया में 102 बरिस के 102 ईयर्स ओल्ड मिसिज माइमून सुदू। मिसिज माइमून सुदू पैदाशी नाम सुकू अर्जुन करा सब कोई सदारिन नाम से जानत लन जा। इंतकाल कलगर हवन उनकर जन

जनाजा आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा अब्दुल रहीम सुदू के घर गुत पंडर रोद फोविदांस का चिमरीतिया से उठावल जाए और दफनाए खातिर आलमा का कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM एवेन्यू ब्रिगांड बाबू में 73 बरिस के 73 ans के श्रीमती रुकमीन करीम सिंह जिनकरा सबके लीलावत नाम से जाना टलन जा गुजर गर हवन उनकर माती आज दिन के 1 बजे उनकर घरे एवेन्यू ब्रिगांड बाम्बू से उठावल जाए और सेंट सोविया बाम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM मौसलमा ताहा केस्ट्रल लेन त्याहूज में 59 बरिस के 59 के जनाब अब्दुल बाशिया मंगरू जनाब अब्दुल बाशिया मंगरू जिनकरा सब कोई करमचंद नाम से जाना टलन जा गुजर गर हवन उनकर माती आज सांझ के 4 बजे उनकर घरे मौसलमा ताहा केस्ट्रल लेन त्याहूज से उठावल जाए और बामोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। फ्यूनरल टूडे एट 4 PM राय रोडलोंग माउंटेन में 62 बरिस के 62 के श्री मुनिराज रामजतन जिनकरा सबको विवेश नाम से जानतरलन जा गुजर गर हवन उनकर माती आज दिन के 12 बजे उनकर बहिन संध्या मिश्री के घरे राय रोडलोंग माउंटेन से उठावल जाए और थीले के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे एट 9 एवेन्यू बैग हॉलीवुड नंबर 1 वाकुआ में 82 बरिस के 82 के कुमारी देवरानी सुकलाल जिनकरा सबको गोरे नाम से जस्ती जाना ठलन जा गुजर गर हवन उनकर माती आज दिन के 2 बजे उनकर घरे एवेन्यू बैग हॉलीवुड नंबर 1 वाकुआ से उठावल जाए और थामा मेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे 2 PM कुजान लेन कांतोरेल में 60 बरिस के 60 के श्री महेश और रामदीन जिनकरा सबको सत्यलाल नाम से जस्ती जाना टलन जा गुजर गर हवन उनकर माती आज दिन के 1 बजे उनकर माँ कुलवंती रामदीन के घरे कुंजन लेन कांतोरेल से उठावल जाए या कांतोरेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM ला फोटेन रोड मध ऑस्ट्रेलिया में 70 बरिस के 70 के विधवा भुवनेश्वरी देवी देवी विधवा भुवनेश्वरी देवी देवी जिनकरा सबको नारायणी नाम से जस्ती जाना टलन जा गुजर गर हवन उनकर माती आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा साजन बुल्दन के घरे ला फोटेन रोड मध ऑस्ट्रेलिया से उठावल जाए और ला शापेल रोड मध ऑस्ट्रेलिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM मौसलमा ताहा केस्ट्रेल लेन त्याहूज में 59 बरिस के 59 के जनाब अब्दुल बाशिया मंगरू जिनकरा सबको करमचंद नाम से जस्ती जाना टलन जा गुजर गर हवन उनकर जनाजा आज सांझ के 4 बजे उनकर घरे मौसलमा ताहा केस्ट्रेल लेन त्याहूज से उठावल जाए या दफनाए खातिर बामोशों के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM ब्रांच रोड मोचीदा सेंट जुलियन दुतमो में 89 बरिस के 89 के श्रीमती लालरू लक्सिमो जिनकरा सबको हीरा नाम से जानत रहलन चार जिनकर पैदाशी नाम लक्सिमो रहल उ गुजर गर हवन उनकर माती आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा माजो लक्सिमो के घरे ब्रांच रोड मोचीदा सेंट जुलियन दुतमो से उठावल जाए और में जिनका दिमाग सके शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे एट 11 AM पोली वर्जिनी स्ट्रीट लेस्पेरेंस क्वार्टर मिलिटेयर में 75 बरिस के 75 के श्री जानेश्वर बीस बिहारी जिनकरा सबको दानेश नाम से जस्ती जा नटरलन जा गुजर गर हवन उनकर माती आज दिन के 1 बजे उनकर पत्नी बिजवंती बीस बिहारी के घरे पोली वर्जिनी स्ट्रीट लेस्पेरेंस क्वार्टर मिलिटेयर से उठावल जाए और लेस्पेरेंस क्वार्टर मिलिटेयर वे के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM वाल्टोलोंग माउंटेन में 83 बरिस के 83 के श्रीमती कयोली मोहन जिनकरा सबको देवरानी नाम से जस्ती जाना टलन जा गुजर गर हवन उनकर माती आज दिन के 2 बजे उनकर भाई सत्यम दीनाराम के घरे वाल्टोलोंग माउंटेन से उठावल जाए और बामोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रोमेशन टुडे 2 PM अलीब्रियों कास्टेल में 48 बरिस के 48 के श्री विनय जगनारायण जिनकरा सबको विनय नाम से जस्ती जाना टलन जा गुजर गर हवन उ पहले पुलिस सर्जेंट रहल उनकर माती आज दिन के 11 बजे उनकर पत्नी कृष्णी जगनारायण के घरे आली भुइयों कास्टेल से उठावल जाए और आली भुइयों वे के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन

0: टुडे एट 11 AM और सितेतायक में विलेज हॉल के भीड़ी 93 बरिस के 93 ans के श्रीमती दयावादी का रूपानैन जिनकर सब कोई अमाई दया नाम से जानत रहलन जार जिनकर पैदाशी नाम चिलन रहल उ गुजर गढ़वन उनकर माती आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा इंदिरन का रूपानैन के घरे सितेतायक विलेज हॉल के भीड़ी से उठाकर क्रियाक्रम खातिर तायक के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 11 AM शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमने के सहानुभूति बाते
1: एट 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

घड़ी मिलाते चले समय मॉरिशस में सुबह के 8:18:25 हो रहे। अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति। मोहश बाकोरी सिंह स्कूल लेन वेजे बिसम्बो रेमो रिवे और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 16 मई को सुबह के 8:30 से दिन के 9 बजे के बीच और दिन के 1:30 से 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीएन सभी असुविधा के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति।

कल जो बीत चुका वो एक सपना था, आज जो है वो आपका हकीकत है और आने वाला आपका भविष्य है। और बेशक अकलमंद इंसान वो है जो अपने वर्तमान में रहता और भविष्य के बारे में सोचता है, है कि नहीं। और इसी में चलिए सुनते यह पहला गाना सुबह का नजराना प्रोग्राम के दूसरे भाग में। आप फोन कर सकते हैं, गीत मांग सकते हैं, गीत है हमारे प्लेलिस्ट में, केवल नाम जोड़ सकते हैं 4082805 पर फोन कर सकते हैं। यह पहला तराना फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार किया, मेरी रंग में रंगने वाली, अय हय क्या बात है। ये गाना हम चलाएंगे नटराज रामकोरन जी के नाम, आप रहते हैं नोबेल फ्रांस, उनकी माताजी, उनके पिताजी और सब रामकोरन परिवार के लिए। और नटराज रामकोरन को यह गीत बहुत पसंद है और नटराज जी कहते हैं बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय लाइफ, जिंदगी में न टेंशन देने का न टेंशन लेने का। ओके दोस्त, सो नटराज रामकोरन ये गीत खासम खास आपके नाम और आपके पूरे परिवार के लिए। अगर आप भी किसी के लिए गीत मांगना चाहते हैं तो लाइन खुली हुई है 4028085 अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक रेडियो मॉर्चेस पर सुबह का नजराना पार्ट 2 अजय प्रताप सिंह सितालू के साथ।

जन्मदिन का मौका बहुत ही खास होता है क्योंकि साल में केवल एक बार आता है कि नहीं। आज बहुत से लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं और आज भगवंती मोहन जो कास्टल रहती है अपना जन्मदिन मना रही है। सुबह जी ढेर सारी बधाई और प्यार उनकी बेटी संगीता जो रहती है लाहौजा, उनकी बेटियां हैं शांति, हेमा, संगीता, बेटे हैं दान, आजी, सुरेश, उनके दामाद सुरेश, राजेश और फ्रॉम समवन स्पेशल। सो भगवंती मोहन जी यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आपकी लंबी आयु हो और आपकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार हो, बहार हो, बहार हो, प्यार और बहार हो और आपके सभी सपने साकार हो। और भगवंती मोहन जी को गाने अच्छे लगते हैं, वो अक्सर रेडियो वॉशर्स के साथ जुड़ी रहती है। सो आज आपका दिन है, टुडे इट्स योर डे भगवंती जी। सो ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। और ये गीत संजय के नाम संजय बिहारी मातावा के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी सुरेखा, बेटा कुशल, बेटी रिंकू, दामाद, बहू और सब बिहारी परिवार के लिए। एंड विदाउट फॉरगेटिंग माधव की ओर से उनके पापा कवि, मामा टीना, दादी माला, पुपुरीना एंड ऑल बॉयर फैमिली। ये गाना परी की ओर से उनकी माँ रानी के लिए, प्यारा सा गीत। और इस समय वेटरनरी सेक्शन एग्रीकल्चर रिजवी में बहुत से लोग कार्यरत हैं, हमें सुन रहे हैं, स्पेशल हाई टू यू। और ये अगला गीत आप लोगों के नाम, ये गीत सुदेश जसवा जी के नाम, उनकी मामा राजकुमारी, जिमी दुखिया, ये गीत सब दुखिया परिवार के लिए। मन्ना राज मन्ना, ये गीत आपके नाम भी, आपकी पत्नी, बच्चे, भाई, भाभी और सब मन्ना परिवार के लिए गीत जाएगा। सावन दुखिया, ये गीत आपके नाम भी, कवि रवि दिनु, जी हाँ मौतबा के है, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी माँ, उनके पापा और सब दिनु परिवार के नाम भी गीत जाता है। विश्वानी बाबूलाल फ्रॉम लाहौजा, हेलो विश्वानी जी, ये प्यारा सा गाना आपके नाम, आपके पति, आपके बच्चे और पूरे बाबूलाल परिवार के नाम। बीना कुबुसामी मेबेक से है ये गीत आपके नाम भी। सुरमा दुखी भी बहुत प्यार से हमें सुन रही है, थैंक यू जी। और एक मैसेज की ओर हम बढ़ेंगे। यस ओके ऑलराइट, विश्वराज गोपी जी का जन्मदिन है आज, आप रहते कैटरबोन, बधाई और प्यार इंदिरा लौटन, कृष्णा गोपी, बेटी दीक्षा गोपी और लंदन सिंह के परिवार, सिंह परिवार की ओर से। और प्रवीण बुधन जी, आप है रिवेरी जोंगी से, आपकी माताजी, आपके पिताजी और सब बुधन परिवार के नाम, ये प्यारा सा गीत जाएगा। और जितने भी लोग आज आपका अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो ये गीत आपके नाम भी, हैप्पी बर्थडे, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। इस गीत को हमने लिया है फिल्म दंड नायक से।

0: à l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir l'ascense des grands gagnants pour un pot d'étiquette chacun pour un Helicopter Joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé votre compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participe dans la grande finale le 29 mai. MBC Play, avec vous, partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
1: 819 kHz, c'est Radio Mauritius. Radio Mauritius.
2: जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जीने के लिए है, ना कि गम लेने के लिए न टेंशन लेने का, न टेंशन देने का, प्यार से जीने का, क्यों क्या ख्याल है। सुबह के 8:40 दोस्तों, आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए और हमारे प्रोग्रामों को एंजॉय कर रहे हैं। अगला गीत अरिजीत सिंह अरमान खान की आवाज़ों में, फ्रॉम द मूवी धुरंधर, गहरा हुआ, बहुत ही प्यारा सा गीत, राकेश रामचंद जी के नाम। और राकेश रामचंद जी को ये गीत बहुत पसंद है और जब वो इस गीत को सुनते हैं तो सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं, है कि नहीं। सो राकेश रामचंद, ये गीत आपकी ओर से, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं और पूरे रामचंद परिवार के लिए जो हर शनिवार को हमें सुनते हैं, है ना रामचंद जी। ऑल राइट, सो रामचंद भाई जो है बहुत प्यार से हमें सुन रहे हैं और बेशक ये गीत आपको पसंद है। ये गीत आपकी पत्नी आशा, बेटे रितेश, रिवेश, सो डॉक्टर राकेश रामचंद, दिस गाना फॉर यू फ्रॉम द मूवी धुरंधर। ऑल राइट, यही प्यारा सा गीत हम चलाएंगे गीता बाई के नाम आप रहते नोवे फ्रांस, मौन है क्वायोर से, किशन गुड़िया प्रिव्या जुपस से, उदय धनी राम वहीं से है और रेशमा प्रीति माता बदल रोजबेल से है, माँ इंद्रानी, पापा सुरेश और सब माता बदल परिवार के लिए अगला गीत। और सभी स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खासम खास सैंटो में SSS कॉलेज के सब स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और वहाँ के रेक्टर के नाम भी और सभी स्टूडेंट्स के नाम भी गीत गेरुआ हुआ। और कैसे गेरुआ हुआ, नहीं गेरुआ नहीं, गीत के टाइटल है गहरा हुआ, माफ़ कीजिए गहरा हुआ, अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ों में। और दोस्तों क्या आपको बताएं कि अब अरिजीत सिंह गीत नहीं गाते हैं, यस ही हैज़ ऑलरेडी टेकन हिज रिटायरमेंट। इतना अच्छा गाते थे यार, क्यों क्यों ऐसा हुआ कि अब वो गीत गाते ही नहीं। होता है ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है, ही कैन हैव ही माइट बी ही हैव सम पर्सनल रीजंस। ऑलराइट, सो चलिए अभी सुनते हैं गहरा हुआ, यही गीत हम चलाएंगे स्विट्जरलैंड के रंभा जी के नाम, अजय पूनम चिंतराम ऑस्ट्रेलिया से है, दीपा दुखित है कनाडा से, उनके पति केविन, उनके बेटे और सभी परिवार के लिए, टीना बुदना, ये गीत आपके नाम, आपके पति, आपकी सासू माँ, आपके बच्चे, आपकी माँ और पूरा तिवारी और बुदना परिवार के नाम गीत जाता है गहरा हुआ। Here we go। वाह क्या म्यूजिक है इस धुन पर, तो करता है कि बस बैठकर इस धुन को सुनते रहे। गीत के बोल भी एकदम लाजवाब है, क्या बात है।

सामने आ ही जाता है। अमित और नेहा की शादी के अमित और नेहा की शादी को 7 साल हो चुके थे। वह शहर के पास इलाके में एक बहुत खुशहाल जीवन बिता रहे थे। अमित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में ऊंचे पद पर था और नेहा स्कूल में शिक्षिका थी। अमित समाज में एक आदर्श पति और जिम्मेदार इंसान के रूप में जाना जाता था। नेहा को अपने पति पर अटूट विश्वास और वह अपने छोटे से परिवार में बेहद खुश थी। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अमित के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगा। उसका फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड पर रहता था और वह घर लौटने के बाद भी देर तक लैपटॉप या फ़ोन में व्यस्त रहता था। जब भी नेहा उसे किसी बात पर सवाल पूछती तो वह बात को टाल देता या चिड़चिड़ा हो जाता। अक्सर ऑफिस के ज़रूरी काम और आउटस्टेशन ट्रिप्स का बहाना बनाकर एक सप्ताह घर से बाहर निकल जाता था। नेहा के मन में कभी कभी शक पैदा होने लगा कि वह अपने प्यार के आगे उस शक को दबा देती। एक दिन अमित देर रात घर लौटा, वह बहुत नशे में था और उसका फ़ोन सोफे पर ही छूट गया। उस समय फ़ोन पर एक मैसेज की घंटी बजी। स्क्रीन पर जो नाम और संदेश फ्लैश हो रहा था उसे देखकर नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। संदेश में लिखा था, आई लव यू जान, आज का दिन बहुत अच्छा था, अगली बार और मज़ा करेंगे। यह संदेश और किसी रिया नाम की लड़की का था। नेहा ने हिम्मत जुटाकर अमित के फ़ोन के मैसेज और कॉल लॉग संभाले। उससे यह जानकर गहरा सदमा लगा कि पिछले 2 सालों से अमित उसे धोखा दे रहा था और कई अन्य महिलाओं के साथ उसके संबंध थे। अमित ने ऑफिस ट्रिप्स और कॉन्फ्रेंस के नाम पर न जाने कितने झूठ बोले थे और अपनी दूसरी ज़िंदगी बना रखी थी। उस रात नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसके सामने सपने, उसका प्यार और उसका विश्वास चकनाचूर हो गया। जिस पति पर वो इतना विश्वास करती थी, उसी पत्नी ने उसे धोखा दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक पल के लिए उसने गुस्से में अमित को जगाकर सच उगलवाने का सोचा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि गुस्से में लिया गया फैसला अच्छा नहीं होता। अगले कुछ दिन नेहा के लिए अग्नि परीक्षा जैसे थी। वह अमित के सामने बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी ज़िंदगी का सच स्वीकार कर लिया था और खुद को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत करने का फैसला किया। उसने एक वकील से सलाह ली और अमित के सारे बैंक स्टेटमेंट, फ़ोन रिकॉर्ड और चेक के स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिए। एक दिन जब अमित हमेशा की तरह एक बिजनेस ट्रिप पर नाटक करके घर से जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तब नेहा ने अपना असली रूप दिखाया। उसने लिविंग रूम की टेबल पर सारे सबूत, चैट्स, होटल्स के बिल और कॉल रिकॉर्ड्स लाकर रख दिए। अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अपनी सफाई में कुछ बोलता उससे पहले ही नेहा ने उसे शांत करने को कहा। नेहा ने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुमने मेरे प्यार और विश्वास का गला घोंटा है। इस धोखेबाज के साथ बिताया गया हर पल एक सज़ा है। मैं इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम इस लायक हो ही नहीं। उसके बाद नेहा ने अमित को तलाक के कागजात जमा थमा दिए और उसे घर से बाहर जाने को कह दिया। अमित ने माफ़ी मांगने का नाटक किया, लेकिन नेहा अपने फैसले पर अटल रही। कहानी की सीख ये है दोस्तों कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच और विश्वास पर टिकी रहती है। जब विश्वास टूट जाता है तो रिश्ता खोखला हो जाता है। धोखे को लंबे समय तक छिपाना नहीं जा सकता, सच हमेशा बाहर आता है। नेहा ने धैर्य और समझदारी से काम लिया, जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए बेहद आवश्यक था। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर आपने किसी से प्यार किया है तो उस प्यार का गला मत घोंटिएगा, उस प्यार को धोखा मत दीजिएगा। जो लोग प्यार में अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं वो लोग प्यार के लायक होते ही नहीं। और ये अगला गाना आप सभी दोस्तों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, घर पे हैं, आराम फरमा रहे हैं या फिर थोड़ा सा हंसना चाहते हैं तो हंसिएगा जरूर। लॉफ्ट थेरेपी, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, क्या गाना है। चलिए इस गीत का मजा लेते हैं।
आशा जानू जी गीत

आपके नाम और आपके पूरे परिवार के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशा जानू जी कॉटेज से है। ऑलराइट, कुमारी के नाम ये गीत, शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू और सब जानू परिवार के ये गीत चाहता है।

0: तरफ।
1: दोस्तों दिन भर इस गीत को गाते गुनगुनाते रहिए और हमें इजाजत दीजिए। जी हाँ, इसी गीत के साथ ही सुबह का नजर आयो मस्त मॉर्निंग शो रेडियो मॉरिशस पर यहीं पर समाप्त होता है। 9 बजे का समाचार, उसके बाद किरण जानकी से आप सुनेंगे आज की चर्चा प्रोग्राम पीक टाइम मैगजीन। उनका साथ जरूर दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल संडे की शाम 3 से 4 बजे और MBC रेडियो मनोरंजन पर। प्रोग्रामों का ऐसा भी होता है। सुबह के 6 बजे से अभी तक हमारा साथ देने के शुक्रिया। आपकी फ़ोन कॉल्स, आपके SMS और आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, करम मेहरबानी। सभी के लिए इजाजत। अजय प्रताप सिंह सिजालू की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस। नमस्ते। बाय बाय। टेक केयर।

0: रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 6:09 बजे हैं। संक्षिप्त समाचारों के साथ उपस्थित हो चुकी हैं पूजा। पूजा नमस्कार।
2: नमस्कार किरण, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। पूर्व मंत्री नंदो बोधा के पुत्र जीनू बोधा की मौत दम घुटने से हुई है। कल रात पुलिस के चीफ फोरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर सुदेश कुमार गंगादीन द्वारा किए गए पोस्टमार्टम से ये पता चला है। जीनू बोधा को कल दिन के दौरान लानी कोलिया में मृत पाया गया। इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें आज अदालत में पेश किया जा रहा है। जीनू बोधा का अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके पिता नंदो बोधा के मकान सुल्फेगिनो नंबर 5 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेल की सिमिठी ले जाई जाएगी। एमबीसी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। जून महीने के कैम्ब्रिज परीक्षाओं के लिए ए लेवल मैथमेटिक्स में भाग लेने वाले 440 कैंडिडेट्स अनिश्चितता में हैं, इसलिए क्योंकि इस एग्जाम पेपर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीक होने की संभावना है। एक बयान में मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट ने पुष्टि की कि 29 अप्रैल का प्रश्न पत्र कई क्षेत्रों में समय से पहले लीक हुआ है, विशेष रूप से अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में। इसलिए कैम्ब्रिज ने आधिकारिक तौर पर इस परीक्षा को रद्द कर दिया और 9 जून को एक नया सत्र निर्धारित किया है। जहां तक दूसरे पेपर की बात है, जिसकी मूल्यांकन मंगलवार को हुआ और जिसे भी लीक होने का संदेह है, एमईएस ने बताया कि वो कैम्ब्रिज के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। और मॉरिशस ने मध्य पूर्व संकट को बेहतर तरीके से उसे संभाला है। इस बात का जिक्र पर्यटन के उप मंत्री सिडनी पिया ने किया है। 28 फरवरी को ईरान में पहली हवाई हमलों के बाद मार्च में पर्यटन आगमन स्थिर रहा, जिसमें पिछले साल की तुलना में 1.3% की वृद्धि दर्ज की गई। साल के पहले 4 महीनों में कुल मिलाकर विजिटरों में 4% की वृद्धि दर्ज की गई। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की मांग करता है, ताकि गंगा तालाब को तीर्थ स्थान के रूप में सम्मान दिया जा सके। गंगा तालाब में एक पर्यटक पर किए गए हमले के बाद ये बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि उसे वहां मांसाहारी भोजन करते देखा गया था। इस घटना की जानकारी पर्यटन मंत्रालय और कला एवं संस्कृति मंत्रालय को दी गई। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन ने स्थल पर इंस्ट्रक्शनल बोर्ड लगाने की भी मांग की है। पर्यटन

0: मंत्रालय ने टूरिज्म अथॉरिटी को आवश्यक कदम उठाने को कहा है। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी प्रकार के आक्रामक व्यवहार की निंदा करता है। आज की चर्चा प्रोग्राम के अंतर्गत आज बात की जाएगी मॉरिशस में गिरमिटिया के वंशजों से जुड़ी गतिविधियों पर जो गोपियों मॉरिशस चलाता है। किरण जानकी के मेहमान होंगे गोपियों मॉरिशस के प्रधान विनय दसोई। तो कुछ ही समय में आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे आज की चर्चा प्रोग्राम। और विदेश में दक्षिणी लबनान के एक शहर पर इजरायली हवाई हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 पैरामेडिक्स शामिल हैं। लबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार उस समय ये घटना पेश आई जब अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों ने 45 दिन की संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा जो विषय बना हुआ है वह है मॉरिशस में शर्तबंद मजदूरी। अभी 3 दिनों तक मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन चला जो कि इंडिविजुअल लेबर रूट पर आधारित था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था जहाँ पर विदेश से अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, शोधकर्ता हैं, जो व्याख्यान देने वाले लेक्चरर हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो लोग मॉरिशस आए और मॉरिशस के भी जो रिसर्चर्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, वो उन सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। और फिर दुनिया भर में किस तरह से शर्तबंद मजदूरी फैली, कैसे भारत से निकलकर अलग अलग देश में जाकर आज भी भारतीय बसे हुए हैं, उनके वंशज बसे हुए हैं, इन बातों पर चर्चा की गई। और इसके अंतर्गत अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई, कई पेपर्स प्रस्तुत किए गए। और जब मॉरिशस में हम शर्तबंद मजदूरी की बात करते हैं, इंडेंचर पर बात करते हैं, तो ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, इस विषय से जुड़ी गतिविधियां चला रहे हैं। विषय मैंने कहा कि हमारे पुरखन की जो यादें हैं, उनका जो इतिहास है, उन पर चल रहा जो रिसर्च है, इन सभी पर कार्य किए जा रहे हैं। और उनमें से एक है गोप्य मॉरिशस। गोप्य मॉरिशस किस तरह से हमारे पुरखों की यादों से जुड़कर गतिविधियां चलाता है, किस तरह उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, किस तरह उनके संस्कारों, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास को जनता तक प्रस्तुत किया जाता है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं गोप्य मॉरिशस के प्रधान श्री विनय दसोई जी। विनय दसोई जी, नमस्कार।
1: नमस्कार किरण जी,
0: आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है।
1: धन्यवाद।
0: और जब जैसा कि मैंने कहा, अभी हमने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चलाया, हमारे देश ने चलाया, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डायस्पोरा देशों में इंडेंचर की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश में इंडेंचर से जुड़ी जो गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, गोप्य मॉरिशस का इसमें क्या भागीदारी है, इन सभी बातों पर ध्यान दें। और हम चाहते हैं कि आप मॉरिशस में गोप्य मॉरिशस की जो भूमिका है उस पर ज़रा प्रकाश डालें, ताकि लोगों को पता चले कि इंडेंचर जो डायस्पोरा देश में अलग अलग स्कॉलर्स उस पर बात कर रहे हैं, मॉरिशस में जो कि इंडेंचर लेबर रूट का सचिवालय संभालता है, इसमें गोप्य मॉरिशस जैसी एक संस्था है जो कि हमारे पुरखों की यादों से जुड़ी हुई है, ज़रा इस पर प्रकाश डालिए।
1: नमस्कार सभी को। बड़ा अच्छा प्रश्न किया, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी और गोपियों, पूरे गोपियों परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। हमारे सभी पूर्वज लोग

0: जो आए थे और जिन्होंने इस देश को बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मेहनत करके अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, बड़ी गलत व्यवहार किया गया था उनके साथ, लेकिन उन्होंने अपना जो माइंड है, दिमाग है, बड़ा शांत रखा
1: जी।
0: और आगे का रास्ता चुना। तो उनके लिए, उनकी इस ब्रेवरी के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं गोपियों की ओर से और पूरे पीआईओ परिवार की ओर से। देखिए, शर्तबंद मजदूर, एक शब्द में कहेंगे तो उसको बोलेंगे मजबूरी।
1: अच्छा जी।
0: क्योंकि वो खुशी खुशी आए नहीं थे, मजबूरी थी,
1: भारत की दुर्दशा थी उधर।
0: हाँ,
1: मॉरिशस में
0: पेट का सवाल था, पेट का सवाल था, और अच्छे दिन के सपने थे
1: जी। हाँ।
0: कि अच्छे दिन के लिए हम जिए, बच्चों के लिए जिए। उस समय भी उनके दिमाग में इसीलिए वो बाहर आए थे क्योंकि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे थे,
1: जरूर, या तो, फिर अपने परिवार की भलाई के लिए सोच रहे थे,
0: पूरा आगे का परिवार जो है कैसे, जो वो सह रहा है उससे थोड़ा कम उनको दुख है, इसके लिए वो सोच रहे थे और आगे कर रहे थे। तो इसलिए वो देश छोड़कर गए विदेशों में, जहाँ जहाँ अवसर मिला। अभी भी लोग जाते हैं
1: जी। हाँ।
0: लेकिन अब बड़ा सभ्य
1: तरीके से
0: जाते,
1: अभी कानून है, कई नियम है।
0: हाँ।
1: लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। अभी कॉन्ट्रैक्ट है, आप पहले से अपना कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, साइन करते हैं, अग्रीमेंट सच में होता है क्या? हाँ। उस समय अग्रीमेंट था, कहाँ था
0: वो, मतलब बोलने के लिए अग्रीमेंट था कि आपको ये इसी शर्त पर ले जाते हैं, फिर शर्त भूल गए तो भूल गए, आपका कोई उसमें कुछ बोल नहीं सकते आप, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं।
1: हाँ।
0: अभी तो सब कुछ लिखा है, बाहर से भी लोग मॉरिशस में अभी भी काम करने आते हैं,
1: मॉरिशस से बाहर जाते हैं।
0: हाँ, अरे अभी कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, थोड़ी सी कुछ चूक हो जाती है तो इतना
1: हंगामा
0: होने लगता है।
1: जी हाँ।
0: तो ये सब मतलब अगले अच्छे भविष्य के लिए ये होता है। तो उस समय जो हमारे पूर्वज आए थे उनको एक मजबूरी थी, वो आए थे और कई देशों में वो लोग गए बेहतर जिंदगी के लिए। देखिए, गोपियों का संबंध हमारे पूर्वजों से है, पीआईओ पीपल जो है, क्योंकि मॉरिशसी अगर देखें तो वो ज़्यादातर लोग बाहर के हैं, ओरिजिन उसमें हम भी है, बाहर के ओरिजिन बाहर के है, भारत के बाहर, मॉरिशस में भारत से कई लोग आए, यहाँ बस गए, फिर यहाँ से कई देशों में गए, इस तरह से इंडियन डायस्पोरा बना। और हर देश की अपनी अपनी सच्चाई है, अपनी
1: हाँ।
0: अपनी कहानी है,
1: अपना अपना इतिहास है
0: और मॉरिशस का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है
1: और बहुत ही मीनिंगफुल इतिहास रहा है, जहाँ पर हमारे पास लिखित प्रमाण है कि हमारे पूर्वज यहाँ कितनी भारी संख्या में आए।
0: केवल लिखित प्रमाण के साथ साथ, केवल लिखित प्रमाण नहीं है
1: जी। हाँ।
0: हमारा जो इतिहास है प्रेरणादायक है दूसरे देशों के लिए,
1: अवश्य,
0: ये हमें इस पर बड़ा गर्व है। और इसके पीछे जो लोग थे वो हमारे पूर्वज थे
1: जी। हाँ।
0: क्योंकि उन लोगों ने इस इतिहास को बनाया है, रचा है और आगे देश को आज यहाँ लाए हैं। तो इसलिए हम बड़ा गौरव
1: महसूस
0: करते हैं कि हम उनके वंशज हैं। और आज मुझे इस बात से और बड़ी खुशी होती है कि मुझे एक तरह से छोटा सा अवसर मिला है कि मैं उसी उन्हीं वंशजों की बच्चों के साथ, उनके साथ काम करने का माध्यम बना हूँ, और हमारा काम उन्हीं वंशजों को याद करके आगे का रास्ता तय कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने हर क्षेत्र में हमें उदाहरण दिया है कि आगे हमें इस मुश्किल की घड़ी में क्या करना है, क्या नहीं करना हूँ। तो इस तरह से गोपियों जुड़ा है, वैसे गोपियों की स्थापना 80 के दशक में हुई है।
1: अच्छा।
0: लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि 80 के दशक में ही सोचा गया गोपियों के बारे में,
1: इससे पहले भी सोचा गया
0: बहुत। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक मंच है, मंच बना था। मंच क्या है? मिलने का,
1: अवश्य,
0: आपस में विचारों का आदान प्रदान करने का, एक दूसरे के दुख को बांटने का, आगे साथ मिलकर चलने का। तो ये जो मंच है, उस समय सोचिए जब एक जहाज में निकले थे कलकत्ता से या कहीं से भारत से, और कई लंबी यात्रा के बाद एक देश में पहुंचे, वहाँ कुछ लोग उतर गए, जहाज आगे गया, फिर वहाँ उतर गए। तो उतरने से पहले वो जो बिछड़ने का

0: मोह है, उस समय भी तो था। तो मोह के बाद ये तो सोचेंगे कि भाई हम अवश्य मिलेंगे एक दिन।
1: यहाँ पर मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि मॉरिशस में आने के लिए ये जो सफ़र तय हुआ था कलकत्ता से, वो लगभग 6 हफ्तों का था। हाँ। लंबा सफ़र था और जहाज़ों में लोग खचाखच भरा हुआ करते थे। आज जिस तरह से हम सफ़र करते हैं, लेग रूम चाहते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। खाने पीने की सुविधा बहुत कम थी। और क्या खाना खाते थे? रूखा सूखा, क्योंकि 6 हफ्तों तक वैसे जहाज़ में सफ़र करना उस ज़माने में, आपके पास रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ है नहीं, तो जब रूखा सूखा खा रहे हैं, उसमें फ्रेश फूड नहीं है, ताज़ा सब्जी नहीं है, तो विटामिन सी के कमी के कारण बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, एपिडेमीज़ मतलब कि महामारी शुरू हो जाती थी। ऐसे में जहाज़ के सफ़र के दौरान ही कई लोग दम तोड़ देते थे और मजबूरन उनको समुद्र में ही छोड़ना पड़ता था। यहीं से शुरू होती है ये जो बिछड़ने का दर्द है, बिछड़ने का दर्द, कभी फिर न मिलने का दर्द, ये जहाज़ से शुरू होता था। एक तो भारत में, फिर जहाज़ में, और मॉरिशस में जब ये जहाज़ रुकता था तो उसकी मरम्मत होती थी लगभग 2 महीने तक, और फिर यहाँ पर जो रुके हैं उनमें से कुछ लोगों फिर दूसरे देशों में ले जाया जाता था, फिर यहाँ से एक दूसरा जो बिछड़ने का दर्द है वो फिर से शुरू होता था। तो ऐसे में आज हम किसी से, परिवार से थोड़े देर के लिए बिछड़ते हैं तो कितना ट्रॉमाटाइजिंग होता है, और वैसे फिर से कभी ना मिलना या फिर इस उम्मीद के साथ कभी हम मिलेंगे, ऐसे दर्द के साथ वे जिए इस देश में, फिर भी इस देश का इतनी खूबसूरती से उन्होंने निर्माण किया।
0: उस समय उन लोगों की प्रबल इच्छा क्या रही होगी कि भाई हम तो जहाज़ में जितने भी समय बिताए, परिवार हो गए
1: जी, जहाज़ी भाई,
0: जहाज़ी भाई जो बोलते हैं, और जब बिछड़ रहे हैं तो मन तो बड़ा दुखी होता है
1: जी।
0: लेकिन उस समय उन लोगों की यही प्रबल इच्छा रही होगी कि एक दिन मिलेंगे, कभी भी ऐसा अवसर आए, एक मंच आए, कुछ भी हो हम मिलें। हालांकि ये उनका सपना था। देखिए अभी 200 साल लगभग हो रहे हैं
1: जी। हाँ।
0: 200 साल, इतने सालों के बाद उनका वो सपना, मिलने का सपना,
1: उनके
0: एक मंच का सपना आज गोपियों कर रहा है
1: जी।
0: ये थोड़ा सा था, वो हमने कुछ नया नहीं किया है, जो हमारे
1: उनके सपनों को साकार कर रहे हैं।
0: हमें वो अवसर मिला, वो लोग नहीं कर पाए अपने समय में, हमें वो अवसर मिला है आज, अब सुविधा मिली है, तो हम वो मंच तैयार कर रहे थे। इसलिए ये गोपियों का मंच उभर कर सामने है
1: जी।
0: गोपियों की सोच, मिलने की सोच, एक मंच में सबको लाने की सोच इंडियन डायस्पोरा का पहले से बहुत था, 200 साल पहले से भी था, लेकिन उसका कार्य रूप अब दिया गया है और माध्यम बना है गोपियों। और मैं आज, मुझे बड़ा गर्व है कि मैं उस स्तर पर इस कार्य को आगे ले चल रहा हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि अभी विनय दसोई जी हमें बता रहे हैं कि गोपियों मॉरिशस का जो गठन हुआ, तो वह हमारे पूर्वजों की, उनका जो सपना था उसकी, एक बार हम मिलेंगे, कहीं ना कहीं हम मिलेंगे, चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, उस सपने को आप अंजाम दे रहे हैं, उसको कार्य रूप दे रहे हैं गोपियों मॉरिशस के माध्यम से। किस तरह से हम मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, कहाँ मिलते हैं और कौन कौन सी गतिविधियाँ चलाते हैं, इन सभी विषयों पर हम थोड़ी देर बाद गहराई से बात करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा का प्रसारण इस समय हो रहा है रेडियो मॉरिशस पर और फिर हमारे एमबीसी के फेसबुक पेज पर भी इसका लाइव प्रसारण चल रहा है। साथ ही साथ एमबीसी के तीसरे चैनल पर भी इसका प्रसारण हो रहा है जो कि शाम को एक बार फिर प्रसारित किया जाएगा। और आज का हमारा जो विषय है वह है शर्तबंद मजदूरों से जुड़ी जो गतिविधियां चलती हैं मॉरिशस में। और मॉरिशस में कई संस्थाएं हैं जो हमारे पुरखों की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और फिर जो वंशज हैं पूर्वजों के कैसे उनको एक साथ एक मंच प्रदान करके हम आगे की सोचते हैं और ऐसी एक

0: संस्था है गोप्यो मॉरिशस, और गोप्यो मॉरिशस के प्रधान श्री विनय दसोई जी आज हमारे मेहमान हैं। विनय दसोई जी, आप बहुत सुंदर रूप से हमने के अपन पूर्वज के जिन सपना रहल ओके कैसे आप लोग साकार करत हो जा गोप्यो मॉरिशस के अंतर्गत, ई बात पर प्रकाश डलना। अब हमने के थोड़ा ये बतावा कि ई जन गोप्यो मॉरिशस संस्था बा, एकर शुरुआत कैसे होल?
1: एकर शुरुआत, बातचीत बहुत पहले से चला था, लेकिन एकर विधिवत शुरुआत 1997 में वो पहला गोप्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होल यूके में
0: 1988 में
1: शुरू होल, और उसके बाद मॉरिशस में एक साल बाद मॉरिशस में इसका एगो स्वरूप खड़ा होल।
0: जी हाँ।
1: और है गोपियों के स्थापना में एकर लीडरशिप हमने के स्वर्गीय भाई धनदेव बहादुर जी का था, हमने सब साथ में रह लीजा फाउंडर मेंबर, उनकर निर्देशन में हमने आगे बढ़ लीजा, और साथ में भारत के बलेश्वर अग्रवाल जी रहन, और मलेशिया के हमने के सेल्वर राजू एक मित्र रहन, इन लोगों के बहुत बड़ा प्रयास रहल कि एक तो लोकल गोप्यो चैप्टर सब देश में खोलेंगे, तो इसलिए मॉरिशस गोप्यो मॉरिशस एगो चैप्टर है, कई देश में बनल है।
0: अच्छा। हर एक देश के अपने को गोप्यो
1: एगो गोप्यो चैप्टर, और उकर बाद एगो प्लेटफॉर्म बनावल गल
0: अंतर्राष्ट्रीय,
1: जोन के अभी प्रधान डॉक्टर पुनुस्वामी होन मलेशिया के, और उकर डिप्टी प्रधान मॉरिशस के बाद वो हम है अभी।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह से गोप्यो की स्थापना मॉरिशस में 89 में शुरू होल, और उकर बाद कई कार्यक्रम शुरू होल गल, और जब भाई प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल बनल लोकल चैप्टर के बाद, तो प्रश्न रहल कि हमने का चाहत है जा।
0: हाँ, कहे कि हर एगो संस्था जब उकर स्थापना होवेला उकर एगो मिशन और विजन रहेला।
1: हाँ, तो हमने के गोप्यो मूवमेंट के उकर
0: उद्देश्य
1: का रहल का, और हमने के का चाहे, बहुत कोई कम जाने लगा कि भारत, हम सब भारतीय मूल के लोग हैं।
0: जी हाँ।
1: ये सब तो जैसे अभी तू बोल रहा कि शर्त बन के तो कोनो कागज में लिखा पढ़ी नहीं हो रहा,
0: नहीं हो रहा,
1: तो अभी भी हमने के गोप्यो मूवमेंट बनने से पहले स्थिति है ये रहा, हमने भारतीय मूल के रह लीजा, लेकिन भारत में कहीं पर कुछ लिखा होगा नहीं है कि विनय दसोई पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो है जो रिकॉग्निशन रहा, इस सबसे बड़ा चीज रहल हमने के काम करी के कपर, हम सब कोई मिल के पूरे दुनिया के जय जय देश में चैप्टर बनल भारत सरकार के सामने रखल गल कि पहला हमने के रिकॉग्निशन चाहिए।
0: मतलब कि आप लोग के पहला मकसद रहल भारत सरकार के साथ जुड़े के, जहाँ से हमने के पूर्वज निकल के अलग अलग देश में जाके बस लन जा।
1: तो रिकॉग्निशन भारत सरकार कई गो बातचीत के बाद दिलन ऑफिशियल में, अब वो ऑफिशियल में ऑफिशियल है कि हमने जितना पीआईओ है जा, हमने पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन है जा, पहले हमने खुद के बुलाते जा, मैं अब कागज में भी
0: भारत सरकार माना था
1: ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिलल। तब दूसर बात यही हो कि भाई अब मंच के आगे कैसे बढ़ावल जाए,
0: जरूर
1: तब पीबीडी के बात हो,
0: प्रवासी भारतीय दिवस।
1: शुरू में पीबीडी हर साल होता, सभी देश के लोग जाते रहन जा, और भारत सरकार के पूरी टीम अनंजा, और वो पीबीडी में हमने के पूरा जो डायस्पोरा इंडियन डायस्पोरा की समस्या रहल, हमने के जो अपन बात रहल वो मंच रहल भारत सरकार तक पहुँचाई के,
0: जरूर,
1: और फिर ओसीआई कार्ड के बातल
0: ओवरसीज
1: सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले ये पीआईओ कार्ड रहल, क्योंकि पीआईओ पीपल ऑफ इंडिया, तो बाद में भारत सरकार इसको बदल कर
0: सिटीजनशिप दे
1: ओसीआई कार्ड कर दिलक, ओकर में जो एनआरआई रहल सबके ओकर में जोड़ दिलक,
0: एनआरआई मतलब नॉन इंडियन ओरिजिन,
1: जो नॉन रेजिडेंट इंडियन
0: जो भारतीय भारत से बाहर जिया,
1: मैं बाहर जिया था जो भारतीय हूं जा, और हमने भारतीय नहीं जा, मैं हमने पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो दोनों के मिल के ओसीआई कार्ड मिला। आज हम

0: माई मन से एगो स्पेशल धन्यवाद और नतमस्तक होत है उन एगो व्यक्ति के प्रति जिनके कारण ये सब होल, नहीं तो रुक कर रहल काम नहीं होता। वो रहल सदैव स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके प्रधानत्व में, उनके प्रधान प्राइम मिनिस्टरशिप में ये सब काम होल और हाल जल्दी जल्दी होई हो गए। हमने के थोड़ा सा संपर्क रहा धनदेव जी के, हमने के सब के वो जानत लंदे, तो एगो ऐसा माहौल तैयार कर गल कि ये सब ओसीआई कार्ड रिकॉग्निशन ओसीआई कार्ड और जितना कई मोमो गोपियों के बहुत बड़ा अचीवमेंट बा, कई गो चीज़ हमने भारत सरकार से मिल के ओके कर ली जाए, कई गो चीज़ों का मैं जो ओसीआई कार्ड बा रिकॉग्निशन बा और पीआईओ मिनिस्ट्री भी बनल। आज वो फुल फ्लेज मिनिस्ट्री में कोनो मिनिस्ट्री संगे हाँ पीआईओ मिनिस्ट्री जो पीआईओ के मार्टर्स देखी ऐसे ऐसे करके पीआईओ पार्लियामेंटरी मीटिंग
1: जी
0: जो गोपियों के सजेस्ट कर रहे कि जितना भारत के बाहर पीआईओ पार्लियामेंट में बैठे वाला जनता हो जाए एली हो क्याल हो जा उन लोग के भी मीटिंग, मतलब हर क्षेत्र के लेके सबके जुड़े के कैसे मकसद एक के बोल जुड़ल जाए कैसे और मिल के कैसे काम कर दे, क्योंकि हमने के जो संस्कृति है हमने के जो सभ्यता है वो सब के एगो करे के है, अलग अलग करके जिए के नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम होला हमने के भारतीयता, तो भारतीयता के आगे कैसे बढ़ावल जाए केवल इंडियन डायस्पोरा में नहीं चारों तरफ, क्योंकि आज के युग में और हमेशा भी यही देखल गल बा कि विश्व शांति के एक एक आधार बा भारतीयता
1: जी,
0: जो भारतीय संस्कृति बा वो विश्व शांति के सोच के बनावल गल बा और सबको ओकर में चली तो
1: सबको वही नक्शे के दम पर आज चला थी
0: अच्छा होवे दिशा निर्देश तैयार करल गल बा और हव पर सबको चली तो युद्ध नहीं हुई, युद्ध के कारण है पेट्रोल या हव महंगा नहीं हुई तो युद्ध ये सब थम जाए, तो गोपियों के कर में बहुत बड़ा हाथ है भारतीयता कैसे फैलाव जाए ये हमने के एक्टिविटी में
1: जरूर। आज जैसे सुनत हवा अब हमने भोजपुरी में बोलत है जा कहे कि हमने के पूर्वज लोग के यही भाषा रहल और जब भाषा संस्कृति पुरखन के नाम लेवत है जा तो कैसे सकब जा उन लोग के भाषा में नहीं बतियाए, और आज इस विषय पर बात करत हवन हमने संगे गोपियो मॉरिशस के प्रधान विनय दसोई जी, हमने के बतावत हवन कैसे ई गोपियो मॉरिशस के ओकर स्थापना होल, कैसे ओकर जो उद्देश्य बा उ तय करल गल, कैसे हमने जो डायस्पोरा देश है सब मतलब कि भारत से निकल के हमने के पूर्वज लोग जो अलग अलग देश में जाके बसलन जा, हर एगो देश अपन अंतर्गत एगो गोपियो मॉरिशस जैसन संस्था के स्थापना करलक और फिर सब देश कैसे भारत के साथ फिर जुड़ल और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ओकर बाद ओसीआई ई सब जन सुविधा बा एके प्रदान करे के एगो मंच और एगो अवसर हमनी के मिलल, ई विषय में अभी हमनी थोड़ा गहराई में और जाप जा, फिलहाल ले जा एगो छोटा सा विराम।

0: आज के चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। ई बखत ई प्रोग्राम आप सुनत हवा रेडियो मॉरिशस पर, साथ में हमने के MBC के फेसबुक पेज पर भी एकर प्रसारण हुआ था और MBC टीवी के तीसरा चैनल पर भी आप ई प्रोग्राम सकत हुआ देखे और शाम के एकर प्रसारण फिर से हुई। और आज हमने एगो बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करत है जा, और ऊ है गोप्य मॉरिशस के मॉरिशस में कौन भूमिका बा, कौन कौन गतिविधि ई संस्था चलावेला, और ई जौन कार्यक्रम बा गोप्य मॉरिशस के ई सब बातचीत जौन हुआ था ऊ परिप्रेक्ष्य में चला था। जौन अभी तीन पिछला दिन चलल मॉरिशस में एगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडेंचर लेबर रूट के लेके, और आज हमनी के मेहमान हवन श्री विनय दसोई जी जे गोप्य मॉरिशस के प्रधान हवन। विनय दसोई जी, अभी आप बोलला कि हमनी के जोन जड़ी बा वो भारत में बा, सब डायस्पोरा देश जहाँ भी शर्तबंद मजदूरी चलल, गिरमिटिया मजदूरी चलल, उ सबके जड़ी भारत से है, और हमनी के संस्कृति में आज भी भारतीयता झलकेला, चाहे वो बोली में रही, चाहे वो व्यवहार में रही, पहनावा में, खान पान में, हर हमने के जो व्यवहार आचरण बा ओकर में भारतीयता झलकेला, और हमने के चाहे एके जीवित रखे के गोप्य मॉरिशस के शायद ई भी एगो मकसद है। त कैसे ई जो विश्व शांति के कायम रखे में ई संस्कार संस्कृति के बात जोन बा आप लोग जीवित रखे ले जा, कौन कौन माध्यम अपनावे ले जा, थोड़ा एक बार बोलो।
1: देखिए, भारतीयता के मतलब का है
0: जी,
1: वसुदेव कुटुंबकम भारतीयता।
0: हाँ, पूरा विश्व एगो परिवार।
1: सर्वे भवन्तु सुखिनः भारतीयता है। अतिथि देवो भव भारतीयता है। ऐसे कई गो उदाहरण हम सब दे जोन के बतावे कि भारतीयता का मतलब का, संस्कृति के मतलब का है।

0: और हये हमने के आगे ले चल के वो संतोष एगो व्यक्ति रहेला अपन जीवन में सुखी परिवार बनावेला, परिवार से गांव सुखी रहेला, गांव से देश, देश से दुनिया
1: जरूर।
0: तो वर्ल्ड पीस जेकर बात बतियाला से बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस होला, हम तो मानी ला ठोक के हम मंच पर बोईला कि भारतीयता के बिना वर्ल्ड पीस अधूरा है, नहीं सकी हुई, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट जो लावी के संस्कृति के एगो लाभी के एगो कॉन्सेप्ट कैसे जिए के एगो तरीका जो रहे, तो हर तरीका कहाँ मिली हमने के खाली फॉलो करे के बाद। देखिए के बोलेला कि हमने तो बोला से एगो परिवार में 10 जना बात, एक जना शादी के लगता अलग बसा दिलक, मतलब ओकर अलग परिवार हो गल, जबकि वो चीज़ चाहिए हमने के हमेशा सोचे के घर 10 गो से की हुई मैं परिवार एक
1: जी।
0: हाई कौन से पुआ के हमने काम कर लगा कि परिवार हमार संख्या ज़्यादा होगा परिवार में सकेता होता एक वो घर में रह के दूसरा घर बनी, एक मतलब नहीं कि परिवार अलग होला।
1: हाँ।
0: घर अनेक परिवार एक, एक। है बीजों से हमने काम कर लगा, हम एक पर बहुत विश्वास कर ला
1: जी।
0: अलग हो देखा किरण जी एक वो चीज़ बड़ा सीधा है, हम अपन बात बता कि जब हम छोटा में कठिन स्थिति में अपन परिवार के साथ संगे मिल के कठिन परिस्थिति के सामना कर ले जाए, आज थोड़ी सी सुविधा वाली बात है अलग कैसे सकब हुई, ये तो बड़ा उल्टा बा।
1: और हमने के जिन पूर्वज लोग अलन जा एगो कमरा में 8-9 गो लड़का संगे एक ही गो कमरा में ढाका में जीलन जा, और ओकर बावजूद आज हमने जैसन लड़का लोग के ऐसन भविष्य देलन जा, तो हमने कह नहीं सकब जा करे
0: मतलब दुख में हमने संगे ऐसे, अब जब
1: सुख में
0: सुख अब अलग रहा, टाटा बाय बाय हो दूर से नमस्ते
1: नहीं,
0: ये नहीं सीखो, यही हमने के भारतीयता सिखावेला कि जगह अनेक हुई देश अनेक हुई लेकिन मानवता एक ही है जोन बोई ला जा, तो हमने ऊ के फॉलो कर ला जाए भारतीयता के जो बहुत अच्छी चीज़ है हम अभी ले माँ ओकर ले और कोनो नया कॉन्सेप्ट एकर ले अच्छा हुई तो हमने के अपनाए में कोनो दुख नहीं हुआ, क्योंकि हमने अध्ययन ऑफ द डे विश्व शांति के लिए काम करते जाए कि सब कोई अच्छा से जी सब कोई अच्छा से रहे, तो अगर हमने मानत जा कि भारतीयता है चीज़ के बोला जा रहा तो ओके तो फैलाए के चाहिए हमने के काम हो, क्योंकि हमने के पूर्वज है भारतीयताओं के शक्ति दिले
1: जरूर।
0: देखा देश कहाँ रहल गोनी अभी लड़का लोग नहीं जानी गोनी का बोल जाला गोनी होड़ के सुतत रहन
1: गोनी आज विरासत के जो न एगो एग्जीबिशन प्रदर्शनी चलाइबा तो ओकर में आज गोनी प्रस्तुत करल जाला, म्यूजियम में आज गोनी रखल जाला ताकि लड़का लोग देखी और जानी ई का है,
0: क्योंकि हमर खातिर उन लोग हमने के पूर्वज जोन जोन चीज वो लोग अब प्रयोग कर लन जाए, प्रयोग के बाद ओकर इतना अच्छा फल मिलल बा सबके, तो हमार खातिर तो उपूज्य चीज़ है
1: जरूर,
0: गोनी हो हंसवा हो कुछ हो जिकर से लोग काम करते जरा, और बड़ा एहसास चीज की बड़ी ईमानदारी से काम करते जरा, बहुत प्यार से,
1: बहुत प्यार से, बहुत निष्ठा और डिटर्मिनेशन दृढ़ता के साथ,
0: हर एगो चीज रहा लोग के एगो गुण बहुत कह सकेला एक पर ध्यान नहीं दे उ लोग हाला करे वाला आदमी नहीं रहा
1: नहीं। सुधा गाई
0: हाँ एगो गिर और भीतरे तूफान भीतरे बा आगे बढ़े के आज़ादी के देश के आगे बढ़ाई के जोन जहाँ पर हवा जो कर ले हमसे निकल के खुली दुनिया में सांस लेके है, तो तूफान दिल में बा लेकिन बाहर एकदम शांत वो लोग जान। पहले एक वो चीज़ अभी हमने बहुत बोला जाता इतना आदमी समझेला, पहले इशारे से आदमी समझता, सोचा बैठका के समय वार्षिक उत्सव एगो ऐसा अवसर रहा जो नहीं देशों में रेवोल्यूशन ले वार्षिक उत्सव हर साल में एक को होता एगो बैठका में
1: वो वार्षिक उत्सव का रहा
0: वार्षिक उत्सव में जैसे जहाँ से हम हमने के प्रोग्राम एक साल कर ली जाते एक दिन मिल के
1: एगो ब्यौरा प्रस्तुत कर
0: ब्यौरा प्रस्तुत कर से आपस में थोड़ा सा देखब सका करे, तो वार्षिक उत्सव वो अवसर रहा समाज के इकट्ठा करे के कि एक साल हमने है कर ली सर, गत साल हमने है जा रही सर, आज तनी सन आगे बढ़ रही सर, हाइये सीमा में चाहे जाए के
1: और कहां आगे बढ़ सर
0: और आगे बढ़ सर, हमने के देखा एक को मैं कोई को बोला हम के है जा से अभी

पहाड़ के हो उधर जाए के बाद चढ़ गए तो नहीं जाए, तो बोल पर थोड़ा सा आगे जाए के बाद तो उस सबसे करके तो वार्षिक उत्सव एगो ब्यौरा प्रजाते और हो वार्षिक उत्सव एगो चीज़ ऐसा रहा जो नया जेनरेशन के प्रिपेयर करते कैसे हो में लड़का लोग एक दो महीना से कविता याद करते रह जाए कविता पाठ करके कोई

0: एकर में कोई हम कहने से कि बोले कि नहीं, मॉरिशस के आज़ादी के संघर्ष में, आज़ादी रेवोल्यूशन आने के मॉरिश में, आज़ादी के तरफ जाए के वार्षिक उत्सव और बैठका और वार्षिक उत्सव के सबसे बड़ा हाथ। तो इस तरह से हम के पूर्वजों को अपन काम कर रहे जा और आगे बढ़ रहे जा। तो जिस तरह से वो लोग काम कर रहे जा, हमने के बाद आज हम कम मौका आने के
1: जी।
0: तो गोपियों है ये कम मौका था कि नया विचार लेके नए, क्योंकि दुनिया एक ही जगह पर टिकल नहीं पा, रेवोल्यूशन चले जाता, टेक्नोलॉजी नया नया होता, टेक्नोलॉजी के अपन फासों से कैसे ओकर प्रयोग करल जाए अच्छे रास्ते के लिए, अच्छा काम के लिए, ओके कैसे कन्वर्ट कर दो जाए टेक्नोलॉजी के अपन अच्छे काम में, एकर ध्यान देकर काम कर दे जा। परंतु हमनी के जो जड़ बा भारतीयता, जो संस्कृति बा, जो सभ्यता बा, भाषा बा, सबके बाज बना के छोड़ के नहीं, ओके हमनी के बाज बना के हमनी के न्यू हुआ रही आगे। पेड़ कहूँ पर ही रहला जंगल में, फल तो चारों को तो ऊपर मिलेगा, उस तरह के काम करेंगे
1: जरूर। और अभी आप जब बोला कि वार्षिक उत्सव चलत रहा, कविता पाठ होत रहा, तो हम देखले है कि आप जो काम करत हुआ गोपियो मॉरिशस एक बारे में जो जानेला तो जानेला, लेकिन आपके जो एगो नाटक के मंचन बा ई खातिर आप काफ़ी मशहूर हुआ, ढेर कोई आपके ई हुनर से जाने लन जा। और आपके नाटक के माध्यम से आप कौन कौन संदेश देवेला, नाटक से आप कैसे जुड़ला, थोड़ा एक पर हमने बात करी जा।
0: नाटक एगो ऐसा माध्यम है जैसे जोन बात तू सगबा बोले सगबा ओकर में बोल दे और ओकर बड़ा असर होला, सही ढंग से नाटक में वो बात के प्रस्तुत कर दे। नाटक दो तरह के हुआ, एगो नाटक है कि चलो डायलॉग बोली से स्टेज में हो गल, वो नहीं, सही ढंग से
1: संदेश
0: हाँ नाटक के समझ के, नाटक के सब तत्व समझ के ओकर जब एगो प्रस्तुति करब तो ओकर सीधा असर पब्लिक पर पड़ेगा। तो वो मंच भी हमने इस्तेमाल किया जा, प्रयोग कर जा। देखा उदाहरण पर हम इक्वासीदा से हैं, हम जब गोपियो नहीं बन रहल तब हम एगो वो नाटक लिख रहे, इतिहास साक्षी है, ओकर थीम एक एगो चीज़ है कि जिस दिन ले दे नोबाम के हमने के
1: पूर्वज
0: लोग पैर रखा मॉरिश में, और 12 मार्च 1968 इसके बीच के संघर्ष की कहानी।
1: जरूर
0: बहुत को तो ये सोच रहा ना कि 1964 में हमने के देश आज़ाद होलवा तो उसी के आसपास के दिनों के संघर्ष है, नहीं, आज़ादी के संघर्ष जिस दिन पहला कदम पूर्वज लोग रखना जा तभी से शुरू हो गया रहा। तो उस संघर्ष में कई जना से हम मिला रही उस समय में, कैसे कैसे घटना के लेके तो ओके बने ले लीजा कि किस तरह से लोग ऐलन जा, और हाई बता कि नहीं कि वो लोग के संगे डोमिने हो, नहीं, जोन भी स्थिति रहल ओकर से वो लोग कैसे बाहर निकल।
1: जरूर
0: ये बड़ा आवश्यक चीज़ रहल कि ओकर से कैसे बाहर निकल ताकि दूसरे लोग हमने के नया जनरेशन उदाहरण ले कि अरे इस तरह से आलबा और हमनियों से सबसे कुछ करे। पेई के देश के स्वतंत्रता मिलकर सबसे बड़ा चीज़ नहीं है, ओके कायम करके आगे बढ़ते जाए के बड़ा चीज़ है, तो उतना नया जनरेशन करी तो ओके इस सब चीज़ों मिली। तो नाटक के भी हमने मंचन के ले जा और हमर सब नाटक में सामाजिक नाटक ज़्यादा रहला क्योंकि में वो मिसाज रहला। तो एक उदाहरण जैसे तोरा बोली इतिहास साक्षी है कि कई गो हमने मंचन शो करे जा, हर बार कोनो इंटरनेशनल कॉन्शियस आदमी के दिमाग होला कि वो नाटक के प्रस्तुत करेंगे
1: इतिहास साक्षी।
0: हाँ क्योंकि
1: वो भोजपुरी में बाकी हिंदी में,
0: हिंदी में बा, वो नाटक देख के आदमी कोई भी मॉरिशस के इतिहास नहीं जाए तो वो समझ जाए
1: जी
0: कह रही ऐसी होल बा। जो झंडा है हमने के हमारे नाटक के थीम है हमने के चौरंगा झंडा, तो ओके बता दे कैसे चौरंगा झंडा होगा इस सब के। तो इस तरह से हमने के नाटक का भी मंचन, उस मंच का भी हम प्रयोग करते हैं अपने भारतीयता को आगे बढ़ाने के।
1: और अभी आप बोला कि आप हमने के पूर्वज लोग जब यहाँ आइलन जा तो विक्चिम कमती समझ ल जा, मतलब कि स्थिति के परिस्थिति के शिकार अपन के कमती समझ लन जा, एकर से आगे दिखलन जा। हमने जब दिखिला जाता उन लोग के एगो परिस्थिति के शिकार एगो विक्टिमहुड के नज़रिया से उन लोग के दिखिला जा, लेकिन जो ई सम्मेलन चलल उकर में भी एगो विषय रहल कैसे ई विक्टिमहुड से बाहर निकलबा और फिर आगे दिखबा और

0: ही दिशा में अभी आप बात कर रहा था तो हमने के अभी जब सम्मेलन के बात कर रहे थे जा विषय के बात कर रहे थे जा तो आप कितने सम्मेलन के भी आयोजन कर रहे बा हमने के कार्यक्रम के समाप्त हुई मैं 3-4 मिनट बाकी बा इस सम्मेलन पर थोड़ा बताया जा और फिर समापन की ओर बढ़ जा।
1: हाँ, बड़ी खुशी की बात बा कि इसी साल 11, 12, 13 सितंबर के हमने के इंटरनेशनल गोपियों कन्वेंशन होने जा रहा है।
0: अच्छा,
1: जो हमने के जो बोला था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बा ओका जरिए और आज तक है प्लेटफॉर्म 15 गो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का पिछला जो हो रहा दिमिल वेनकात में वो मालेजी में रहा बहुत अच्छा
0: मतलब देश विदेश में हो
1: रहा है। हाँ, हर गोपियो चैप्टर के।
0: अच्छा।
1: एक देश के नहीं है, सब देश के है।
0: और ये बारिश कौन देश में हुई?
1: मॉरिशस में।
0: अच्छा जी,
1: मॉरिशस में।
0: तो मॉरिशन लोग सके भाग लो भारी संख्या।
1: हाँ, भारी अब काम शुरू होकर बा और बड़ी और खुशी की बात है कि अभी ले जो 15 गो होल बा में अभी ले 3 गो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गोपियों मॉरिशस मॉरिशस में होस्ट कर लेबा और है चौथा सम्मेलन जो मॉरिशस में होस्ट होता तो मॉरिशस के विश्व के पीआईओ मूवमेंट में गोपियों चैप्टर में मॉरिशस की बड़ा इज्जत से देखे लंजा सब कोई और हमने के बात माने लंजा सब कोई साथ मिलकर कह जा मतलब वो बड़ा भाई कहते हमने रही लजा और उकर में आपको पता हो कि हमने के रेकोमादासियों से गोपियो मोगिसस के रेकोमादासियों से मोगिस कैपिटल ऑफ पीआईओ घोषित है इंटरनेशनल में।
0: अच्छा जी।
1: दिमिल वैन दिमिल तुका में और मॉरिशस के प्रधानमंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री पात्रों गोपियो इंटरनेशनल के।
0: अच्छा।
1: ये सब गोपियो चैप्टर एक्सेप्ट हो गल बा दिमिल तुका से इससे कि मॉरिशस पीआईओ कैपिटल पीआईओ पीआईओ के कैपिटल मोगिस है वो देश क्योंकि यहाँ पर ही जितना आगे बढ़ लन जा हमने के पूर्व भारतीय मूल के लोग दूसरे देश थोड़ा कम चांस बा जैसे यहाँ हमने के प्रधानमंत्री पीआईओ है कई गो मंत्रिमंडल में पीआईओ तो इस तरह से पीआईओ कैपिटल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक है हर साल कोई भी प्रधानमंत्री आवे वो गोपियों इंटरनेशनल के पात्रों है।
0: अच्छा जी, मतलब कि ई एगो राष्ट्र राष्ट्रीय संस्था है।
1: हाँ।
0: खाली एगो संस्था नहीं है, एगो अकेला संस्था।
1: हाँ।
0: जैसे कि बोला था मॉरिशस के जो स्टेट हेड ऑफ स्टेट है वो ई गोपियो के भी हेड हवन
1: हेड हवन
0: जी
1: और गोपियो के अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटेरिएट जैसे
0: अच्छा।
1: विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी सेक्रेटेरिएट औसन के प्रोग्राम बा मॉरिश में बने के मॉरिशस में और हमने के जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है वो है कि ओकर स्थापना हो और कार्य यहाँ से आँचे लिमोन के पीआईओ के हो।
0: जरूर।
1: ये थोड़ा सा हमने के कोतो विषय गोपियाँ ताना सुनाल
0: और कार्यक्रम के समापन तक चला लीजा। दसोई जी आप अपन उपस्थिति देला फजीरे फजीरे शनिवार के दिन बहुत बहुत धन्यवाद। एगो आखिरी शब्द के साथ ये कार्यक्रम के समापन करी जा एगो संदेश के साथ।
1: देखा हमने के पूर्वज के बाद जब बताया जा रहा तो खाली उनका पूर्वज लोग के एगो श्रद्धांजलि के विषय नहीं बनाई गई पूर्वज लोग के जो डिटर्मिनेशन रहल जो विजन रहल
0: जो संकल्प रहल
1: जो संकल्प रहल आगे बढ़े के और लाभी में गैसी हो के ओके ध्यान में रख के ओके बढ़ाइए श्रद्धांजलि के साथ साथ प्रेम प्यार और सद्भावना जो रहल सबके परिवार में आगे बढ़े के तब देश आगे बढ़ी हव सबसे महत्वपूर्ण बा और इस अवसर पर सब लोग ओकर पर ध्यान दियन जा तो बड़ा अच्छा हो। हम के तू अपन स्टूडियो में बोले ला खातिर एम्बेसी के बहुत बहुत धन्यवाद तोरा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते
0: धन्यवाद और आप सब सुने और देखे हो रहा लो के आपके ध्यान खातिर बहुत धन्यवाद। अगला आज की चर्चा में फिर मिलब जा नमस्ते।

0: Center
1: 99.4
2: RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Musti,
2: feel the Musti.
3: Good morning, सुबह के 10 बजे हैं. सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार. आपके साथ पूजा, नमस्कार आपको.
4: नमस्कार मनीषमा, सभी को मेरा नमस्कार. पूर्व मंत्री नंदो बोधा के पुत्र जीनो बोधा की मौत दम घुटने से हुई है. सेफ सिटी कैमरों की मदद से जीनो बोधा हत्याकांड को सुलझाया जा सका है. कल रात पुलिस के चीफ फॉरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर सुदेश कुमार गंगाधीन द्वारा किए गए पोस्टमार्टम से ये पता चला है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है. गला घोंट कर उसे मारा गया है. जीनो बोधा को कल दिन के दौरान लानिकोलिया में मृत पाया गया था. उनका अंतिम संस्कार आज दिन के दौरान किया जा रहा है. अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके पिता नंदो बोधा के मकान सुल्केगिनो नंबर 5 वाकवा से उठाकर थॉमामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. एबीसी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करती है. मौसे सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की मांग करता है ताकि गंगा तालाब को तीर्थ स्थल के रूप में सम्मान दिया जा सके. और गंगा तालाब में एक पर्यटक पर किए गए हमले के बाद ये बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि उसे वहां मांसाहारी भोजन करते देखा गया था. इस घटना की जानकारी पर्यटन मंत्रालय और कला एवं संस्कृति मंत्रालय को दी गई है. हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी प्रकार के आक्रामक व्यवहार की निंदा करता है. आज ज्येष्ठ मास की अमावस्या है और आज ही के दिन शनि जयंती मनाई जा रही है. हिंदू धर्म में शनि देव का कर्म फलदाता और न्याय का देवता माना जाता है. मान्यता है कि आज ही के दिन सूर्य पुत्र शनि देव का जन्म हुआ था. और इस बीच आज बहुत से भक्त मंदिर में शनि देव पूजा करने गए हुए हैं. विदेश में दक्षिणी लबनान के एक शहर पर इजरायली हमले में 6 लोगों की मौत. लबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों ने 45 दिन के संघर्ष विराम पर सहमति जताई है. तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय में शोक समाचार. नंबर 37 बिशॉलिन सैंपल फिनिक्स में, नंबर 37 बिशॉलिन सैंपल

0: फिनिक्स में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्डर श्री जगदेव चमन जिन्हें लोग सुरेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे इनके मकान नंबर 37 बिशालेन सैंपल फिनिक्स से उठाकर फिनिक्स श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 2:30 PM। अवेन्यू बेली ट्वेल पॉम्पलेमूस में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्डर श्री रोहिताश रामदीन जिन्हें लोग सुरेश नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे इनके मकान अवेन्यू बेली ट्वेल पॉम्पलेमूस से उठाकर तियामिनी स्त्रियोले किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे 8:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

हुज़ाफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा ने इनसे शिकायत की और कहा कि तू बहुत नालायक बेटा है, तुझे क्या मालूम कि जमाने जाहिलियत की औरतों का क्या हाल था। अगर तेरी माँ से कोई कसूर हुआ होता तो आज वो कैसी रुस्वा होती। इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हबशी गुलाम को मेरा बाप बता देते तो मैं यकीन के साथ मान लेता। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि लोग मजाक उड़ाने के लिए बदतरीके इस्तेहजा इस किस्म के सवाल किया करते थे। कोई कहता मेरा बाप कौन है, कोई पूछता मेरी ऊंटनी गुम हो गई है वो कहाँ है। इस पर यह आयत नाजिल हुई। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में हज फर्ज होने का बयान फरमाया और आपने फरमाया लोगों तुम पर हज फर्ज किया गया। ये सुनकर एक शख्स ने कहा कि क्या हर साल हज फर्ज है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, खामोश रहे। पूछने वाले ने सवाल को फिर दोहराया, इस तरह तीन मरतबा उसने सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैं बयान न करूं उसके दर पे न हो, जिस चीज का मैं जिक्र न करूं उसके मुतालिक मुझसे मत पूछो। अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता और तुम न कर सकते। इससे मालूम हुआ कि शरई अहकाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किए गए हैं। आप जिसे फर्ज फरमा दें वो फर्ज हो जाएगा और जिसे ना फरमाएं वो ना होगा। और इन अहादीस तैयबा से ये भी मालूम हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा इल्म अता फरमाया कि जब आपसे हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा ने पूछा मेरा बाप कौन है तो प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई। हालांकि ये एक ऐसा मामला है कि इस पर मुत्तले होना इंसान की बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको गैबी इल्म अता फरमाया और अल्लाह की तरफ से आपको यकीनी इल्म अता किया गया, जिसके मुताबिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को बयान फरमाया। इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, आपका इल्म, आपकी शान, आपकी अजमत मालूम होती है। दूसरी बात यह कि इस आयत करीमा में यह बयान किया गया कि ला तसअलू अन अशिया इन तुबदलकुम तसुकुम, ऐसी बातें न पूछो जो तुम पर जाहिर की जाए तो तुम्हें बुरी लगें। और फिर आप अहदीस तैयबा से समझ चुके, सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से मामलात में खामोशी इख्तियार फरमाते हैं, बहुत से मामलात जाहिर नहीं फरमाते। इसकी ये वजह नहीं होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं, बल्कि वजह यह होती है कि आप किसी मसलहत की वजह से उसका इजहार पसंद नहीं फरमाते। وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ, और अगर उन्हें उस वक्त पूछोगे कि कुरान उतर रहा है तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। عَفَا اللَّهُ عَنْهَا, अल्लाह उन्हें माफ फरमा चुका है। وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ, और अल्लाह बख्शने वाला हिल्म वाला है। इस आयत से साबित हुआ कि जिस काम की शरीयत में ममानात ना आई हो, जिस काम से शरीयत ने मना ना किया हो, वो जायज है। हजरत सलमान रदी अल्लाह ताला की हदीस में है कि हलाल वो है जो अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल फरमाया, हराम वो है जिसको उसने अपनी किताब में हराम फरमाया।

और जिससे सुकूत किया वो माफ, तो कुलफत में न पड़ो, मुश्किल में न पड़ो। कितना वाज़े हुक्म है कि जो चीजें हराम की गई वो हराम है, और जो चीजें हराम बयान नहीं की गई वो जायज हैं, हलाल हैं। लिहाजा उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए कि वो हर मामले में कहते हैं अगर ये जायज है तो बताओ कुरान में कहां जायज लिखा है, हदीस पाक में इसको जायज कहां कहा गया है। तो उसूल हमेशा के लिए समझ लें, कुरान और हदीस में जिस काम को नाजायज कहा गया, हराम कहा गया, गुनाह कहा गया, वो गुनाह है, हराम है, नाजायज है। इसके अलावा तमाम काम जिन्हें हलाल कहा गया वो भी हलाल हैं, जिन्हें जायज कहा गया वो भी जायज हैं, और जिनके मुतालिक सुकूत है, जिनका जिक्र नहीं किया गया, वो भी जायज हैं और हलाल हैं। अपनी तरफ से किसी हलाल चीज को हराम करार देना ये अल्लाह ताला पर झूठ बांधना है। قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, तुमसे पिछली एक कौम ने उन्हें पूछा, यानी अपने अंबिया से लोगों ने इस तरह के बेजरूरत सवालात किए। जब अंबिया अलैहिस्सलाम ने अहकाम बयान फरमा दिए तो वो अमल न कर सके। قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ, तुमसे पहले एक कौम ने उन्हें पूछा, ثم أصبحوا بها كافرين, फिर उनसे मुनकिर होकर बैठ गए। पहले उन्होंने सवाल किया, जब सवाल पर हुक्म आया तो उन्होंने इनकार कर दिया। यहां पर एक मसला बहुत जरूरी है वो समझ लें कि जब कुरान मजीद फुकान हमीद नाजिल हो रहा था उस मौके पर सहाबा कराम को हुक्म दिया गया कि जिस काम का, जिस हुक्म का बताना जरूरी होगा वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बयान कर देंगे, तुम इनसे मत सवालात करो, अगर सवाल ज्यादा करोगे तो मुश्किल अहकाम नाजिल होंगे, तुम्हारे लिए वो चीजें जाहिर हो जाएंगी जो तुम्हें फिर नागवार गुजरेंगी। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जाहिरी हो गया, कुरान के नुजूल का सिलसिला खत्म हो गया, शरीयत के अहकाम मुकम्मल हो गए, अब अगर हम किसी मुफ्ती साहिब से या आलिम साहिब से जितने भी सवालात करें, ज्यादा सवाल भी करें, तो उनसे ज्यादा सवाल करने से कोई शरीयत नाजिल नहीं होगी, शरीयत तो पहले ही नाजिल हो चुकी है। तो हम जितने भी सवालात करें वो वही हुक्म बयान करेंगे जो कुरान पाक में है, जो हदीस पाक में है। बाद लोगों ने इन बातों का मतलब गलत लिया और वो कहते हैं कि किसी आलिम से ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए, अगर ज्यादा सवाल करोगे तो फंसोगे। हमने कहा वो कैसे फंस जाएंगे, क्योंकि हम जितने भी सवालात करें वो तो वही हुक्म बयान कर सकते हैं जो शरीयत में हुक्म मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ज्यादा सवालात किए जाते तो नए अहकाम नाजिल हो जाते थे, और यहां तो ऐसा नहीं है। और दूसरा, कुरान मजीद फुकान हमीद ने हुक्म दिया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर नहीं मालूम तो अहले इल्म से पूछो, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें पूछने का हुक्म दिया कि अहले इल्म से पूछो। तो वो इसका जवाब ये देते हैं कि जब हम पूछेंगे और वो मसला बयान कर देंगे फिर हम अमल नहीं करेंगे तो हमें गुनाह होगा। बहुत बड़ी नादानी है।

सामीन, अभी आप सूरह अल-मैदा के 14वें रुकू का पहला हिस्सा, उसकी तफसीर आप समाप्त कर रहे थे बज़बानी अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर आसिफ कादरी दामद बरकत मालिया। पेश खिदमत है गोशे नसीहत में काजी और तीन अनोखे मुकदमे, उसके बाद हम प्रोग्राम जारी रखेंगे जिसमें खास हज के मुतालिक कलाम आपको गो

0: सुबह का वक्त था। बगदाद की अदालत में लोगों का हुजूम लगा हुआ था। काजी अब्दुल हक अपनी नशिस्त पर बैठे थे कि दरवाजे पर एक बूढ़ा बढ़ई दाखिल हुआ। उसके कपड़े गर्द आलूद थे और चेहरे पर दुख की लकीरें। वो सीधा काजी के कदमों के करीब आकर रुक गया और बोला, हुजूर, मैं इंसाफ लेने आया हूं। एक ताजिर ने मेरी मेहनत लूट ली है और अब उल्टा मुझे ही झूठा कहता है। काजी ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, पहले सुकून से बात करो, सच कहो और कुछ ना छुपाओ। बूढ़े ने सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतारने आया हो। बोला, मैं बढ़ई हूं। दिन रात मेहनत करके एक ताजिर के लिए खास लकड़ी का दरवाजा तैयार किया। जब दरवाजा मुकम्मल हुआ तो वो शख्स बहुत खुश हुआ। बोला, शाम को मजदूरी ले जाना। मगर जब मैं लेने गया तो वो इनकार कर गया। कहने लगा, लकड़ी इसकी थी, मैंने इसके माल को जाया किया। हुजूर, वो दरवाजा उसके घर लगा हुआ है और मैं कई दिनों से भूखा बैठा हूं।
1: काजी ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर सिपाही को हुक्म दिया, ताजर को बुलाओ। कुछ देर में एक शख्स अंदर आया, लिबास कीमती, चाल में गुरूर। आते ही बोला, हुजूर, ये बढ़ई झूठ बोल रहा है, लकड़ी मेरी थी, ये काम मुकम्मल न कर सका, मैंने कहा छोड़ दो, मगर ये जबरदस्ती मजदूरी मांगता है। काजी ने दोनों को देखा, उनकी निगाहों में ऐसा सुकूत था जैसे वो सिर्फ लफ्जों के पीछे सच तलाश कर रहे हों। फिर आहिस्ता से बोले, दरवाजा कहाँ है? ताजिर बोला, मेरे घर लगा है। काजी ने कहा, कल वो दरवाजा अदालत में ले आओ, फैसला उसके सामने होगा। अगली सुबह दरवाजा अदालत के बीच रखा गया। लोगों का हुजूम पहले से ज्यादा था। हर शख्स देखना चाहता था कि काजी अब्दुल हक इस झगड़े को कैसे हल करते हैं। काजी ने दरवाजे के करीब जाकर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों चुप रहो, मैं खुद फैसला सुनूंगा। उसने दरवाजे के एक पैनल पर हल्की जर्ब लगाई। लकड़ी से एक खास सी खुशबू उठी, जैसे किसी पुराने दरख्त के दिल से मट्टी की महक निकल रही हो। काजी ने बढ़ई से पूछा, ये लकड़ी कहां से लाए थे? बढ़ई फौरन बोला, शुमाली जंगल से, वहां की लकड़ी में यही महक होती है, मैंने अपनी मजदूरी से खरीदी थी। काजी ने ताजिर से पूछा, और तुम्हारी लकड़ी कहां से आई थी? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, जुनूबी बियाबान से, वहां की लकड़ी सस्ती होती है, इसी से मैंने काम का हुक्म दिया था। काजी ने मुस्कुराकर कहा, फिर फैसला वाज़ह है, ये लकड़ी शुमाली जंगल की है, इसकी खुशबू और साख्त बता रही है, यानी लकड़ी बढ़ई की थी, काम भी उसी का, लिहाजा दरवाजा और मजदूरी दोनों उसी के हक में हैं।
2: अदालत में मुकम्मल सुकूत छा गया। फिर हजूम से एक आवाज उठी, अल्लाहु अकबर, क्या इंसाफ है? काजी ने हाथ उठाया और कहा, इंसाफ अक्ल से नहीं, नीयत से होता है। अक्ल तो रास्ता दिखाती है, मगर नीयत इंसाफ को पाक रखती है। बढ़ई रोते हुए बोला, हुजूर, आपने मेरा हक बचा लिया। काजी ने कहा, तुम्हारा हक तुम्हारी मेहनत में था, मैंने सिर्फ पहचान दी है। ताजिर शर्मिंदा होकर सर झुकाए बाहर निकला और मजमा काजी अब्दुल हक के अदल की तारीफ में डूब गया। लेकिन काजी के चेहरे पर सुकून नहीं था, दिल में सोच रहा था, ये अक्ल का इम्तिहान था। अगला इम्तिहान शायद ईमान का हो, और वो ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अक्ल इंसान को सच दिखाती है, मगर ईमान उसे साबित कदम रखता है। शाम ढल रही थी। काजी ने अदालत बंद की, वजू किया और मस्जिद के कोने में बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, ए रब, तूने मुझे अक्ल अता की, मगर मैं तुझसे वो रोशनी मांगता हूं जो सिर्फ ईमान वालों के दिल में उतरती है, क्योंकि अगर अक्ल इंसाफ दे भी दे तो ईमान ही उसे जिंदा रखता है। उसी लम्हे एक नया दरवाजा खुला। अदालत के बाहर शोर मच गया। काजी जानता था दूसरा साइल आ गया है और अब इम्तिहान अक्ल नहीं बल्कि ईमान का होने वाला है।
3: अगली सुबह बगदाद की अदालत

0: फिर खुली। काजी अब्दुल हक नमाज फज्र के बाद जब अपनी निशिस्त पर बैठे तो फिजा में अजब सी खामोशी थी। आज उनके दिल में कुछ बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा मामला आने वाला हो। दरवाजे पर पहरेदार ने इत्तला दी, हुजूर, एक औरत इंसाफ चाहती है। काजी ने इजाजत दी, दरवाजा खुला और एक नकाब पोश औरत अंदर आई। उसके साथ एक मर्द भी था जिसके चेहरे पर गुस्सा और गुरूर साफ नजर आता था। औरत के कदम धीरे थे मगर आवाज में लर्जिश के बावजूद एक यकीन महसूस होता था। उसने कहा, हुजूर वाला, मेरा ईमान मेरी पना है मगर लोग मेरा यकीन तोड़ना चाहते हैं। मैं सच कहती हूँ और ये शख्स मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। काजी ने तहम्मुल से कहा, बीबी, इत्मीनान से बात करो, क्या मामला है?
1: औरत ने नकाब थोड़ा सा हटाया, चेहरे पर थकन और खौफ के आसार नुमाया थे। बोली, मैं एक यतीम औरत हूँ, शौहर फौत हो चुका है, एक छोटा बच्चा है। इस शख्स ने मुझसे कहा कि वो मेरा मकान खरीदना चाहता है ताकि मुझे कुछ सहारा मिल जाए। मैंने कहा कि मकान वक्फ है, बेच नहीं सकती, मगर ये बाजिद रहा। फिर एक दिन ये मेरे दरवाजे पर आया और कहने लगा कि मैंने इसे मकान बेच दिया है, गवाह भी मौजूद है। हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कभी सौदा नहीं किया, मगर अब ये मकान अपना कह रहा है। काजी ने मर्द से पूछा, तुम क्या कहते हो? वो फौरन बोला, हुजूर, मैंने इस औरत को सोना दिया, इसके बदले में मकान लिया। दो गवाह हैं जो देख चुके हैं। अगर वो झूठ बोल रही है तो ईमान का इम्तिहान आप लें, अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह मुझे रुस्वा करे। काजी खामोश हुए, फिर बोले, गवाह बुलाओ। दोनों गवाह हाजिर किए गए, दोनों ने मर्द के हक में बयान दिया। काजी ने औरत की तरफ देखा, उसके चेहरे पर आंसू थे मगर होंठों पर सुकूत। काजी ने कहा, औरत, तेरे पास कोई सबूत है, कोई तहरीर, कोई गवाह? औरत ने सर झुका लिया, मेरे पास सिर्फ अल्लाह है। मैं जानती हूं अगर ईमान से कहूं कि यह मकान मेरा है तो अल्लाह मेरा मददगार होगा। काजी ने देर तक सोचा, अदालत में सबकी नजरें उस पर थीं। गवाहों के बयान के बाद फैसला आसान लगता था मगर काजी के दिल में एक रोशनी थी जो अकल से नहीं ईमान से आती थी।
2: काजी ने औरत से पूछा, जब तुमने मकान बनाया था तो ईंटें कहां से लाई थीं? औरत ने हैरान होकर कहा, ये सवाल क्यों? काजी ने कहा, बताओ। उसने कहा, नहर के किनारे से, मैंने अपने शौहर के साथ खुद बनवाई थीं। काजी ने मर्द से पूछा, तुमने जब मकान खरीदा तो कीमत कहां तय हुई थी? वो घबरा गया, बोला, बाजार में, सबके सामने। काजी ने कहा, बाजार में किस वक्त? वो हिचकिचाया, दोपहर को। काजी ने गवाहों से पूछा, तुम वहां कब थे? एक बोला, असर के वक्त, दूसरा बोला, दोपहर के वक्त। काजी ने गहरी नजर डाली, तो तुम दोनों का वक्त मुख्तलफ है, फिर तुम गवाही कैसे दे रहे हो? अदालत में सरगोशियां होने लगीं। काजी ने हाथ उठाया, खामोशी, फिर बोला, मैं अल्लाह के नाम पर फैसला करता हूं, अगर ये औरत ईमान से कहती है कि इसने मकान नहीं बेचा तो इसकी कसम काफी है, क्योंकि ईमान झूठ का साथ नहीं देता। औरत के हाथ कांप रहे थे मगर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं, ये मकान मेरा है, मैंने इसे नहीं बेचा। काजी ने नजरें नीची की, फिर बोले, अल्लाह की कसम वही जानता है जो दिलों का हाल जानता है, मगर ईमान की रोशनी कभी झूठ के साए में नहीं रह सकती। मर्द कुछ बोलने ही वाला था कि काजी ने सिपाही से कहा, जाओ मकान की दीवार में से एक ईंट निकालो। सब हैरान रह गए। ईंट निकाली गई तो अंदर एक पुराना कागज बरामद हुआ। उस पर शौहर का हाथ का लिखा हुआ वक्फ नामा था, जिसमें दर्ज था कि ये मकान अल्लाह के नाम पर वक्फ है और कोई इसे बेच या खरीद नहीं सकता।
3: अदालत में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर औरत सजदे में गिर पड़ी। काजी ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया, बोले, ये ईमान का इम्तिहान था, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया अल्लाह ने उसी की मदद की। झूठ के गवाह हमेशा कमजोर पड़ जाते हैं। मर्द कांपता हुआ अदालत से बाहर निकल गया और लोग देर तक काजी के इस फैसले की बात करते रहे। काजी अब्दुल हक ने अपने दिल में कहा, पहले इम्तिहान में अकल कामयाब हुई, दूसरे में ईमान, मगर मुझे मालूम है तीसरा इम्तिहान सबसे सख्त होगा, इंसाफ का, क्योंकि इंसाफ वो चिराग है जो अकल और ईमान दोनों से जलता है, मगर बुझ जाए तो जुल्म का अंधेरा छा जाता है।
0: दिन गुजरते गए मगर काजी अब्दुल हक के दिल में एक बेचैनी थी। दो फैसले हो चुके थे, एक अक्ल से, दूसरा ईमान से।
2: मगर

0: वो जानते थे कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। वो अक्सर रातों को जागकर दुआ करते, ए रब्बुल आलमीन, तूने मुझे इल्म दिया, समझ दी, ईमान दिया, मगर इंसाफ सिर्फ तब मुमकिन है जब दिल में खौफ खुदा बाकी रहे। मुझे वो नज़र अता कर जो सच और झूठ के बीच का पर्दा हटा दे। एक शाम वो अपनी अदालत बंद करने ही वाले थे कि दरवाजे पर एक नौजवान आया, चेहरे पर दर्द, लिबास पर खून के धब्बे। वो हांफता हुआ बोला, हुजूर, मैं कातिल नहीं हूं, मगर लोग मुझे कत्ल का मुजरिम कह रहे हैं। मैं अपनी जान बचाने नहीं आया, सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। काजी चौंक गए, बोले, किसका कत्ल हुआ है? नौजवान के आंसू बह निकले, मेरे मोहल्ले का ताजिर मुर्दा पाया गया। उसकी लाश मेरे घर के करीब से मिली और मेरे हाथ पर खून लगा था, क्योंकि मैं उसे बचाने गया था, मगर सबने शोर मचा दिया कि मैं ही कातिल हूं। अब सब सबूत मेरे खिलाफ हैं, मगर मैं जानता हूं कि मेरा रब सच्चा है। अगर आपने मुझे इंसाफ न दिया तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगा।
1: काजी ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि मकतूल के घर वालों और गवाहों को बुलाया जाए। कुछ ही देर में मकतूल का भाई अदालत में दाखिल हुआ, चेहरे पे गुस्सा और आंखों में इंतकाम। उसने बुलंद आवाज में कहा, हुजूर, ये कातिल है, मेरे भाई के खून से इसके हाथ रंगे हैं, हमने खुद देखा, वो लाश के पास खड़ा था। काजी ने कहा, लाश के पास खड़ा होना जुर्म नहीं, कत्ल साबित करना जरूरी है, तुम्हारे पास कोई गवाह है? उसने दो आदमियों को बुलाया। दोनों ने कहा, हमने शोर सुना, भागकर पहुंचे तो मकतूल जमीन पर पड़ा था और ये शख्स पास झुका हुआ था, उसके हाथ पर खून था। काजी ने पूछा, क्या तुमने कत्ल होते देखा? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, नहीं, मगर मंजर वाज़े था। काजी ने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर बोले, तुम सब जानते हो कि कत्ल के फैसले में एक लम्हे की गलती भी कयामत के दिन सवाल बन जाएगी। मैं सिर्फ वो मानूंगा जो आंखों ने देखा हो, जबानों ने नहीं।
2: काजी ने नौजवान से पूछा, सच सच बताओ, तुम वहां क्यों थे? उसने कहा, मैं ताजिर के घर के करीब रहता था, शोर सुना तो भागा, देखा वो जख्मी पड़ा है, मैंने उसे उठाने की कोशिश की, खून मेरे हाथ पर लग गया, मैंने मदद के लिए पुकारा, मगर लोग आ गए और मुझे पकड़ लिया। काजी ने पूछा, ताजिर के घर में कौन रहता था? जवाब आया, इसका एक नौकर जिसका नाम करीम था, मगर वो लापता है। काजी ने फौरन सिपाही भेजे, करीम को तलाश करो। कई घंटे गुजर गए, शाम हो गई, काजी ने अदालत बंद नहीं की। आखिरकार सिपाही करीम को पकड़ लाए, वो कांप रहा था। काजी ने कहा, करीम, सच बोलना तुम्हारे हक में बेहतर होगा, क्या तुमने कत्ल किया? वो चीख पड़ा, नहीं हुजूर, मैंने नहीं किया, मैं तो भाग गया क्योंकि मैं डर गया था। काजी ने गौर से उसका चेहरा देखा, उसके कपड़ों पर भी धब्बे थे। उन्होंने कहा, ये खून के धब्बे कैसे लगे? करीम खामोश रहा। फिर काजी ने दोनों के सामने एक प्याला रखवाया जिसमें पानी भरा था और कहा, अल्लाह की कसम खाओ, जिसने कत्ल नहीं किया वो इस पानी में हाथ डाले, अल्लाह जानता है कौन सच्चा है।
3: नौजवान ने फौरन हाथ डाल दिया, मगर करीम पीछे हट गया। काजी ने सख्त लहजे में कहा, क्यों नहीं डालते? अगर तुम बेकसूर हो तो खौफ कैसा? वो लरस्ती आवाज में बोला, मैंने कत्ल नहीं किया, मगर देखा कि ताजिर अपने भाई से लड़ रहा था, मैं बीच में पड़ा तो धक्का लग गया, वो जमीन पर गिरा और उसके सर से खून बह निकला, मैं डर गया और भाग गया। अदालत में एकदम खामोशी छा गई, मकतूल का भाई कांप गया। काजी ने कहा, तो ये हादसा था, मगर तुमने खामोशी इख्तियार करके जुल्म को जन्म दिया, तुम कातिल नहीं, मगर तुम्हारी खामोशी शरीक जुर्म है। फिर काजी ने मकतूल के भाई की तरफ देखा, तुमने झूठे इल्जाम लगाए, कसम खाई और बेगुनाह को मुजरिम ठहराया, ये तुम्हारा जुर्म है। काजी ने फैसला सुनाया, कत्ल हादसाती था, मगर इंसाफ का तकाजा यह है कि मकतूल के घर वालों को दियत दी जाए, करीम मजदूरी करेगा और दियत अदा करेगा, जबकि झूठे गवाहों को सजा दी जाएगी ताकि अदालत का वकार कायम रहे। मजमा में एक गहरी खामोशी फैल गई। काजी ने कुर्सी से उठकर कहा, यह इंसाफ का इम्तिहान था, अक्ल से बात शुरू हुई, ईमान ने रास्ता दिखाया, मगर इंसाफ वो चराग है जो तभी जलता है जब दिल खौफ खुदा से भरा हो, क्योंकि जिस दिन इंसाफ से रोशनी छिन गई उस दिन अक्ल अंधी हो जाएगी और ईमान बेअसर।

0: ही अब्दुल हक ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर सुकून था। दिल में कहा, ए रब, तूने तीनों इम्तिहान लिए, अक्ल, ईमान और इंसाफ, और मुझे सिखा दिया कि सच्चा काजी वो नहीं जो लोगों को राजी करे, बल्कि वो है जो तुझे नाराज न करे। अदालत के दरवाजे बंद हो गए मगर बगदाद के गली कूचों में उस दिन एक ही जुमला गूंजता रहा कि काजी अब्दुल हक का फैसला अल्लाह के हुक्म जैसा था।
1: रात का वक्त था, बगदाद की फिजा में हल्की हवा चल रही थी। काजी अब्दुल हक की अदालत आज खाली थी। चराग की लौ हल्की सी कांप रही थी, जैसे वो भी दिन भर के फैसलों के बाद थक गई हो। काजी खामोश बैठे थे, निगाहें कुरान पर जमी थीं, मगर दिल कहीं और भटक रहा था। उनके जहन में पिछले तीनों फैसलों की तस्वीरें घूम रही थीं। वो बढ़ई जिसने अक्ल से हक पाया, वो औरत जिसने ईमान से निजात पाई, और वो नौजवान जिसे इंसाफ ने बचाया। मगर दिल कहता था, क्या इंसान का फर्ज यहीं तक महदूद है? क्या इंसाफ सिर्फ अदालत में होता है, या दिल के अंदर भी एक अदालत होनी चाहिए जहां इंसान खुद अपना काजी हो? इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। काजी चौंके, इस वक्त कौन? बाहर से एक नर्म मगर उदास आवाज आई, मैं एक मुसाफिर हूं, पनाह चाहता हूं। काजी ने इजाजत दी, दरवाजा खुला, एक नौजवान अंदर आया, चेहरे पर खाक, आंखों में थकन, मगर अंदाज बावकार। उसने कहा, हुजूर, मैं कई दिन से सफर में हूं, रात गुजारने की इजाजत चाहता हूं, कल सुबह चला जाऊंगा। काजी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, ये अदालत सबके लिए है, मगर ये काजी का घर भी है, जहां इंसाफ के साथ मेहमान नवाजी भी फर्ज है। बैठो, आराम करो, पानी लो।
2: नौजवान ने पानी पिया और कालीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद बोला, हुजूर, मैंने आपके फैसलों की शोहरत सुनी है। लोग कहते हैं आपके पास झूठ की गुंजाइश नहीं, मगर मैं एक सवाल लाया हूं जो अदालत से नहीं, ईमान और इंसाफ दोनों से जुड़ा है। काजी ने दिलचस्पी से पूछा, कहो, क्या सवाल है? नौजवान ने कहा, अगर एक काजी के सामने एक ऐसा मुकदमा आए जिसमें दोनों फरीक सच्चे हों, मगर अंजाम किसी एक को नुकसान पहुंचाए, तो काजी क्या करे? काजी चंद लम्हे खामोश रहे, फिर
3: ये सवाल काजी के दिल में तीर की तरह लगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चराग की लौ को देखने लगे। नौजवान ने आहिस्ता से कहा, मैं दरअसल उस ताजिर का बेटा हूं जिसके मुकदमे का फैसला चंद माह पहले आपने किया था, वही दरवाजे वाला। मेरे बाप ने सच छुपाया था, आपने अकल से पहचान लिया। मैं उस दिन नाराज हुआ था, मगर आज समझ आया कि अगर आप उस दिन हक ना बोलते तो मैं भी आज झूठ की राह पर होता। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हर काजी ऐसा ही होता है? काजी ने कहा, नहीं बेटा, हर काजी ऐसा नहीं होता। कुछ काजी दौलत से अंधे होते हैं, कुछ शोहरत से, मगर याद रखो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वो कभी अंधा नहीं होता। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, बोला, मेरे बाप ने अपनी आखिरी सांसों में कहा था, काजी अब्दुल हक के फैसले ने मुझे बचा लिया, क्योंकि उसने मेरा जमीर जगा दिया। ये सुनकर काजी की आंखें भी नम हो गईं। बोले, बेटा, जब इंसान का जमीर जाग जाए तो वो सबसे बड़ा इंसाफ होता है। अदालत का फैसला कागज पर लिखा जाता है, मगर जमीर का फैसला दिल पर नक्श हो जाता है।
4: रात गुजर गई, सुबह की अजान हुई, बगदाद का आसमान नीला हो चुका था। लोग जब अदालत पहुंचे तो देखा काजी अब्दुल हक अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, चेहरे पर सुकून, हाथ में कुरान, मगर उनकी सांसें रुक चुकी थीं। मेज पर एक छोटा सा पर्चा रखा था जिस पर लिखा था, अक्ल ने मुझे पहचान दी, ईमान ने मुझे रोशनी दी, मगर इंसाफ ने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। इंसान के तीन इम्तिहान यही हैं, अक्ल, ईमान और इंसाफ, और जो इनमें कामयाब हो गया वो कभी मखलूक का नहीं बल्कि खालिक का काजी बन जाता है। शहर भर में ये खबर फैल गई। लोग रोते हुए कहने लगे, काजी अब्दुल हक चला गया, मगर अदल की खुशबू उसके फैसलों में बाकी रहेगी। इसके बाद बगदाद की हर अदालत के दरवाजे पर एक जुमला लिखा गया, जहां अक्ल कम पड़ जाए वहां ईमान रास्ता दिखाता है, और जहां ईमान थक जाए वहां इंसाफ अल्लाह की अमानत बन जाता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सीईबी रॉयल रोड

0: आर्सेनल, रॉयल रोड आर्सेनल और साथ ही एवाको, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताता है कि यहाँ पर कल रविवार 17 मई को सुबह के 8:30 बजे से सपहर के 4:30 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही सेंट जोसेफ आर्सेनल यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहक, खासकर रॉयल रोड आर्सेनल यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी कल रविवार 17 मई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। पोर्ट लुइस के रहने वाले ग्राहकों को भी सूचित किया जाता है। पोर्ट लुइस के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक रुई, कारिकाल, त्रिचनापुली, मालाका, कोरिंगा, रेने, माइग्रोट, पोले व्यजनी, गोरा इसाक, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर रविवार 17 मई को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही मौसलमा थाना कुडी, मौसलमा लाइमून, NHDC रियोबेल सुरीनाम, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर सोमवार 18 मई को सुबह के 9 से दोपहर के 3 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही सेबास्तोपोल के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, सेबास्तोपोल के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक, विलाज दे पेलग्रे, सेबास्तोपोल रोड, सीताराम रोड, टूरिस्ट स्ट्रीट, क्लावेत रोड, सुजिन रोड, रेसिडेंस ओपाल, बॉम्बे स्ट्रीट, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर रविवार 17 मई को सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही फ्लोरियाल के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, फ्लोरियाल के इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक, डेबर्ग, एडवर्ड स्ट्रीट, किंग जॉर्ज 5 एवेन्यू, मोंगो स्ट्रीट, बच लेन, हेस्केट हाइट स्ट्रीट, क्वीन मैरी एवेन्यू, जॉन कैनेडी एवेन्यू, जॉर्ज कोबेट स्ट्रीट, लाला लेन, ल्यूसियन दे साजाल स्ट्रीट, एनएस हारल स्ट्रीट, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर भी कल रविवार 17 मई को सुबह के 8:30 से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी कुछ विज्ञप्तियां CEB की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: बालानंदम శ్రోతలకు విశేషంగా మన ముద్దు ముద్దు పిల్లలందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారం. బాలానందం అనేది మన పిల్లల కోసం విశేషంగా ప్రసారమవుతున్నది ప్రతి శనివారం నాడు ఈ మధ్యాహ్నపు వేళ 25 నిమిషాలకు. కొన్ని చిలకమ్మ పాటలు, చిట్టి చిలకమ్మ చిట్టి బాబుకి, చిన్న పిల్లలందరికీ ఆనందకరమైన పాటలు ప్రసారం చేసి మిగిలిన 20 నిమిషాలకు సినీ పాటలతో ప్రసారం చేస్తాం మన కార్యక్రమం. అయితే పదండి శ్రోతలరా, విశేషంగా మన పిల్లలారా, విశేషంగా మీకోసం ఏర్పాటు చేస్తాం, ప్రసారం చేస్తాం విశేషంగా శనివారం నాడు మధ్యాహ్నపు వేళ కార్యక్రమం మీకోసం.

राजाची तू ग राणी ग आली ठुमकत नहर लचकत।

0: होगा। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए हमारे मन में बस यही दुआ उठ रही है कि आपके लिए आपकी सेहत अच्छी हो, आप खुश हो और आज का दिन आपका बहुत अच्छे से गुजर रहा हो। और जो भी बहाना चाहिए आपको खुश रहने का, वो बहाना आपके दामन में भगवान हमेशा भरता रहे। चलिए आप लोगों के नाम करते हैं हम आज का आपकी पसंद कार्यक्रम।
1: आपकी पसंद,
0: जी हाँ, आपकी पसंद वाले गाने ही पेश करेंगे हम इस प्रोग्राम में। आप अगर हमें फ़ोन करना चाहते हैं तो 4028085 पर फ़ोन कीजिएगा और बताइएगा कौन सा गाना सुनना चाहेंगे। और जो आप मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो 5251700 पर आप हमें मैसेज भेजिएगा, हम आपकी पसंद के गाने अब तक ज़रूर पहुंचाएंगे, आपके अपनों के नाम भी करेंगे ये गाने। फ़िलहाल तो चलिए हम मर्द मूवी का ये गाना आप लोगों के नाम करते हैं और ये गाना एंजॉय कीजिएगा। अमृता सिंह और अमिताभ बच्चन का वो सीन याद कर लीजिएगा, जब ये गाना सुनते हैं तो वो सीन ज़रूर याद आता है।

छोरा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

हमारी आपकी मुलाकात आपकी पसंद कार्यक्रम में हो रही है और आपकी पसंद कार्यक्रम में इस बार जो हम गाना सुनवाएंगे वो होगी हमारे प्रोग्राम की पहली फरमाइश, और ये पहली फरमाइश होगी गायत्री जी की। गायत्री जी जो नुवरफॉन्स की रहने वाली है, उन्होंने ये गाना मांगा है अपने बेटे अजय के लिए, और उन्होंने ये गीत मांगा है अपनी मामी कल्याणी मोहन जी के लिए जो रहती है मेबर्ग, और साथ में लॉन्ग माउंटेन की भाभी शकुंतला है, नुवरफॉन्स की गीता बाई हैं उनकी सखी। तो चलिए ज़रा सुनते हैं हम दिल एक मंदिर मूवी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और चलिए जरा हम इस बार आशा भोसले की आवाज़ में सुनते हैं गाना जो है नाटक मूवी से लिया गया, और ये गाना हम पेश करते हैं सुनीता जी के लिए जो रहती हैं घोंघब। उन्होंने ये गाना कुंगुमा की अपनी बहन विमला जी के नाम किया है।

और जिंदगी एक नाटक गाने के बाद चलिए जरा हम हमराही मूवी का वो गाना सुनते हैं जिसकी फरमाइश रेहाना जी ने नथोदाम से की है, माला फावदो के लिए, सुरेखा जी के लिए और रैशा बुधू के लिए।

0: 890 kilowatts. This is Radio Mauritius.
1: और चलिए 2:37 हुए हैं, एक गाना नाम करते हैं हम रफीक दौलत जी के, उनकी पत्नी उनकी बेगम नूर जहां जी के लिए हम पेश करते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये गाना जो है घर संसार।

और चलिए जरा हम पेश करते हैं इम्तिहान मूवी का गाना। ये है कुमार सानू की आवाज़ और ये गाना हम पेश कर रहे हैं विश्वानी दुबन जी की पसंद पर। विश्वानी दुबन जी ने

ये गाना मांगा है पाकुआ से, और उन्होंने ये गाना अपनी बहनों के नाम किया है, इंदिरा और शारदा के, अपनी सहेलियों के नाम नीला और प्रतिभा, फिर शोभा और गीता गजाधर जी के नाम किया है उन्होंने ये गीत।

आफिस जी ने सुनना चाहा है फागुन मूवी का ये गाना आशा भसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, लावण्या के आफिस जी की तरफ से पूरे बाबा साहेब परिवार के नाम।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: और रेडियो मॉरिशस पर आप लोगों के नाम आपकी पसंद कार्यक्रम में इस बार जो गाना सुनेंगे, चलिए हम ऊंचे लोग मूवी का ये गाना सुनने सब मिल के साथ साथ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गाने की फरमाइश धनी जी ने बहुत शौकी से की है। उन्होंने ये गाना मांगा है यश और हेमिश के नाम।

0: सो इस समय दिन के 3 बजने में कुछ ही मिनट बाकी है, बल्कि 1 ही मिनट बाकी है और आप सुन पाएंगे 3 बजे आज के संस्कृत समाचार। उसके बाद हम फिर से लेकर आएंगे हमारा आपकी पसंद कार्यक्रम, इसे जारी रखेंगे हम। आप लोगों ने अगर अपनी फरमाइश कर ली है तो इत्मीनान रखिएगा, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। अभी हमारे पास 4 बजे तक का समय है और आप की फरमाइशों को हम आप तक पहुंचाने में सफल ही रहेंगे। आप जहां भी होंगे वहीं से आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं, पर फिलहाल अभी समाचारों के वक्त आप फ़ोन मत कीजिएगा, हम नहीं ले पाएंगे आपका फ़ोन। बस समाचारों के समाप्त होने पर आपसे हम फिर बातें करेंगे फ़ोन पर। फिलहाल तो थोड़ा समय लगेगा और ऐसे में संक्षिप्त समाचार ज़रूर सुनिएगा, इम्पोर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए ज़रूर आएंगे।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है रजनी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। स्थानीय खबर सबसे पहले, आज दिन के दौरान जॉन माइल ओलिविए रोज और लुई इस्माइल मिगेल लारिबॉब को वीकेंड कोर्ट में मैजिस्ट्रेट ननलोर के सामने पेश किया गया। उन पर हत्या का अस्थायी आरोप लगाया गया है। इंक्वायरी ऑफिसर ने बताया कि पुलिस को उनकी रिहाई पर आपत्ति है क्योंकि सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और उनके भागने का खतरा है। दोनों ही संदिग्ध लोगों को अगले 18 मई तक पुलिस सेल में भेजा गया। उन्हें अगले सोमवार 18 मई को मापू अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि पुराने मंत्री नंद बुद्धा के बेटे जिनो बुद्धा की मौत उसका गला दबाने से हुई थी। पुलिस के चीफ फोरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर सुदेश कुमार गंगादिन की ओर से शव परीक्षण किया गया और ये बात सामने आई। जिनो बुद्धा को कलानी कोरिया में निर्जीव पाया गया। फ्लैक स्थित अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल के बाद अब पोर्ट लुइस जीतू अस्पताल में एक ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचूर और चुनाव क्षेत्र के सांसदों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द अन्य इलाकाई अस्पतालों में भी ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट का इंतजाम किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे अभिभावक और अध्यापक दोनों ही चिंतित। स्कूल सर्टिफिकेट के हालिया नतीजों से ये पता चलता है कि 50% से कम छात्रों को फ्रेंच भाषा में एक डिस्टिंक्शन या एक क्रेडिट प्राप्त हुआ है। 13,000 छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, जिनमें से केवल 3% को ग्रेड 1 हासिल हुआ। इस गिरावट का कारण यही बताया जा रहा

0: है ज्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताना और कम पढ़ाई करना। मॉरिशस के सबसे पहले ई स्पोर्ट क्लब की लॉन्चिंग की गई। मो स्पोर्ट्स और लेंस्टिटी दे मॉरिशस की पहल है। ईएफएम रोजिल में गेमर्स के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मॉरिशस में फ्रांसीसी राजदूत और भूमि एवं आवास मंत्री की मौजूदगी में इस कैंपस की लॉन्चिंग की गई। विदेश समाचारों की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बाद भी नेदरलैंड्स पहुंचे। वहां हेग में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारतीय समुदायों को संबोधित करते हुए कहा कि इतना प्यार और उत्साह देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे भारत में ही हैं, किसी त्यौहार में हों, और उन्होंने भारतीयों के योगदान की भी सराहना की। अलीफ अली कदीम अल कैदी जैदी इराक के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इराक के नए प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए दोनों देशों की साझा तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। इसके साथ ही अली जैदी इराक के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने सिर्फ एक अधूरे कैबिनेट के साथ शपथ ली। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में एक शोक समाचार। अवेन्यू बेल इतवाल पॉम्पलेमुसेज में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री रोहिताश रामजीन जो सुरेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके घर अवेन्यू बेल इतवाल पॉम्पलेमुसेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमनी स्त्रियोली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: À l'occasion lancement NBC Play, prépare-vous pour décoller. NBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir l'ascense des grands gagnants pour un pot d'étiquette Saken pour un Helicopter Joyride exceptionnel dans Région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application NBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio NBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voyer un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé votre compte NBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play avec vous partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
3: MBC Radio 24 hours a day.
4: Central Electricity Board की ओर से ये विज्ञप्ति सुनिए। Central Electricity Board Royal Road रोसेनाल के निवासियों को सूचित करता है कि इवाको के आसपास के इलाकों में कल रविवार 17 मई को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे और इस वजह से वहां की बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे आपके पसंद कार्यक्रम को। आप के नाम करते हैं हम वो गाने जिनकी फरमाइशें आपने की हैं, और अभी हम लेकर आए हैं कल हो ना हो मूवी का गाना, आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को। और ये गाना हमसे गीता जी ने मांगा है। पोंफे से गीता जी ने ये गीत मांगा है अपने पति रोहित जी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए आदित्य, आरव और तनीश के लिए, फिर गुड़िया सी जानवी के लिए, और थैंक यू वेरी मच हमारी पूरी टीम के लिए आपने जो ये गाना किया नाम।

और अब जो गाना पेश करेंगे आपके लिए वो होगा औलाद मूवी से लिया गया। लता मंगेशकर की आवाज़ का ये गीत है, इसकी फरमाइश फिनिक्स से रेहाना जी ने की है।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: चलिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक और विज्ञप्ति पढ़ते हैं आपके लिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेंट जोसेफ और सिनाल के निवासियों को सूचित करता है कि रॉयल रोड के एक भाग में और आसपास के इलाकों में कल रविवार 17 मई को सुबह 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे और इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और इनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। और है ये आपकी पसंद कार्यक्रम, आपकी पसंदों पर गौर कर रहे हैं हम और पेश करते हैं आप लोगों के नाम हम ये अगला गाना जिससे लिया है हमने अलबेली मूवी से और इस गाने की फरमाइश विद्यानंद जी ने की है मेबर्ग से। सोहंती जी के लिए अमित, शीतल, आशु, कृषिका, विशाल, राजीव, स्वीटी, हरवेश के लिए और शिवाला लेन मेबर्ग के अपने दोस्त विष्णु गजाधर जी के लिए भी मांगा है विद्यानंद जी ने ये गाना और साथ ही साथ बहन बिंदु कालीचंद जी के लिए।

और इस बार ग्लेन जॉन की आवाज़, ये है वो लम्हे का गाना। नीता जी ने सेंट जूलिया विलेज से इस गाने की फरमाइश की है पूरे खेतनी परिवार के लिए, अपनी सहेली स्वादिका के लिए जो रहती है बेल्वेडेयर। और यही गीत हम शातो बेनागस की ज्योति जी के नाम करते हैं। ज्योति जी की तरफ से आशनी, रेखा, सुरेखा और पूरे मंदप परिवार के नाम करते हैं

और ये गाना हम पेश कर रहे हैं मूवी श्रद्धांजलि से, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इसकी फरमाइश करने वाले हैं वाकवा के नंदलाल जी।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: वैसे है तो ये अलबेला मूवी का गाना और इस गाने की फरमाइश करने वाली है सुदेवी जी। सुदेवी जी ने वाकवा से इस गाने की फरमाइश की है और उन्होंने ये गाना सुनवाना चाहा है अपनी दीदी ललिता जी को, जो थ्रियोले की रहने वाली है, और अपने पूरे परिवार को। वैसे हमारी आपकी मुलाकात फरमाइशों के सिलसिले में हो रही है और आपके पूरे परिवार के नाम आप अपने चुने हुए गाने कर पाएंगे। वैसे देवी जी ने भी तो यूं ही किया है, आत्माराम भैया के नाम किया है, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेगा की शीला, नंदिता, आहाना, लक्षिका, कृषिका और पूरे राम रतन, राम गुलाम और कुआरू परिवार के नाम किया है अलबेला मूवी का ये गाना। तो चलिए, भोरी सूरत दिल के खोटे, चलिए ये गाना हम सुनते हैं और भगवान दादा को याद करते हैं। चितलकर और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं।

और इस बार बाबा से के हरीश जी की पसंद पर पेश करते हैं प्रेम रोग मूवी का ये गीत, जिसे सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने गाया है। हरीश जी ने इस गाने की फरमा

इश्क की क्या बात कीजिए, तड़प दिल में जरूर होती है इश्क के मामले में। इस बार चलिए जरा हम मौदालबिया की अनीता जी की पसंद का गाना पेश करते हैं, करुणा अमृता और विनीता के लिए। और अनीता जी की तरफ से ये गाना हमारे सभी सुनने वालों के लिए।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और आर अलका याग्निक की आवाज़ें। और चलिए ज़रा बढ़ते हुए अमीना जी की पसंद का गाना सुनते हैं हम। जबक मूवी का ये गाना है हम सुन रहे हैं, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें।

और इस बार आरती मुखर्जी जी की आवाज़ सुनेंगे हम देवी जी की पसंद पर। सो देवी जी, आपको गायिका का नाम नहीं पता, हम बता दें आपको आरती मुखर्जी का गाया हुआ ये गाना है और ये गाना हमने लिया है फिल्म मासूम से, आपकी परफरमाइश पर देवी जी।

अंतिम गाना हम पेश कर रहे हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें से, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं सरिता जी के लिए जो कथोबोन की रहने वाली हैं। इसी गाने के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। 4 बजे आप सुनिएगा आज का कार्यक्रम साहित्य दर्पण, जिसे डॉक्टर जमन जी पेश कर रही हैं। डॉक्टर लक्ष्मी जमन की प्रस्तुति में ये कार्यक्रम ज़रूर सुनिएगा। हमारी आपकी अगली मुलाकात तक हम सुरेखा आपसे आगे जाएंगे। शुभ रात्रि, शुभ शाम, नमस्कार।

0: On the hour, every hour.
1: Radio marches.
2: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए, साहित्य दर्पण।

प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, आज की साहित्य दर्पण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आपने पहचान ही लिया होगा

कि जिन पंक्तियों को अभी आपने सुना वे हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन कवि मैथिल शरण गुप्त जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं, जो उनकी उत्कृष्ट रचना भारत भारती से ली गई हैं। श्रोताओं, लेखन की धरती पर सचमुच कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो अपनी कलम के जोर से आसमां को ऊंचा उठाकर इंसान का सिर ऊंचा कर देते हैं। भारतीय मनीषा को प्रतिफलित करने वाले मैथिली शरण गुप्त की एक झलक आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम, जिसमें हम उनके काव्य जगत से अवगत होंगे। श्रोताओं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं न केवल भारतीय साहित्य के अमूल्य दस्तावेज हैं, वरन वे जीवन जीने के लिए संबल देते हैं। श्रोताओं, मैथिली शरण गुप्त की प्रत्येक रचना किसी न किसी लक्ष्य को लेकर हुई है। उन्होंने स्वयं लिखा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। श्रोताओं, गुप्त जी का दृष्टिकोण सदैव आशावादी रहा है। उनकी यही आशावादिता उनके समग्र साहित्य में छाई हुई है। उनका आशावाद एक ऐसा संगम है जहां भूत, वर्तमान और भविष्य केंद्रीभूत हो गए हैं। श्रोताओं, गुप्त जी के काव्य का मुख्य विषय है मनुष्य। वे नर को नारायण के पद पर अधिष्ठित कर देने में ही अपने काव्य की इति कर्तव्यता मानते हैं। गुप्त जी को मोक्ष की चाह नहीं, वे तो इसी संसार को स्वर्ग बनाने की कामना करते हैं। अपने साकेत में उनके राम के स्पष्ट शब्द है, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। श्रोताओं, गुप्त जी सच्चे अर्थों में राष्ट्र कवि है। उनकी कविता में राष्ट्र प्रेम की भावना अत्यंत उत्कृष्ट रूप में पाई जाती है। उन्होंने भारत की वर्तमान दशा पर आंसू ही नहीं बहाए, वरन स्वर्णिम अतीत का स्मरण कराया है। गुप्त जी की भारत भारती राष्ट्रीय भावों से उत्प्रोत है। उसमें उनका राष्ट्र प्रेम प्रकट होता है, जहाँ वे कहते हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नीरा है और मृतक समान है। श्रोताओं, वर्तमान जीवन से ह्रास और हीन भावना के तिरोभाव के लिए अतीत का ग्रहण होता है। इसके द्वारा समाज को नई चेतना, नया उत्साह प्रदान किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती में अतीत प्रेम का यही रूप प्रकट हुआ है। इस माध्यम से अतीत की परंपरा एवं ऐतिहासिक अभ्युत्थान के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया गया और इस तरह अतीत के पुनरुत्थान ने संपूर्ण भारत देश में एक जातीय अथवा राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात किया। इस तरह इस काव्य के अतीत वर्णन ने पराजित एवं हीन भावना से ग्रस्त जनता में आत्मगौरव की प्रतिष्ठा की और राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। इस तरह भारत भारती में वे कहते हैं,

श्रोताओं, मैथिलीशरण गुप्त भारत की अधोगति में पड़ी जनता को फिर से उबारना चाहते थे। वे समाज का उत्थान चाहते हुए अपने पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन इस प्रकार भारत भारती में करते हैं। उन पूर्वजों के कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, गाते नहीं उनके हमी गुण, गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते निछावर, तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे, वरवीर थे, ध्रुवधीर थे। श्रोताओ, गुप्त जी को पता था कि अतीत में पुरुषार्थ पर बल दिया जाता था। वे चाहते थे

कि जनता अपनी अकर्मण्यता से बाहर आए, परिश्रमी बने, जिस तरह उनके पूर्वज हुआ करते थे। श्रोताओं, मैथिली शरण गुप्त राजनीति में प्रजातंत्र के हिमायती थे। वे अत्यंत निर्भीक एवं स्पष्ट वक्ता थे। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण निम्न पंक्तियों में परिलक्षित होता है। राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। यदि वह प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है। हम दूसरा राजा चुने जो सब तरह सबकी सुने, कारण प्रजा का ही असल में राज्य है। श्रोताओ, गुप्त जी मानवता के उपासक थे। उनके राम भी मानव थे। मानवता में ही देवत्व छिपा है। मानव के प्रति उनका प्रेम अगाध है। मानव जीवन की सार्थकता मानव होने में ही है, उन्होंने कहा भी है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। श्रोताओ, मैथिली शरण गुप्त ने समाज को श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए महान उद्घोष किया। उनका स्वर इस तरह भारत भारती में गूंजता हुआ एक आदर्श संसार को निर्मित करने की कामना करता है। वे कहते हैं, आदर्श जन संसार में इतने कहाँ पर है हुए, सत्कार्य भूषण आर्यगण जितने यहाँ पर है हुए। हैं रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। पूर्वजों की गरिमा का बखान करते हुए भारत भारती में गुप्त जी इस तरह कहते हैं, वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। इस तरह अतीत से उदाहरण लेते हुए वे विभिन्न महापुरुषों का नाम लेते हुए कहते हैं, गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ। मनु याज्ञवल्क्य समान सप्तम विधि विधायक थे यहाँ। वाल्मीकि वेद व्यास से गुणगान गायक थे यहाँ। पृथु पुरु भरत रघु से अलौकिक लोक नायक थे यहाँ। इस तरह वे समाज में लोगों का संबल बढ़ाने के लिए आगे कहते हैं, लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे, सत्य छोड़ेंगे नहीं। अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सुत मरण स्वीकार है, पर वचन की रक्षा रहे। है कौन जो उन पूर्वजों के शील की सीमा कहे। इस तरह मैथिली शरण गुप्त चाहते हैं कि समाज में पुनरुत्थान हो, पुरुषार्थ के लिए लोग काम करें और सर्वस्व अच्छाई का फैलना हो। वे अतीत में पूर्वजों की शीलता, उनकी वीरता, उनकी गंभीरता, उनकी विवेकता, उनकी सरलता आदि का उदाहरण लेते हुए सबको बताते हैं कि वह भीष्म का इंद्रिय दमन उनकी धरा से धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। श्रोताओ, भला भारत के महापुरुषों से कौन अपरिचित है, कौन नहीं जानता कि भारत स्वयं ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को शिक्षा का दान दिया, जिसने पूरे विश्व को नैतिक मूल्यों मानव मूल्यों से अवगत कराया। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सब कुछ भारत की देन है। और मैथिली शरण गुप्त चाहते हैं कि फिर से अतीत से उदाहरण लेकर के जनता में, समाज में एक बार एकता और शालीनता, वीरता और विवेक आदि जैसे गुण एक बार फिर से स्थापित हो। श्रोताओ, मैथिली शरण गुप्त न केवल पुरुषों का गौरव गान करते थे, अपितु अपनी भारत भारती रचना में उन्होंने स्त्रियों का भी गुणगान करते हुए लिखा है, केवल पुरुष ही थे ना वे जिनका जगत को गर्व था। गृह देवियां भी थीं, हमारी देवियां ही सर्व था। अत्रि अनसुया सदृश गार्हस्थ दुर्लभ

स्वर्ग में, दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। निज स्वामियों के कार्य में संभाग जो लेती न वे, अनुराग पूर्वक योग जो उसमें सदा देती न वे, तो फिर कहाती किस तरह अर्धांगिनी सुकुमारियां। तात्पर्य यह, अनुरूप ही थी नरवरों के नारियां।

श्रोताओं, मैथिल शरण गुप्त ने गृहस्थ जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने स्वयं ही अपने को कौटुंबिक कवि बताया है और वे कहते हैं इन पंक्तियों में, रखूंगा उतना ही रस तो होगा जितना मेरा भाग, हो कितना कृत विद्य ग्राम की प्रकृति पाठशाला का छात्र, जाति बड़ी है देश और भी बड़ा विश्व का क्या कहना, जल में थल में और गगन में मैं हूँ कौटुंबिक कवि मात्र। श्रोताओं, मैथिली शरण गुप्त की कविताएं मानवीय करुणा से संपृक्त हैं। समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियाँ, पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि का चित्र प्रस्तुत कर कवि ने भारतीय जनमानस को उसकी कमजोरियों का एहसास कराते हुए परस्पर संगठित होकर समाज देश की उन्नति के लिए ओजस्वी स्वर में सबको प्रेरित करते हुए अपने भारत भारती काव्य में उन्होंने लिखा है, थे जो समोन्नति के सुखद उतुंग श्रृंगों पर चढ़े, त्यों ही विशुद्ध विनीतता में हम सभी से थे बढ़े, भवसिंधु तरने के लिए आत्मावलंबी धीर ज्यों, परमार्थ साधन हेतु थे आतुर परंतु गंभीर त्यों। आगे वे कहते हैं, यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना न थे हम जानते, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। कवि परोपकार की भावना को उजागर करते हुए कहते हैं, हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते, हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा यह जानते, जो इश्क करता है हमारा दूसरों का है वही, है कर्म भिन्न परंतु सब में तत्व समता हो रही। गुप्त जी सबसे प्रीति रखने वाली भावना पर बल देते हुए कहते हैं, बिकते गुलाम न थे यहाँ हम में न ऐसी रीति थी, सेवक जनों पर भी हमारी नित्य रहती प्रीति थी, वह नीति ऐसी थी कि चाहे हम कभी भूखे रहें पर बात क्या जीते हमारे जो कभी वे दुख सहें। श्रोताओं, मैथिली शरण गुप्त ने मानव जाति के उत्कर्ष के लिए भारत भारती में बहुत सारे संदेश दिए हैं, जिनमें कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, अपने लिए भी आज हम क्यों जी न सकते हों यहाँ, पर दूसरों के अर्थ मरना मान्य था ना हमें कहा, यद्यपि जगत में हम स्वयं विख्यात जीवन मुक्त थे, करते तदापि जीवन मृतों को दिव्य जीवन युक्त थे, थी दूसरों की आपदा हरणार्थ अपनी संपदा, कहते नहीं थे किंतु हम करके दिखाते थे सदा, नीचे गिरे को प्रेम से ऊंचा चढ़ाते थे हमें, पीछे रहे को घूम कर आगे बढ़ाते थे हमें, संयम नियम पूर्वक प्रथम बल और विद्या प्राप्त की, होकर गृह फिर लोक की कर्तव्य रीति समाप्त की, हम अंत में भव बंधनों को थे सदा को तोड़ते, आदर्श भावे सृष्टि हित थे मुक्ति पथ में छोड़ते। श्रोताओ, मैथिली शरण गुप्त सबको ईश्वर की ओर झुकने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए तथा निडर बनकर समाज में जीने का आदेश देते हुए कहते हैं, था कौन ईश्वर के सिवा जिसको हमारा सिर झुके, हाँ कौन ऐसा स्थान था जिसमें हमारी गति रुके, सारी धरा तो थी धरा ही सिंधु भी बंधवा दिया, आकाश में भी आत्मबल से सहज ही विचरण किया, हम बाह्य उन्नति पर कभी मरते न थे संसार में, बस मग्न थे अंतर जगत के अमृत पारावार में, जड़ से हमें क्या जबकि हम थे नित्य चेतन से मिले, हैं दीप उनके निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिले।

गुप्त जी हमें यह भी सिखाते हैं कि हम जो भी काम शुरू करें उस काम को पूरा करके ही दम लें। और वे लिखते हैं, आरंभ जो जब कुछ किया हमने उसे पूरा किया, था जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया, कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से, करके हटेंगे हम कि अब मर के हटेंगे काम से। श्रोताओ, आजकल हम जहाँ भी देखते हैं युद्ध का आतंक फैला हुआ है, शांति का तो जैसे नामो निशान ही मिट गया है इस संसार से। गुप्त जी संदेश देते हुए कहते हैं, सर्वत्र अनुपम एकता का इस प्रकार प्रभाव था, थी एक भाषा एक मन था एक सबका भाव था, संपूर्ण भारत वर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी, पूर और ग्राम समूह संस्था थी मुहल्लों की लड़ी, है वायुमंडल में हमारे गीत अब भी गूंजते, निर्झर नदी सागर नगर गिरी वन सभी है कूजते, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। श्रोताओ, हम सब जानते हैं कि भारत वह देश है जो दुनिया का गुरु है, वहीं से शिक्षा विद्या और पांडित्य का विकास हुआ है, तो भला मैथिली शरण गुप्त अपने देश के गौरव का गुणगान करने से क्यों चुकेंगे। विद्या और बुद्धि के बारे में वे लिखते हैं, पांडित्य का इस देश में सब ओर पूर्ण विकास था, बस दुर्गुणों के ग्रहण में ही अज्ञता का वास था, सब लोग तत्व ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ, हाँ व्याध भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ। आगे वे कहते हैं, जिसके प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका।

पड़ा, अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। मानस कमल सबके यहाँ दिन रात रहते थे खिले, मानो सभी जन इसकी ज्योतिष्ठता में थे मिले। गुप्त जी उन सभी विद्याओं का बखान करते हुए कहते हैं, हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या विज्ञ थे, नक्षत्र विद्या शत्र विद्या भूत विद्या भिज्ञ थे, निधि नीति विद्या राशि विद्या पितृ विद्या में बढ़े, संपार्द विद्या देव विद्या दैव विद्या थे पढ़े। वेदों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए गुप्त जी कहते हैं, जिनकी महत्ता का ना कोई पा सका है भेद ही, संसार में प्राचीन सबसे है हमारे वेद ही। प्रभु ने दिया यह ज्ञान हमको सृष्टि के आरंभ में, है मूल चित्र पवित्रता का सभ्यता के स्तंभ में। विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार है, चारों दिशाओं के हमारे वे जय ध्वज चार है। वे ज्ञान गरिमा गार है, वे ज्ञान के भंडार है, वे पुण्य पारावार है, आचार के आधार है। इसका अर्थ यही होता है श्रोताओं कि अगर हम भारत भारती की पंक्तियों का रसा स्वादन करें, इस रचना को ठीक से ध्यान से पढ़ें, तो हमें बहुत सारे संदेश ऐसे मिलेंगे जिनसे हमारा जीवन सुधर सकता है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है।

इस तरह नीति की बात करते हुए कवि कहते हैं, निज नीति विद्या का हमें रहता यहाँ तक गर्व था, हम आप जिस पथ पर चलें सतपथ वही है सर्वथा। सामान्य नीति समेत ऐसे राजनीतिक ग्रंथ है, संसार के हित जो प्रथम पुण्याचरण के पंथ है। श्रोताओ, हर मनुष्य के हृदय में राम तथा रावण वृत्तियां होती हैं। पहले से धर्म या न्याय की बुद्धि उदित होती हैं तो दूसरे स्वार्थ बुद्धि का रूप ले लेती हैं। मनुष्य के हृदय से स्वार्थ बुद्धि हटाकर वहाँ न्याय बुद्धि का राज्य स्थापित करना ही अंतःकरण का राम राज्य है। जिस राज्य को समाज की न्याय बुद्धि का आधार है, जहाँ के कानून समाज के न्याय बुद्धि के अनुसार बने हैं, जिस समाज के सब व्यवहार मनुष्य के अंतःकरण के न्याय बुद्धि को आसानी से मान्य हो जाते हैं, और जहाँ की राज्य सत्ता प्रजा के संगठित आत्मबल के सामने झुक जाती हैं, वह राज्य रामराज्य कहलाता है। रामराज्य का ऐसा ही चित्र मैथिल शरण गुप्त जी के साकेत रचना में उपलब्ध है। उनके साकेत का रामराज्य न्याय का राज्य है, धर्म का राज्य है। उन्होंने न्याय एवं धर्म से रहित राज्य के अंत की कामना की है और उसके लिए क्रांति ही उचित मानी है। साकेत में भरत के शब्दों में उन्होंने स्वार्थ ईर्ष्या से रहित धर्म एवं न्यायपूर्ण रामराज्य की अभिलाषा व्यक्त की है, जो समस्त विद्रोहों का अंत कर प्रेम एवं सद्भाव के सिद्धांत पर स्थापित होता है। उनके आदर्श रामराज्य में सभी व्यक्ति स्वयं ही प्रेम एवं सद्भाव पूर्वक रहते हैं, सभी व्यक्ति समान रूप से शिक्षित स्वस्थ सुष्ट उद्योगी एवं समृद्ध है, वे भोगों में लिप्त नहीं है। यद्यपि उन्हें सभी समृद्धियां प्राप्त हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। गुप्त जी की इन पंक्तियों में यह बात साफ दृष्टिगोचर होती है। एक तरु के विविध सुमनों से खिले, पौर जन रहते परस्पर है मिले, स्वस्थ शिक्षित शिष्ट उद्योगी सभी,

बाह्य भोगी आंतरिक योगी सभी। श्रोताओं, उनके राज्य में सभी व्यक्ति समान हैं, जाति वर्ण आदि के किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि नीच व्यक्ति में भी आत्मसम्मान के भाव होते हैं। अतएव उनके राज्य में सभी व्यक्तियों का समान स्थान है। गुप्त जी लिखते हैं, अहा, आर्य के विभिन्न राज्य में सुखपूर्वक सब जीते हैं। सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। कुह निषाद सबरों तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में। वे कहते हैं कि सभी मनुष्य स्वयं ही नीतियों रीतियों का पालन करते हैं, राजा और प्रजा का संबंध प्रीतिपूर्ण हो। और वे लिखते हैं, नीतियों के साथ रहती रीतियां, पूर्ण है राजा प्रजा की प्रीतियां। श्रोताओ, साकेत का समस्त साम्राज्य प्रजा की ही धरोहर है। राजा केवल प्रजा के द्वारा निश्चित किया हुआ सेवक मात्र है, उसे कोई अधिकार नहीं है। राज्य को किसी को लेने देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य प्रजा का है। शासक वर्ग भी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता, उसे भी नियम संयम का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि शासक वर्ग का समाज पर प्रभाव पड़ता है। जैसा शासक होता है वैसे ही उसकी प्रजा भी होती है। गुप्त जी बताते हैं, साकेत का राजकुल प्रजा के सम्मुख द्रव्य दृष्टांत के समान सदैव समुपस्थित रहता है। मर्यादा एवं सीमा में रहना तथा नियम संयम का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि मर्यादाहीन शासक एवं समाज विनाश के गर्त में गिरते हैं। वे यहाँ दिखाते हैं कि राम ने मर्यादा की रक्षा हेतु अवतार लिया है। जितने प्रवाह है बहे अवश्य बहे वे, निज मर्यादा में किंतु सदैव रहें वे। इस तरह मैथिली शरण गुप्त संसार को आगाह करते हुए बताते हैं अपने साकेत में कि साकेत का राज्य अधिकाधिक विकेंद्रित है, मनुष्यों को समस्त अधिकार प्राप्त है। शासन का एकमात्र उत्तरदायित्व किंतु केवल प्रजा की रक्षा करना है। वे कहते हैं, निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबके सुविधा का भार किंतु शासन को। सत्ता का दुरुपयोग साकेत के राज्य में असंभव है। जब शत्रुघ्न देखते हैं कि राज्य स्वार्थ का केंद्र बन गया है, तो वे उसके विनाश की कामना व्यक्त करने लगते हैं। शत्रुघ्न के माध्यम से गुप्त जी बताते हैं कि शत्रुघ्न का विचार है कि यदि शासक राज्य को भोग का साधन बना ले तो वह प्रजा के लिए रोग बन जाता है। वे स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि शासक को स्वेच्छाचारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी शासन है, यह उसे नहीं भूलना चाहिए। और मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, शासन सब पर है इसे न कोई भूले, शासक पर भी वह भी न भूल कर उले। इसलिए गुप्त जी का मानना है कि राजा भी प्रजा के अधीन है, और यहाँ भरत स्पष्टतः प्रजा द्वारा राजा के अधीन चुनाव का समर्थन करते हैं। साकेत की सत्ता प्रजा के संगठित बल के सम्मुख झुक जाती है, लोकमत के आधार पर राम के वन जाने का विरोध करती है। और कवि लिखते हैं, राजा हमने राम तुम्हें को है चुना, करो ना तुम यूं हाय लोकमत अनसुना। गुप्त जी हमें संदेश देते हैं कि किस तरह से देश की उन्नति होती है, कैसे मनुष्य जो है समाज और जनता उत्कर्ष की ओर बढ़ती है, तभी एक आदर्श राज्य की स्थापना होती है। गुप्त जी का कहना है कि समाज को अहिंसा पर आधारित होना चाहिए और सबका सहयोग होना चाहिए, जहाँ पर सहयोग ही सम्मानित एवं शांतिपूर्ण जीवन की शर्त हो। ऐसे अहिंसक समाज का प्रत्येक ग्राम स्वावलंबी और इस योग्य हो कि वह संपूर्ण संसार से अपनी रक्षा स्वयं कर ले। इस तरह
अपने ग्रंथ साकेत में

उनके ग्रामों पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं है। सभी ग्राम स्वशासित तथा स्वावलंबी हैं और प्रत्येक गांव की सत्ता स्वतंत्र देश के समान है, जिसका चित्रण गुप्त जी इस प्रकार कर रहे हैं। अनवृद्धि से तृप्त तथा बहुकला सिद्धि से सहज प्रसन्न, अपना ग्राम ग्राम है, मानो एक स्वतंत्र देश संपन्न। श्रोताओं, मैथिल शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में सत्य और अहिंसा पर दृढ़ निष्ठा होने के कारण लक्ष्य प्राप्ति अवश्य हो सकती है, ऐसा उनका मानना है। उनका कहना है कि हमें पवित्रता पर जोर देना चाहिए, हमारे विचार उच्च होने चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, इस तरह हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने साध्य प्राप्ति के लिए पवित्रतम, सत्याग्रह, असहयोग, सविनय आदि पर जोर दिया है। उन्होंने समस्त अन्याय, उत्पीड़न तथा शोषण के प्रति आवाज़ उठाई, उसका विरोध किया है और उनका मानना है कि सत्य पर चलना मनुष्य का अधिकार है, एक पवित्र कर्तव्य भी है। गुप्त जी के काव्य सत्य अहिंसा संबंधी विचारों का गहरा प्रभाव छोड़ता है। वे स्वीकार करते हैं कि सत्य ही सब धर्मों का सार है, सत्य पर ही समस्त संसार स्थिर है, अतः सत्य की रक्षा के लिए राज्य, प्राण एवं परिवार सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। और वे लिखते हैं सत्य की रक्षा के लिए, वे दिखाते हैं कि साकेत में दशरथ राज्य, प्राण एवं परिवार सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। और कवि लिखते हैं सत्य से ही स्थिर है संसार, सत्य ही सब धर्मों का सार, राज्य ही नहीं प्राण परिवार, सत्य पर सकता हूँ सब वार। गुप्त जी का मानना है कि किसी के प्रति कुविचार लाना, ईर्ष्या करना भी हिंसा है, अहिंसा में ही मानव मात्र का कल्याण है। अहिंसा उनके लिए एक सक्रिय, गतिशील एवं अमोघ शक्ति है, जिसका पालन कभी व्यर्थ नहीं होता। और अगर आज सारी दुनिया मैथिल शरण गुप्त के इस संदेश से अवगत होकर उस पर विचार करें, तो शायद दुनिया से युद्ध का नाम हट जाए, लड़ाई झगड़े मिट जाए।

श्रोताओं, मैथिली शरण गुप्त की कविताओं को सुनकर क्या अभी भी ऐसा लगता है कि अगर हम हिंदी पढ़ेंगे तो पिछड़े वाले लोग कहलाएंगे या फिर समाज में हमारा कोई मोल नहीं होगा? इसलिए बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को हिंदी से दूर रखते हैं, इस भाषा से उन्हें वंचित रखते हैं। भला ऐसा क्यों? हमें यह संकोच क्यों होता है कि हिंदी को गले लगाएंगे तो हमें हीन भावना से देखा जाएगा? हम ये ना भूलें कि हमारे देश में ही हिंदी ही वह भाषा है जिसमें एक हस्ताक्षर देने से हमें सत्ता पर अधिकार मिला था। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज सारी दुनिया में यही बात मान्य है कि जिसको भाषा पर अधिकार है उस वही सबसे आगे है। भाषा पर अधिकार आजकल बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रोताओ, क्या यह लज्जाजनक परिस्थिति नहीं है कि हिंदी अपने ही लोगों से अवहेलना एवं तिरस्कार की पात्रा बन बैठी है? श्रोताओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम अपनी भाषा को सीखें, अपने घरों में हिंदी को स्थान दें और उसकी मीठी सुगंध को जीवन में फैलने दें। श्रोताओ, आइए मिलकर चंद पंक्तियां उस महान कवि को समर्पित करते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले चलें। है समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, पर कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास रचा करते हैं। नमन उस कवि को श्रम से जिनके हुए हिंदी जैसे चंदन, ऋण न चुका पाएंगे उनका चाहे जितना भी कर ले जतन। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें।

0: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।
1: ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साहित्य दर्पण सार्थक हो जाए आपका जीवन। डॉक्टर लक्ष्मी जमन जी द्वारा आपने सुना प्रोग्राम साहित्य दर्पण, शाम के 5 बजने ही वाले हैं।
2: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट।
1: जी हाँ, घड़ी मिलाते चलिए, शाम के 5 बजे हैं।
3: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी
1: नमस्कार देवी और सज्जनों, प्यार से स्वागत करते हैं आपका प्यारे श्रोताओं। आपका सेवक का रोशन की अब है बारी, लाए हैं आपके लिए प्रोग्राम खेल खिलाड़ी। 6 बजे तक साथ अवश्य दीजिएगा। खेल खिलाड़ी का पहला भाग सिनेमा दिल से, जहां पर होता है एक विषय, चलाते हैं गाने और पूछते हैं आपसे प्रश्न प्रश्न प्रश्न। चलिए विषय सुनिए तो जरा। गीत वही के वही पर फिल्में कुछ नई। गीत वही के वही पर फिल्में कुछ नई। कितनी ऐसी नई फिल्में हैं जिनके कुछ गाने पुरानी फिल्मों से लिए गए हैं, आप तो ये जानते ही होंगे। वही राग वही बोल, कभी कभी वही गायक कलाकार। तो चलिए आज हम ऐसे ही गाने चलाएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए पहला गाना अभी चलेगा आपके लिए। 2024 में यानी 2024 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो। इसमें दो ऐसे गाने हैं जो 90s के पुराने गाने हैं। एक तो है फिल्म सड़क का गाना जो अभी अभी चलेगा, तुम्हें अपना बनाने की कसम। जी हाँ, आप लोगों को बनाने की कसम अपना हमने खाई तो है। और ये जो दूसरा गाना है, ये फिल्म मृत्युदाता से लिया गया है, वो कौन सा गाना होगा? ये जो फिल्म है विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो, इसमें दो ऐसे 90s के गाने हैं। एक तो अभी चलेगा सड़क वाला गाना, तो दूसरा गाना मृत्युदाता से लिया गया है। वो गाना इस फिल्म में था यानी 2024 की फिल्म में। तो वो कौन सा गाना है, चलिए आप हमें बताइए। 402-8085 पर। और सड़क का बड़ी रोमांटिक गाना केवल आप लोगों के लिए, रेडियो मॉरिशस आपके लिए, रेडियो मॉरिशस आपके साथ।
4: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

प्यारे प्यारे साथियों, सड़क का रोमांटिक सा गाना, ये गाना फिल्म विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो में ये गाना था, और एक और गाना था उस फिल्म में। और एक हिंट आपको दे दें कि वो गाना जो आप हमें बताने वाले हैं जवाब के रूप में, उसमें अमिताभ बच्चन जी दलेर मेहंदी के साथ गाते हैं। अब तो आसान हो गया आप लोगों के लिए। 402-808-5।

0: जी हाँ, तुम्हें अपना बनाने की कसम हमने खाई है। और ये जो गाना सड़क फिल्म से लिया गया है, ये भी तो इंस्पायर हुआ है एक और गाने से, और वो गजल थी पाकिस्तानी गायिका मुसर्रत नज़ीर की गजल, चले तो कट ही जाएगा सफर। आहिस्ता आहिस्ता आप इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं और सही जवाब भी दे रहे हैं, और हमने सवाल किया था कि इस गाने के अलावा उस फिल्म में यानी विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म में एक और 90s का गाना है, और हमने जब आपको दूसरा क्लू दिया, दलेर मेहंदी जी और अमिताभ बच्चन जी साथ साथ गाते हैं, तब आपको पता चल गया कि ये गाना है मस्ती भरी रात है ना ना ना नारे वाला गाना। और सही जवाब दिया शोभा जी फ्रॉम वाकवा और कटरबोन से सरिता जी, ये दो हमारे पहले सितारे हैं आज के। चलिए अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और आजकल एक गाना सभी के होठों पर है, दो दीवाने शहर में, एक फिल्म भी इसी साल रिलीज हुई है दो दीवाने शहर में। ये जो गाना है इस फिल्म से लिया गया, ये फिल्म का नाम उन्होंने ले लिया है, शीर्षक बन गया है इस फिल्म का नाम जो इस साल रिलीज हुई थी यानी 2026 में। चलिए दो दीवाने शहर में, जहां पर यही गाना है वही बोल वही गायक कलाकार, आइए सुनिए घरोंदा का वो गाना। केवल आपको बड़े प्यार से बताना होगा कि जो दोनों गायक कलाकार हैं वे कौन है, गायिका और गायक दोनों के नाम आपको बताने पड़ेंगे। जो न्यू वर्जन है ये हम आपके लिए नहीं चलाएंगे, हम घरोंदा वाला गाना आपके लिए चलाएंगे ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो गायक कलाकारों को पहचाने के लिए।
1: 408-0858-819 kHz, this is Radio Mauritius.
2: दीवाना,
3: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।

जब शहर में आ जाए दो दीवाने, जब शहर में आ जाए दो दीवाने, तो बन जाए हैं वो, बन जाते हैं प्यार के कई अफसाने। बहुत ही सुंदर सा गाना फिल्म घरोंदा से लिया गया, और हमने सवाल किया था कि ये जो गाना है नई फिल्म दो दीवाने शहर में, इसमें भी ये गाना है, और दोनों कलाकारों ने उनकी आवाज़ मिलाई गई इस गाने में, वही गाना है, केवल रिमेजिन किया गया, म्यूज़िक को थोड़ा और इनोवेट किया गया। और जो दो गायक कलाकार है वो कौन, एक तो है भूपेंद्र सिंह जी और गायिका है रूना लैला जी। बिल्कुल रूना लैला जी, जो ये गाना उन्होंने गाया था आपको याद है ना, ओ मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी। वही गायिका, उन्होंने ही ये गाना गाया भूपेंद्र सिंह जी के साथ। और सही जवाब दिया माला जी फ्रॉम वाक्वा, रेहाना जी फ्रॉम नोटरडेम, इंदिरा जी फ्रॉम मोदालबिया, मोदालबिया से ही अनीता जी, और विजय भाई फ्रॉम क्लावेट, शोभा जी फ्रॉम वाक्वा और सरिता जी फ्रॉम कटरभोन। चलिए अगला गाना आपके लिए हम चलाने तो वाले हैं, एक फिल्म रिलीज हुई थी कल, हाँ जी कल, यानी 15 मई को, बिल्कुल यस्टरडे, कल एक फिल्म रिलीज हुई थी, पति पत्नी और वो दो। पति पत्नी और वो नहीं, बल्कि पति पत्नी और वो दो, जिसमें आयुष्मान खुराना है, साथ ही साथ सारा अली खान, वमिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह, एक हीरो तीन तीन हीरोइंस। इसमें दो पुराने गाने हैं, एक तो दिल वाला गाना है, आज न छोड़ेंगे तुम्हें दम दमा दम, आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म दिल, और दूसरा गाना है काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लालनी। ये जो दो गाने हैं 90s के गाने हैं, और इस फिल्म में भी ये गाने हैं। अब यही गाना तो चलेगा, पर ये

0: 90s वाला गाना है अनुराधा पोडवाल जी और मंगल सिंह की आवाजों में। चलिए बड़ी आसानी से आप हमें जवाब दें, फिल्म का नाम बहुत ही आसान है। गाना जो चलने वाला है 4028085 4028085 पर जल्दी जल्दी बताइए कि फिल्म का नाम क्या हो सकता है दोस्त।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

0: अनुराग पोडवाल जी और मंगल सिंह की आवाजों में काली तेरी छोटी है परांदा तेरा लालनी, ये किस फिल्म का गाना है? ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई थी। सुमित सहगल, रूपा गंगुली और जावेद खान की फिल्म थी। और रूपा गंगुली तो आपको जानते ही, उन्हें महाभारत सीरियल में उन्होंने द्रौपदी का रोल निभाया था। डायनामिक कलाकार। और फिल्म का नाम है बाहर आने तक। बिल्कुल। और ये जो गाना आपने सुना काली तेरी छोटी है, कल रिलीज हुई फिल्म पति पत्नी और वो दो में ये गाना इस फिल्म में भी नजर आता है। लेकिन ये जो गाना है एक ओल्ड पंजाबी फोक सॉन्ग से लिया गया था, काली तेरी गुट। सही जवाब किन लोगों ने दिया आज के सितारे, ये भी हैं अली साहब फ्रॉम लिस्कालिए, विजय भाई फ्रॉम क्लाबेट सेवास्तपुर, वाक्वा से शोभा जी, वाक्वा से नीला जी, अनीता जी फ्रॉम मदाबे और इंदिरा जी फ्रॉम मदाबे। चलिए अगला गाना जरा गौर से सुने और आपको बताना पड़ेगा। ये जो गाना है बॉर्डर टू में नजर आया है, ये गाना बॉर्डर टू जो इस साल रिलीज हुई थी, लेकिन ये जो गाना है पहली बार के लिए बॉर्डर में नजर आया था। 1997 में बॉर्डर फिल्म से लिया गया ये गाना था। और आपको बताना पड़ेगा कि जो पहली फिल्म बॉर्डर थी 1997 वाला, इसमें चार हीरोज थे, चार अभिनेता। उन लोगों के नाम आपको बताने पड़ेंगे 4028085 पर प्लीज जवाब दें।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: तो चलूं नहीं, अभी हम जाने वाले नहीं, अभी तो फर्स्ट सेगमेंट समाप्त होने वाला है, यानी सिनेमा दिल से। जो आखिरी प्रश्न था, ये जो गाना भी अपने हमने चलाया फिल्म बॉर्डर से लिया गया, ये गाना फिल्म बॉर्डर 2 में भी ये गाना है, रिक्रिएटेड किया गया। आपको हमें बताना था कि फर्स्ट फिल्म बॉर्डर में जो रिलीज हुई थी 1997 में, उसमें 4 नायक थे, उनका नाम, जी हाँ बिल्कुल, उसमें थे सनी डिप्पा जी यानी सनी देओल, 2.5 किलो का हाथ है उनका और उसमें थे सुनील शेट्टी, द आर्नोल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, और उसमें था उस समय का लव बॉय यानी जैकी श्रॉफ, और अक्षय खन्ना उस समय का चॉकलेट बॉय, और सही जवाब दिया सेपिया से रेजा भाई, विजय भाई फ्रॉम क्रावित और इंदिरा जी फ्रॉम मोदाबेर। चलिए दूसरा सेगमेंट का समय आ गया है, शाम के बज गए हैं 5:30 और आपके लिए ये कार्यक्रम
1: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी खिलाड़ी
0: प्यारे प्यारे खेलकूद प्रेमियों, म्यूजिक लवर्स, देवयोर सज्जनों, प्यारे प्यारे श्रोताओं, खेल खिलाड़ी का जो दूसरा सेगमेंट है मेरा सवाल तेरा कमाल, जहां पर स्पोर्ट्स, फुटबॉल और जनरल नॉलेज पर प्रश्न किए जाते हैं आप लोगों से, ताकि आप लोगों का दिमागी कसरत हो जाए इस शनिवार की शाम को, ताकि आप हमेशा रहें फिट एंड फाइन और आपका मेमोरी करे शाइन। तो चलिए हम आरंभ करते हैं बेशक फुटबॉल के साथ, और वो भी इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहां पर कल का जो अर्ली मैच था अस्टन विला और लिवरपूल के बीच, उसमें अस्टन विला की जीत हुई 4-2 के स्कोर से, लिवरपूल को हरा दिया अस्टन विला ने। अस्टन विला का जो की जो जगह है वो मजबूत हो गई है चैंपियंस लीग में क्वालिफाई होने के लिए, जबकि लिवरपूल को चाहिए अब अंतिम मैच जीतने के लिए, अगर ड्रॉ भी हो गया तो हो सकता है कि वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई न हो, क्योंकि इस बार जो इंग्लिश टीम्स के कोएफिशिएंट हैं ज़्यादा है, क्योंकि जो इंग्लिश टीम्स हैं हमेशा चैंपियंस लीग में, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत संख्या में वो उपस्थित हैं, तो इसलिए UEFA ने ये निर्णय लिया कि 4 टीम्स के बदले 5 टीम्स इंग्लैंड से होंगे, और इंग्लैंड से होंगे तो 5 टीम जो क्वालिफाई हो गए हैं वो तो है मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड, अस्टन विला भी लगभग, लेकिन लिवरपूल की एक और चांस है अगर आखिरी मैच में उनकी जीत हो तो। आज कोई मैच नहीं है क्योंकि आज है FA कप का फाइनल भी नहीं बल्कि महाफाइनल बिटवीन चेल्सी एंड मैनचेस्टर सिटी, द बैटल ऑफ द ब्लूज। देखते हैं कि आज किसकी जीत होगी, लेकिन बड़ा ही टकरा मैच होने वाला है, इसलिए आज कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग का मैच निर्धारित नहीं है, बल्कि कल ये सब मैचेस निर्धारित है। कल मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, अर्ली किक ऑफ 3:30,

0: और वहीं पर रात्रि को ब्रेंटफोर्ड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, लीड्स यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन, वुल्व्स वर्सेस फुलहम, एवर्टन वर्सेस सन्डरलैंड, न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम और आर्सेनल वर्सेस बर्नली, ये सोमवार की रात्रि को और मंगलवार की रात्रि को बॉर्नमुथ स्वागत करेगी मैनचेस्टर सिटी का, और चेल्सी वर्सेस टोटेनहम द लंदन डर्बी। इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल में देखेंगे तो आर्सेनल पहले स्थान पर 79 पॉइंट्स के साथ, दूसरे स्थान पर मैनचेस्टर सिटी विद 77 पॉइंट्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड तीसरे स्थान पर 65 पॉइंट्स, चौथे स्थान पर एस्टन विला विद 62 पॉइंट्स और पांचवें स्थान पर लिवरपूल 59 पॉइंट्स, छठे स्थान पर 55 पॉइंट्स लिए बोर्नमुथ। चार टीम्स की अभी जीत हो गई है और वो क्वालिफाई हो गए हैं चैंपियंस लीग के लिए, आर्सेनल, सिटी, यूनाइटेड और एस्टन विला। और टॉप स्कोरर में देखेंगे तो अर्लिंग हैलैंड 26 गोल के साथ पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर 22 गोल्स लिए इगोर थियागो जो ब्रेंटफोर्ड का खिलाड़ी है, और तीसरे स्थान पर सिटी का एक और खिलाड़ी अंतुआन सेमेन्यो जो एक्स बोर्नमुथ खिलाड़ी है विद 16 गोल्स। तो चलिए आज का जो महाफाइनल है बिटवीन चेल्सी एंड मैनचेस्टर सिटी, तो एफए कप पर ही आधारित एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, जो जिस टीम ने सबसे ज्यादा एफए कप जीता है वो टीम, ये प्रश्न नहीं है, वो टीम है आर्सेनल विद 14 एफए कप्स और 13 एफए कप्स लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड। आपको हमें बताना पड़ेगा कि मैनचेस्टर सिटी ने अभी तक कितने एफए कप्स जीते हैं। हाउ मेनी एफए कप्स हैज मैनचेस्टर सिटी वन टिल नाउ? 4-0-2, 8-0-8-5
1: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxist.

0: कल क्या होने वाला है, इसका आपको क्यों लगता है डर? इतना तो कठिन नहीं है जीवन का सफर। आप लोगों को अपने आप पर विश्वास रखना होगा और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। यही तो जिंदगी का दूसरा नाम है। हमने सवाल किया था कि मैनचेस्टर सिटी ने कितनी बार एफए कप जीता है, और सही जवाब है 7 times 7 बार। बिल्कुल। और अगर 7 को आप दुगुना कर दें तो वो क्या हो जाता है, 14 times ये आर्सेनल ने जीता है इतना। और सही जवाब किन लोगों ने दिया, इतने सारे लोग, नीला जी फ्रॉम बाकवा, रेजा भाई अगेन फ्रॉम सैपिया, दिला जी फ्रॉम मौलाशो, विजय भाई फ्रॉम क्लावेत, लिस्कालिये से अली जनाब, ऋषि भाई फ्रॉम वाशेगी, शोभा जी फ्रॉम बाकवा, इंदिरा जी फ्रॉम मौदालबिया, हरीश भाई फ्रॉम बोबासैन। चलिए, एक महीना रह गया है, लेकिन एक महीने से कम रह गया है जिस प्लैनेट का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट यानी वर्ल्ड कप 2026 पराक्रम और परिश्रम का मिक्स। तो चलिए वर्ल्ड कप पर ही आपके लिए एक सवाल हो जाए। हमने आपसे ये वादा किया था कि हर सप्ताह हम वर्ल्ड कप पर एक सवाल अवश्य लाएंगे और आप लोगों की जानकारी हम अवश्य बढ़ाएंगे। तो वर्ल्ड कप हम बढ़ते हैं रशिया की ओर। 2018 में रशिया में आयोजित किया गया था वर्ल्ड कप, आपको याद है ना? ये वर्ल्ड कप फ्रांस के लिए बड़ा ही लकी साबित हुआ, और वैसे तो फ्रांस चैंपियंस बनी, और वो भी अपने बलबूते पे, और हर एक खिलाड़ी ने क्या खूब योगदान दिया, और फाइनल में फ्रांस की जीत हुई 4-2 के स्कोर से। जैसे कि कल एस्टन विला ने लिवरपूल को 4-2 की स्कोर से हराया, वैसे ही 2018 में वर्ल्ड कप विजेता फ्रांस ने एक टीम को 4-2 के स्कोर से हराया था। अब बताइए बड़े आराम से कि फ्रांस ने किस बेहतरीन टीम को हराया था। 4-0-2, 8-0, 8-5 पर आप जवाब दीजिए प्लीज। ए भाई, आप लोगों ने नंबर ठीक से सुना होगा ना?
1: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius. Radio.
0: पता नहीं आज की रात क्या होने वाला है, किसकी जीत होगी, चेल्सी की या मैनचेस्टर सिटी की? एनी गेस?

क्या होगा ये तो क्या पता, वक्त ही बताएगा। चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के बीच में घमासान युद्ध, महाफाइनल क्या होने वाला है आप देखिएगा जरूर। लेकिन उस रात यानी 2018 की रात जुलाई महीने में 2018 में रशिया में जो होने वाला था वो हो गया। फ्रांस की जीत हो गई 4-2 के स्कोर से, और जो टीम थी वो थी क्रोएशिया। या सरप्राइज पैक, क्रोएशिया की टीम फाइनल में। एक तरफ फ्रांस में एम्बापे और ग्रिज़मान का कहर, तो दूसरी तरफ क्रोएशिया में मॉड्रिच और मांजुचिच का असर। व्हाट अ फाइनल! बेस्ट प्लेयर 2018 लुका मॉड्रिच को दिया गया था। क्या मिडफील्ड प्लेयर था, बहुत बढ़िया। क्रोएशिया के हारने के बाद भी क्रोएशिया का खिलाड़ी मॉड्रिच को बालों दो भी मिला और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी, और वो रियल मैड्रिड का खिलाड़ी था उस समय। सही जवाब रेजा भाई फ्रॉम सैंपिये, बोबासें से हरीश भाई, इंदिरा जी फ्रॉम मोदाबिया, संध्या जी फ्रॉम पोएतोपिमो, दिला जी फ्रॉम मोलाशो, विजय भाई फ्रॉम क्लावेत, दीपा जी फ्रॉम कोंतोरेल और प्रवेश भाई फ्रॉम क्लावेत। चलिए एक और प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार है। और वर्ल्ड नर्सिंग डे जो 12 मई को मनाया गया था, हमारे जो नर्सेज हैं, जो इन्फर्मियरी ऑक्सिलरीज हैं, उनको हम नतमस्तक करते हैं, वो जो काम करते हैं, जो कार्य करते हैं सराहनीय है। तो चलिए आप हमें ये बताइए कि ये जो कहावत है, ये जो कोट है, किसने कहा था? Nursing is one of the fine arts. I had almost said the finest of fine arts. किसने ये कहा था कि जो नर्सिंग है ये ललित कलाओं में से एक है, और ललित कलाओं में हो सकता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। ये किसने कहा था? 4028085 402 8085 पर जल्दी जल्दी जवाब दें।

0: वर्ल्ड नर्सिंग डे के उपलक्ष्य में ये सवाल था कि नर्सिंग इज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स. आई हैड ऑट मोर सेड द फाइनेस्ट ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग है. ये किसने कहा था? बेशक फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म दिवस 12 मई को है और इसी दिन हम सभी विश्व भर में मनाते हैं वर्ल्ड नर्सिंग डे. सही जवाब दिया हरीश भाई फ्रॉम बुबासे, बुबासे से ही वसंती जी, उमा जी फ्रॉम रोजबेल, दीला जी फ्रॉम मौलाशो, शोभा जी फ्रॉम बाकवा और बाकवा से नीला जी. एक अंतिम प्रश्न है, मैथमेटिक्स पर जरा गौर फरमाएं. हम आपको चार फिगर्स देते हैं, चार संख्या, चार नंबर्स. आपको या तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, देखिए आप क्या करेंगे, लेकिन आपको जो टोटल मिलना चाहिए वो है 126. और नोट कीजिए 6 7 25 75. जी हाँ, फिर से नोट कीजिए 6 7 25 75. ये चार नंबर्स हैं, इसे आप ऑपरेशंस करें या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन, आपका टोटल होना चाहिए 126. 4 0 2 8 0 8 5.
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस.
1: रेडियो मॉरिशस.
2: Radio Mauritius.

जी हाँ, बहुत कम समय मैंने दिया आपको इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, समय के अभाव के कारण और समय में आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा। लेकिन फिर भी इतने कम समय में हरीश भाई जी फ्रॉम बोबासे और इंदिरा जी फ्रॉम मोदाबिया, इन दोनों ने तो कमाल कर दिया सही जवाब देकर, यानी 6, 7, 25 और 75 चार नंबर्स हैं। इन्हें आपको ऑपरेशंस करना था ताकि आप लोगों को 126 प्राप्त हो, और सही तरीका है 6 times 7 इट्स 42, 75 divided by 25 इट्स 3, 42 times 3 126 क्या बात है, बहुत बढ़िया। 75 divided by 25 दैट मेक्स 3, 6 times 7 42, और 42 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ तो हो जाता है 126। और हरीश भाई और इंदिरा बहन आपको बधाई हो। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम। और व्हाट्सएप के द्वारा सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम है, लेकिन इसे और एक घंटे के लिए चलाना चाहिए था ताकि हमें और मौका मिले दिमागी कसरत करने के लिए। कितनी फ़ोन कॉल्स हम नहीं ले पाए, क्या करें, केवल एक ही घंटा है और ये जो सेगमेंट है केवल 30 मिनट का, क्योंकि पहले 30 मिनट तो सिनेमा दिल से और ये रहता है जनरल नॉलेज पर, केवल 30 मिनट क्या करें। लेकिन आप लोगों का जो सुझाव है हम सर आँखों पर रखते हैं, धन्यवाद। और आपको कहेंगे हमेशा आप लोग अपने आप को फिट रखें, फाइन रखें, और आप लोग सदैव अपने आप को बिल्कुल किसी और से कम न समझें। आप लोगों को इंसान का शरीर मिला है तो जी भर के जिएं। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि, और कहेंगे व्यायाम कीजिएगा अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए ताकि जिंदगी में आप करें शाइन।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के 6 बजे हैं। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें। गंगा तालाब में पर्यटकों से जुड़ी घटना के बाद पूजा स्थल की सम्मान और जागरूकता पर बहस तेज हो गई है। मतदाता पंजीकरण का दूसरा चरण शुरू, देश भर में 40 केंद्र खुले, सूची जांच और संशोधन की सुविधा उपलब्ध है। जिनू बुद्धा मामले में गला घोंटने से मौत की पुष्टि, दो आरोपी गिरफ्तार, 18 मई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेदरलैंड्स पहुंचे, यूरोप के साथ संबंध मजबूत करने की यात्रा और आम्स्टरडम में उनका स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। गंगा तालाब मॉरिशस में हिंदू समुदाय के लिए आस्था का एक प्रमुख स्थल बना हुआ है। हर दिन श्रद्धालु और पर्यटक भी यहाँ प्रार्थना करने या मॉरिशस की इस प्रतीकात्मक धरोहर को देखने पहुँचते हैं। लेकिन हाल ही में दो विदेशी पर्यटकों से जुड़ी एक घटना ने पूजा स्थलों के सम्मान और इस पवित्र स्थान में अपेक्षित व्यवहार और परंपराओं के प्रति तथा इस स्थल का दौरा करने वाले लोगों को बेहतर जागरूक करने की आवश्यकता पर फिर से चर्चा छेड़ दी है। मतदाताओं के पंजीकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। देश भर में लगभग 40 केंद्र खोले गए हैं ताकि मतदाता अपना पंजीकरण कर सके, अस्थायी मतदाता सूची में अपना नाम जांच सके और जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन कर सके। जानकारी की जांच के लिए दो अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई है। ज्यादा जानकारी गीता सुनारान के साथ।
2: 2026 के लिए चुनाव आयोग की अस्थायी मतदाता सूची में 1 मिलियन से थोड़े ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 49,061 नए मतदाता शामिल हैं। ये आंकड़े जनवरी में घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए थे। उस समय एजेंटों ने गणराज्य में 3,08,000 से ज्यादा घरों का दौरा किया।
3: Avec Didier qui paraît ici, mais autres non encore la liste électorale ici.
2: घर घर जाकर की गई प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब जांच का कार्य शुरू होता है।
3: चंदनी देवी,
2: इस अभ्यास के लिए 30 मई तक 45 केंद्र खोले गए हैं।
4: Mon vin vérifié et dans mon ordre résiste pour mon vote.
5: Oui, mon tout mon nom et là mon dégaussant.
6: Je me guette si mon nom bien, si avec mon adresse, si c'est ok, mon guette, mon checké, si correct.
2: साथ ही नागरिकों को अपने व्यक्तिगत विवरण SMS या आयोग की वेबसाइट पर जाकर जांच करने की मांग की जाती है। इसके लिए SMS सेवा सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। चुनाव आयुक्त मोहम्मद इरफान अब्दुल रहमान कहते हैं, पिछले 5 वर्षों में हमने देखा कि ज्यादा मैसेजेस मोबाइल फोन पर आते हैं या हमारे वेबसाइट पर कम लोग हमारे केंद्रों में जाते हैं। मतदाता पंजीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ताकि एक भरोसेमंद, पारदर्शी और विश्वसनीय मतदाता सूची सुनिश्चित की जा सके। अगर इस साल अगस्त महीने तक कोई 18 साल का हो जाएगा तब वो मतदाताओं की सूची में अपना नाम शामिल करवा सकता है। अगर पिछले साल से इस साल के बीच पता बदल दिया हो और नया चुनाव क्षेत्र में रहने चला गया हो तब भी आपकी मदद की जा सकती है। और अगर आपका नाम गलत लिखा हो, अस्थायी

0: सूची में और आईडी नंबर भी सही नहीं हो तब भी उन्हें सही से लिखने में मदद कर सकते हैं। 2026 की मतदाता सूची 16 अगस्त से लागू हो जाएगी।
1: पुराने मंत्री नंदबुदा के बेटे जीनू बुदा की मौत उसका गला दबाने से हुई है। कल रात पुलिस के चीफ फोरेंसिक ऑफिसर डॉक्टर सुरेश कुमार गंगादेन की ओर से जो शव परीक्षण किया गया उससे ये बात सामने आई है। जीनू बुदा को कल निकोलिया में निर्जीव पाया गया। इस मामले में दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज दिन के दौरान जॉ माइल ओलिविये रोज और जॉ और लुई इस्माइल मिगेल लारुबॉब को वीकेंड कोर्ट में मजिस्ट्रेट ननलोल के सामने पेश किया गया। उन पर हत्या का स्थायी आरोप लगाया गया है। इंक्वायरी ऑफिसर ने बताया कि पुलिस को उनकी रिहाई पर आपत्ति है क्योंकि सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने और उनके भागने का खतरा है। दोनों ही संदिग्ध लोगों को अगले 18 मई तक पुलिस सेल में भेजा गया है। उन्हें अगले सोमवार 18 मई को मापू अदालत में पेश किया जाएगा। और पुलिस हिरासत में एक रात बिताने के बाद सर्जेंट नोबे मानुवालू और कांस्टेबल नंदनी रागू को आज सुबह वीकेंड कोर्ट में पेश किया गया। उन पर एफसीसी एक्ट की सेक्शन 22 के अंतर्गत पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन का अस्थायी आरोप है। उन्हें वापस पुलिस सेल में भेजा गया है और उन्हें फिर से सोमवार को पॉम्पलमुस की अदालत में पेश किया जाएगा। रुख करती है पॉम्पलमुस के कार्डियक सेंटर का, जहां एक नई हाईटेक हॉट लंग मशीन अब ओपन हार्ट सर्जरीज को और बेहतर बनाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये मशीन ऑपरेशन के दौरान खून की ज़रूरत को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगी। ये एक बड़ी प्रगति मानी जा रही है जिससे हर दिन 10 से ज़्यादा पॉइंट खून की बचत हो सकेगी और राष्ट्रीय ब्लड बैंक पर दबाव भी कम होगा।
0: शनिवार सुबह 9:30 बजे चिकित्सा टीम इस मरीज में ओपन हार्ट सर्जरी करने की तैयारी कर रही है। ये काफ़ी जटिल ऑपरेशन है जिसके लिए 4 से 5 पॉइंट खून की ज़रूरत, लेकिन शनिवार के दिन केवल एक ही पॉइंट खून। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी से एक नया उपकरण लाया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और स्पष्ट रूप से हिसाब किया जाता है कि ऑपरेशन के दौरान कितने खून की आवश्यकता होगी और इसकी बदौलत नुकसान को घटाया जा सकेगा। कार्डियक सर्विसेज के निदेशक डॉक्टर सुनील गणेश ने कहा,
2: चिरूरजियन ओपेरे नो रिले के नूवेल अपाट्रिन एन मशीन के अपेलेन हार्ट लंग मशीन प्रेंड रिले ले के एक सो पोमो हमन मशीन आज सेविल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल क्लिक कैलकुल एग्जैक्टमेंट सा टेंपरेचर ले को ला टेंपरेचर ले को बेसे फ्लो डिसेंट डन ले को ऑसी बेसे ए डोंक सा मशीन ला ली पुडिया नू dès le flot pialé, ça y est, pas besoin autant d'issant que ça. Lui permet de ban chirurgien, ban anesthésiste, ban perfuriste, travailler avec plus de tranquillité.
0: उपकरण को चलाना काफी आसान है। परफ्यूशनिस्ट मरीज की जानकारियां डालते हैं, जैसे कि उसकी उम्र, वजन और साइज। बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ संचालित करता है।
2: पॉडियन एन एमबीए मशीन nous participer con par exemple concentration oxygène dans 10 ans concentration carbone dioxyde dans 10 ans pH 10 ans sa machine là en continu il dit nous PO2 combien PCO2 combien saturation combien pH combien li extraordinaire c'est tout l'intelligence artificielle
0: 15 din hue hain jab se 30 million rupaye ki lagat ke do upkaran prapt hue hain कर्मचारियों को एक विदेशी विशेषज्ञ की ओर से एक पहला प्रशिक्षण भी प्राप्त हो चुका है। पॉम्पलमुस के कार्डियक सेंटर में हर साल 900 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं। इस आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की बदौलत राष्ट्रीय ब्लड बैंक को भी काफ़ी राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे के संदर्भ में शनिवार को केंद्र में एक रक्तदान का आयोजन किया गया। बहुत से दाता उपस्थित हुए।
1: Fédération des travailleurs Nicole Pendjamenko et press conference à Yodjit Kismébel Nitsesamo qui teen textile factory on qui lagbhag 550 karmacharyon ki sthiti par charcha ki gayi jo kathinaiyon ka samna kar rahi hai. Atma Santuni karmacharyon ke vetan mein deri aur client textile tatha universal fabrics ki do factoryon mein kamgaron को तकनीकी बेरोजगारी पर भेजे जाने का मुद्दा उठाया। इस पर प्रतिक्रिया

0: प्रतिक्रिया देते हुए श्रम मंत्री रिजा उद्दीन ने कहा कि इस टेक्सटाइल समूह को अपने कर्मचारियों के प्रति वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
1: एफटीयू के आत्मा शांतो ने उन कठिनाइयों पर टिप्पणी की जिनका सामना अभी तीन टेक्सटाइल्स कारखानों क्लाइन टेक्सटाइल्स यूनिवर्सल फैब्रिक्स और वर्ल्ड नीड्स के 550 कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक इन कर्मचारियों के अनुसार उनकी तनख्वाह देने में देरी हुई है और उनके भविष्य को लेकर भी वे अनिश्चित हैं।
2: Pas capable pays ben transporter. Nous finissons trois rencontres avec le ministre, mais hier même nous finissons une rencontre avec la direction de World It. Et la direction fin répond pareil, qu'ils ont pu négocier.
1: Phone par संपर्क रखने पर श्रम मंत्री रिजा उद्दीन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
3: Malheureusement, il y a une centaine de travailleurs qui pas encore gagné la paix, donc c'est totalement inacceptable. Et nous faisons un appel au management de Sabanizina, à ceux qui, tout le droit des travailleurs, ils ont respecté et ils ont gagné cette casse à temps. Donc le management, soit il injecte casse dans sa Sabanizina, soit il prend une mesure qui bizarre. Le ban employeur paye PRGF.
1: इस बीच एफटीयू अपनी कोशिश बरकरार रख रहा है और वो जल्द ही तीनों कारखानों के सभी कर्मचारियों को जुटाने का इरादा रखता है।
0: गार्डियंस कस्टम सर्विस के एक डेलीगेशन ने मर्चेंट्स रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक के साथ जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी के साथ भेंट की। इसके अंतर्गत मर्चेंट्स में पार्सल्स के प्रवेश की प्रक्रिया नियंत्रित करने की दिशा में रिस्क मैनेजमेंट प्रणालियां मजबूत करने और उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। जूनियर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ड्रग तस्करी से जुड़े खतरों के बेहतर संचालन और सरकारी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन की कटिबद्धता ली है। आज 16 मई को शनि जयंती मनाई जा रही है। ये दिन भगवान शनि देव के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय के देवता माना जाता है। भारत के साथ साथ मॉरिशस में भी भक्त मंदिरों में पूजा और प्रार्थना कर शनि जयंती मना रही है। अशित रहू की ये रिपोर्ट पेश है।

0: पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें छाया पुत्र भी कहा जाता है। उनका काला स्वरूप रहस्य, गहराई और गंभीरता का प्रतीक माना जाता है। शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और सत्य व न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। शनि देव का वाहन कौवा है, जो सतर्कता और कर्मों की याद दिलाता है। वही लोहा मेहनत और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। आज शनिवार के दिन श्रद्धालु सरसों का तेल, काले तिल और शमी के पत्ते अर्पित कर शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
1: उस शनि देव को विशेष रूप से हम लोग मतलब कि काला उरद जो कि होता है वो चढ़ाते हैं, काला कपड़ा और काला तिल, इससे मतलब कि शनि देव को मतलब कि चढ़ा करके उसको प्रसन्न किया जाता है। बहुत बड़ा महत्व है, केवल शनि पूजन से कुछ नहीं होगा, शनि पूजन के बाद हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो जो कुछ भी मतलब हनुमान जी को हम चढ़ाते हैं वो शनि देव को भी चढ़ाते हैं। पीपल पेड़ का हम पेड़ की आराधना करते हैं, आठ परिक्रमा करने के पश्चात एक लोटा या तो शुद्ध मद पानी वो पीपल पेड़ में अर्घ देते हैं। जो कुछ भी चढ़ाते हैं वो सब प्रतीकात्मक रूप में कि एक दिन सब कुछ नश्वर हैं, सब नष्ट तो हो गई, तो काहे को अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, विरोध, रागी, दूसरों से नफरत करना, ये हमारे देवताओं ने ये हमको नहीं सिखलाया, इसलिए इन सब को जीतना है, इन सब को काबू करना है, इन सब को कंट्रोल कर करके फिर मतलब कि भगवान की आराधना उपासना करना है।
0: मान्यता है कि शनि की सारे साथी और ढैया के दौरान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन यही समय उसे धैर्य और सहनशीलता भी सिखाता है।
2: अगर पूजा चहला जाने के करे के कठिन तनको ने यह आदमी जो

0: सोचेला कि शनिदेव के पूजा जो है कथिन नहीं एगो फूल चढ़ा देबा तो शनिदेव खुशी हो जाला। हाँ ढेर कोई नहीं खुजला करे के पास की नहीं जाने से ना दे से। हाँ
1: शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं बल्कि जीवन में कर्म सत्य और अनुशासन का महत्व समझाने वाले शिक्षक भी माने जाते हैं।
2: विदेश में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ये उनके 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण का हिस्सा है जिसका उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत की रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना है। आम्स्टरडाम एयरपोर्ट पर नेदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के छोटे दौरे के बाद नेदरलैंड्स पहुंचे जहां अबूधाबी में उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। अफ्रीका की प्रमुख स्वास्थ्य एजेंसी ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पूर्वी इटूरी प्रांत में इबोला महामारी घोषित की है। अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार लगभग 246 मामले और 80 मौतें दर्ज की गई है, खासकर मुंगवालू और रुवांपारा के खनन क्षेत्रों में। युगांडा में के अधिकारियों ने भी शुक्रवार को कॉन्गो से आए इबोला के एक मामले की पुष्टि की है। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं।
3: दक्षिण पूर्व की तरफ से जो बादल बढ़ रहे हैं रह कर हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि रात में मौसम अच्छा रहेगा, फिर बाद में बादल घिरने लगेंगे और बारिश होगी मुख्य रूप से टापू के आधे पूर्वी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में और सेंट्रल प्लाटू पर। कभी कभी सामान्य से तेज बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 3.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में और लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। फिर भी धीरे धीरे उत्तर के लगून में समुद्र में कुछ सुधार आने लगेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 23 एवं 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:41 पर सूर्यास्त जबकि सुबह 6:31 पर सूर्योदय।

0: किसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए से अब तक पहुंचाने में हमें लविशा और लुडोविक का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

अटेंडेंट थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के दो बजे उनके पिता श्री आत्मानंद सोमी सामीनाथा पीले के घर तुलाहले नमेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार किए तोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM मेरांटी लेन डॉक्टर माये स्ट्रीट फ्लोरियाल में 77 साल की कुमारी पुष्मांती लीलोधारी जो ज्ञान नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे उनके घर मेरांटी लेन डॉक्टर माये स्ट्रीट फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगारा की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10:30 AM शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुनिए। सीईबी की तरफ से एक विज्ञप्ति, रॉयल रोड ऑसेनाल एवाको और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 17 मई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना सूचित किए फिर से बिजली की सप्लाई को जारी की जाएगी। पोर्ट लुइस, रुई कारिकल, त्रिश्नापोली, मालाका, कोरिंगा, रेने मेग्रो, पोलिवियाजिनी, गोरा इसाक और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 17 मई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना पूर्व सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। सीबी की तरफ से एक और विज्ञप्ति, एवेन्यू टूरो, डॉक्टर प्यारू, एवेन्यू नाबी, एवेन्यू फिलाओ, एवेन्यू बेटका, एवेन्यू सेंट आन, एवेन्यू बेटो और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 17 मई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। लालोरा, मालेंगा, बोबुआ, नुवेल डेकुवेर्त, सिमेट्री रोड, सिया कॉन्स्टांस, एनएचडीसी विन्योल और मुसलमान आजाली और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 17 मई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सीबी की तरफ से एक और विज्ञप्ति, मुसलमान तानाकुदी, मुसलमान लाइमून, एनएचडीसी रियों बेल सुरीनाम और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि 18 मई 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। एक और विज्ञप्ति सुनिए, सेबास्टोपोल, विलाज दु पेलग्रिन, सेबास्टोपोल रोड, सीताराम रोड, टूरिस्ट स्ट्रीट, क्लावे रोड, सुदीन रोड, रेजिडेंस ओपाल, बुम्बई स्ट्रीट और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल रविवार 17 मई सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच। फ्लोरियाल, एडवर्ड स्ट्रीट, किंग जॉर्ज एवेन्यू, मॉगो स्ट्रीट, बच लेन, हेस्केट हाइट्स स्ट्रीट, क्वीन मेरी एवेन्यू, जॉन कैनेडी एवेन्यू, जॉर्ज कुबेर स्ट्रीट, लाला लेन, लुसियन दे

Chazal Street, Ernest Arel Street और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 17 मई को मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सुबह के 8:30 बजे और 4 बजे के बीच, शाम के 4 बजे के बीच बिना सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। सीईबी इस असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हैं।

您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी श्रोताओं का प्रेम सहित नमस्कार है। इस क्षण आप रेडियो मॉरिशस से जुड़े हुए हैं, जहां आप सुन पा रहे हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम अनीता के साथ। भक्तों, भगवान कहते हैं कि जो आपके भाग्य में है उसे विधाता भी नहीं छीन सकते, फिर इस अनावश्यक चिंता में क्यों जलना। आप व्यर्थ ही कल के बोझ को आज के कंधों पर धो रहे हैं। जो बीत गया वह एक सपना था और जो आने वाला है वह एक रहस्य है, पर जो आज है वह प्रभु का दिया हुआ उपहार है। श्रोताओं, स्मरण रहे कि जीवन के धागे प्रभु के हाथों में हैं और प्रभु कभी भी गलत गांठ नहीं लगाते हैं। तो आइए इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

भक्तजन, कहा गया है कि मनुष्य जीवन कठिन नहीं, उसकी सोच कठिन होती है। अतः पहला संदेश है कि जिस बात को आप बार बार सोचते हैं, वही आपका भविष्य बन जाता है। इसलिए अपनी सोच को शुद्ध कीजिए। दूसरा संदेश, हर व्यक्ति आपको समझे यह आवश्यक नहीं, किंतु आप स्वयं अपने को समझे यह अधिक आवश्यक है। तीसरा संदेश यह है कि अतीत का बोझ लेकर कोई आगे नहीं बढ़ता, छोड़ना सीखो तभी नया शुरू होगा। चौथा संदेश, ईर्ष्या मन को जलाती है और विनम्रता मन को शांत करती है। जिसे शांति चाहिए उसे विनम्रता अपनानी होगी। पांचवा संदेश, जीवन में वही जीतता है जो हर परिस्थिति में धैर्य नहीं खोता है।

0: प्रियजन, अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी हर क्षण परखना रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है, वह यह कि वो सदा सोचे कि यदि इसी समय मैं मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। यह कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूंगा। कभी कभी काल जो है कल का समय नहीं देता है।
1: जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में लकड़ी का कितना प्रदान है देखिए।

भक्तों, यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात मोह का त्याग होता है, आत्मिक योग बल में वृद्धि हो जाती है, योग बल के कारण मन स्थिर हो जाता है। स्थित प्रज्ञ होने के पश्चात मनुष्य का परमात्मा के साथ योग हो जाता है। आप भी आत्मिक योग बल द्वारा अपनी अंतरात्मा में झांक कर परमात्मा को देखने का प्रयास करें और स्थित प्रज्ञ बन जाएं।

श्रोताओं, मनुष्य साधन से नहीं साधना से महान बनता है, भवन से नहीं भावना से महान बनता है, उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से महान बनता है। तो इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। साथ देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

मौजूद सामीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम के 5 सुतून हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से खुशी और बरकात को हासिल करने का ज़रिया हैं।

हज उन खास सुतूनों में से एक है। हज बहुत सी चीज़ें हमें सिखाता है, इत्तेहाद, भाईचारा और कुर्बानी, और ये भी कि सब मुसलमान भाई भाई हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, गोरे हों या काले, सब एक साथ एक जगह मिलकर हज अदा करते हैं।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हरम की ज़मीन हो, सामने काबा हो, हाथ में कुरान और दिल में ईमान हो, ज़ुबान पर कलमा हो, हर मुसलमान यही आरज़ू करता है कि मौत आए तो इस तरह आए, अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर करना, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिसेस अंजू ने टेक्निक में हमारा साथ दिया, हम इनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला जितना कोई श्रोता लोगन हवन सब कोई के स्वागत करत हई रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। आप सब कोई के साथ देवे खातिर रत्ना आप सब कोई के साथ जुड़गल हवन ना तो चला आज के हई कार्यक्रम के मजेदार गीतन से सजावब जा और बढ़िया कार्यक्रम चली अभी से लेके रात के 11 बजे ले। शामदी के रात है तो शामदी के रात बहुत जलसा हुएला और जलसा करे खातिर सब कोई के साथ बहुत जरूरी है। काहे के जब परिवार संगे हो जाला मिल जाला तो एगो बढ़िया मौसम एगो बढ़िया समय बितावे में हई जोन भोजपुरी गीत हई के जोन रंगत है वो बहुत जस्ती निमन लगेला। तो चला आज के कार्यक्रम के संगे संगे जुड़ जाइए और मजेदार कार्यक्रम के साथ जितना कोई हमनी के संगे जुड़ गल हवन बस आशा है ये करब जा कि रात के 11 बजे ले आप सब कोई हमनी के साथ दे बजा और मजेदार कार्यक्रम सुने खातिन बिल्कुल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर जुड़ जाइए। और जे तोरा मन बा कोनो गीत बहुत दिन से तोरा दिमाग में चलता जे तोरा मन बा कोनो गीत कोई खातिन डेडिकेट करे के तो कौन चीज करे के चाहिला हो टेलीफोन उठाव 4028085 नंबर घुमाव हमनी के संगे बतिया और अपन पसंदीदा गीत के तू मांग करे सकब और जे काम में हवा तोहर काम तनी जस्ती बा नहीं मिलता लेता वहां टेलीफोने करे के तो मेसाज विदा करे सकब। हाँ हो 5251700 पर। तो चला आज के कार्यक्रम के शुरुआत करब जा आज के है पहला गीत संगे सुरेश किस्तू के आवाज में रखल है बढ़िया बढ़िया गीत धक धक और है गीत के साथ करब जा एगो बढ़िया शुरुआत 2023 के बरिस के है गीत है सुरेश किस्तू के आवाज में रखल। तो चला शुरू करब जा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
2: भोजपुरी,
3: भोजपुरी तड़का,
2: तड़का।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखा था हवन और अभी बढ़िया बढ़िया गीत संगे सब कोई हमनी के साथ देवत हवन और मजेदार कार्यक्रम संगे अपन अपन पसंदीदा गीत के तू फरमाइश करे था बहुत बहुत प्यार आप सब कोई के। तो चला आज के जुन पहला पसंदीदा गीत है नवीन जी खातिन चला अब जा नवीन लक्ष्मण जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन रोज बैल बगल से और उनकर पत्नी हवन चित्रा जी जे हमेशा बहुत प्यार से साथ देवे ला। चित्रा जी बस अच्छा हो जाइए और ईश्वर तोरा बहुत बहुत शक्ति दे। और चला हैजा पर निवेदिता और सच्चिदानंद जी भी साथ है देवत हवन मेबक से ललिता और धनराज चरण जी स्वीटी अपन प्यारी बेटी संगे जुड़ गल हवन मोडाल बिया बगल से राज और अमृता ओबिलक साथ है देवत हवन गौबुआ माफ करिएगा न्यू ग्रोव बगल से और रमेश और प्रीति जी गौबुआ बगल से और अभेदानंद पीजन के आवाज में रखल हमार संस्कृति और हई गीत के तुम मांग करत हव तो जरूर चलाओ अब जाओरी जानत हव न अभी जैसे मौसम में परिवर्तन चलाल बा तो मौसम जब परिवर्तन करेलन स तो तबियत भी तनी ऊपर नीचे हो जाला तो जैसे जानत हव कौन दिन एगो दुखतिया हमार सौत में आल रहल तो सब कोई के ऊ बोलत हवन कैसे कौन चीज फैकोशो लेवे के तो हमार पप्पू भैया संगे गल रहल तो डॉक्टर बोले जानत हव अभी जैसे लेता हुआ सौजे होवा था लाइकवन लोग के बुई करके पानी पिया तो सब कोई तो समझ गल पर हमार पप्पू भैया जन है ना उतनी ट्यूबलाइट है तनी तार दे समझेलन सब वो हाथ उठा के डॉक्टर से पूछे डॉक्टर जी एगो सवाल बा हमार मन में बोले हाँ पप्पू भैया बोला कौन सवाल बा बोले हमनी के मन में एगो सवाल आवता जैसे तू बोलन कि लइकवन के बुई करके पानी पियाए के त लइकवन के बुई कर अब तब लइकवा मर नहीं जाए। अरे पप्पू भैया तू तो बुड़बक के बुड़बक लइकवन के बुई करके बोला था वन पानी बुई करके लइकवन के पियाए के हो

0: भोजपुरी
1: तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे हई जाप चाची शांता सुकागी हमनी के संगे जुड़ गल हवन से जमिल फॉरेस्ट साइड से आ रहा जन्मदिन बा भाई अशोक के। तो चला अशोक जी तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हमारे एम्बे से टीम देने से और तोहर सब परिवार सुकागी परिवार की ओर से खासकर तोहर माता जी शांता जी और संगे हवन सब भाई लोग सुजीत सुदेश रखावीन और किरण और संजना भावेश और नाएश और ये चाची शांता सुकागी हमने के बोले तनी सोना नयन के गीतवा बजा द। तो चला गमट किंग सोना नयन के आवाज में रखा है अगला गीत करब जा खास तो हर खातिन और जाइते जाइते चला हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब सा काहे के जब हंसे हसब जब जन्म की कुमाजा कैसे बोलब जीवन में तनी तड़का बा जीवन में तनी जेपिस बा मिर्च मसाला।

बात तो जानत हो, हमर जो चाची है ना, हमर चाची चमेली, कौन दिन घरे बैठे बैठे हमनी के बोले हम एगो नवा काम शुरू कर ले हैं। हम बोले अरे वाह चाची, है तो अच्छा बात है, जानत हो सब महिला लोग के काम करे के चाहिला। बोले हाँ हम बहुत सोच ली पर हमनी के एक गो निदे मिलल। हम बोले अच्छा, बोले तो कौन काम शुरू कर ले हो, बोले तो कौन व्यवसाय में हव। बोले हाँ देखा, हम एगो काम सुन ले हाँ, अभी जाना था सबरो सगरो सब सब कोई बोले लन सा, कोई बतवा बतियाए के कोई संगतिया नहीं बा, तो हम सोचली हम एगो ऐसन काम शुरू करब जेकरा बहुत दुख है और जे जीवन में कोनो दुख सुने होला आदमी नहीं है, तो हम ओकर दुख सुनब और हम बोलब ओकरा देखा तोहर दुख जे छोटा रही तो हम 500 रुपया लेब और जे तनी बड़ा रही 1000 रुपया में हम काम कर देव। कौन काम करब? अरे दुख सुने के हो, ओकर दुख सुनब, हम बैठ के निमन से ओकर दुख सुनब, छोटा दुख के 500 रुपया लेब और बड़ा दुख के 1000 रुपया और जे जानत हव जे कोई के संगे रोवे के पड़ी तब बस खाली 3000 रुपया में हम काम कर देव। बोली अरे वाह चाची, दुख सुने के है कोनो काम है हो,

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का मजेदार कार्यक्रम और जितना प्यार से सब कोई हमनी के टेलीफोन करत हवन बस तनी तनी पशांस रखिया काहे के ढेर कोई लालिन में जुड़ गल हवन 4028085 और गते गते कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जा 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत है मजेदार कार्यक्रम तो चला आज के जो अगला गीत है चला अब जा मीरा बाई दमिया खातिन जे हमनी के संगे जुड़ गल हवन मौर डाल बिया बगल से और उनकर पति जी भी साथ देवत हवन दमिया परिवार पादिया परिवार और अपन बेटी दामाद खातिन अगला गीत के मांग करत हवन दाना जी नाव जी के आवाज में रखल जवानी के रेल एल्बम से लेवल गए मेवा फरेला है गीत वा तोहर खातिन चलाओ अब जा औरी चाचा के तक का बोलब चाचा तक काल बहुत परेशान रहलन त हम बोली का होल चाचा बोले रात के जानत हवा हमर हिया चोर चरार हम बोली हाय रे कैसे कौन ची होल बोले चोर ऐसे चलाल इतना बड़ का बंदूक लेके तो हम तो डिरा गई नी तो हम बोली हाय फिर कौन ची होल बोले हाँ हमर कपार पे ऐसे बंदूक रख के बोले सोना किधर है तो हम तो बोलनी पूरा घर वा खाली बा भैयो जहाँ जहाँ मन करे हुआ जाके सूत जइयो अरे चाचा सूते के नहीं वो बोलत रहलन तोरा बीजू तोहर जन सोना के गहना वो कर बोलत रहलन बोले हाय ऐसे तो हम सोच लियो काहे हमर कपार पे बंदूक मार के ठोक के हमनी के भगा देलक
2: मेवा

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और हाइजा पर वाकवा बगल से बायाबू आफे संगे हवन असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और उनकर संगत या हवन आपी और उनकर पत्नी आउरी भायाबू हमने के बोले आज तनी जुबेदा के लो तो चला द हमर खातिर आउरी हई गीतवा से बहुत कोई खुशी रहे लन जुबेदा लो तो लेके जाए रंभा राम तोहल के आवाज में रखल हई गीत आउरी है हमने के संगे जुड़ गल हवन फुलवंती जी वाकवा से संगे हवन उनकर बेटा उषन बेटी हवन भावना आउरी हवन उनकर पति देवानंद और चला है जा पर पीतों से हमनी के संगे जुड़ गल हवन अमृता जी अमृता गणेश और सब गणेश परिवार खास कर सोनिया और परी उनकर बेटा हवन विषम और पतो हवन मीनाक्षी तो चला है ये गीत करब जाओ उनकर खातिन उनकर सब परिवार गणेश खातिन और ये जुबेदाल लो तो लेके जाए है गीत के संगे संगे चला एगो बढ़िया बढ़िया का बोलब चचा और चाची के तो जितना झगड़ा होवेला का बोलब चाची बोले हाँ तरह हमने के आवाज सुने के बहुत परेशानी होला ना तो देखिए आज के बाद तरह कबो हमर आवाज सुने के नहीं मिली तो चाचा बोले का है तू गुंगा होई बका आज से बोले नहीं हम तोरा बहरा बनावा आज के बाद

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:37 हो गल बा और चला लागी चलाओ अब जा आशी खातिन जब भी घरे जात हवन घूमे गल रहलन दादी चिंता दादी रश्मी पुपू आरती और बहिन विदुषी संगे आवरी बोले ए दादी के गीतवा चला द हमर खातिन जरूर हो भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के है गीत तोहर खातिन और तोहर सब जोली जोली दादी खातिन तोहर पुपू खातिन तोहर बहिन लोग खातिन और जितना कोई अभी साथ देवा धवन उन सब कोई खातिन हंसते मुस्कुराते बस ऐसने हंसते रहिए साथ देते रहिए जा आवरी जानत हव कौन दिन हमर चाची जोन कहूँ गल रलन तनी तार दे हो गल जैसे घर आल त चचा त्राका में बोले कहाँ रहले काहे इतना तार दे होल कहाँ गल रहले हो बोले हाँ हौजा पर जानत हवा रक्त के दान करत रहलन त हम भी सोचली तनी पुण्य कमाव त हम भी जाके तनी रक्त के दान करके अइनी बोले हाँ हमर खून पीते पीते जस्ती हो गल हये से तनी तनी ओवरफ्लो हो गल हये से दान करे गल रहले का हो चचा जब देखत अब चाची के पीछे तू पड़ जाला

मसाला पीसे के कर हो मामा के कंच पकाए मच्छी के खाई हो

कहाँ जाला बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार गीत संगीत हैजा पर चाची ललिता भी जुड़ गल हवन। आज बहुत खुशहाली में हवा का है कि आज बहुत जन्मदिन मनावे गल हवन और हौजा पर रिधान और कियान साथ देवत हवन और संगे हवन उनकर बहिन सुदेवी देवीना ज्ञानी और साथ हवन दादी प्रभावती छोटी माला राम जावन भाई आत्माराम भाई हरीश खातिन और जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन लागी नाही छूटे राम। अरे चाची ललिता के बहुते फेवरेट गीत और है ये गीत गायत्री जी के भी बहुत फेवरेट है। हाँ नोवल फोंस से उस साथ देवत हवन संगे हवन बेटा अजय मामी हवन कल्याणी मोहन भौजी हवन शकुंतला जी मोताइलोंग से और उनकर खास दोस्त गीता बाई जे हमेशा साथ देवेलन नोवल फोंस से। तो चला है ये हंसते मुस्कुराते है गीत सुनब जा तलत महमूद और लता मंगेशकर के आवाज़ में रखल हिंदी फिल्म लागी नाही छूटे राम के है गीत वा और मजेदार गीत संगे बस साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर निरपाल जरी भी हमारे संगे जुड़ गल हवन बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिटानिया से उस साथ देवत हवन तो हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और चाचा और चाची के का बोलब चाची बोले चाचा के हाँ एगो बात बोले ना हमनी के तोहरा हमनी के कौन चीज अच्छा लगेला हमर सुंदरता तोहरा अच्छा लगेला जस्ती कि हमर संस्कार अच्छा लगेला तो चाचा बोले हाथ पगली हमनी के तोहरा है मजाक करे के जो आदत है वो ही सबसे जास्ती अच्छा लगेला।

0: भोजपुरी तड़का
1: मजेदार भोजपुरी तड़का और ही चला अगला गीत जन है। चला अगला गीत बहुत ही मजेदार गीत है जा पर सुदेवी जी वाकवास से जुड़ गल हवान और वो हमने के बोले एगो बढ़िया गीत तनी हमर खातिन चला द सुदेवी जी साथ देवत हवन और अगला गीत उनकर दीदी ललिता खातिन भाई आत्माराम दीदी सुनीता शोभा देवी ना मलेगा से हवन सुधीर प्रतिमा सोहम और सब राम रतन परिवार खातिन और है जो अगला गीत है कृषि रुदोई की आवाज में रखल सास बहू में हो गलबा लड़ाई जब लड़ाई हो जाला तो जाने ला ना कौन ची होला और कौन दिन भैया मनोहर हमनी के चाचा गजोधर के बोले भैया जाना था दुनिया के दूगो सबसे बहुत घातक खतरनाक हथियार के नाम जाने ला चाचा बोले ला हाँ जानी ला पहला हा अपन बुढ़िया के आंसू और दूसर हा पड़ोसन के मुस्कुराहट है जब पड़ेला तो आदमी घायल हो जाला।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का मजेदार कार्यक्रम और चला सब कोई अभी हंसता मुस्कुराता है ये तो चाहेला जिंदगी के जुन त्राका है जुन तनाव है वो भगा भग भाग जाला जब तू तनी सन हंस दे बता और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब सा जिंदगी में संगे संगे त्याग उसे हैजा पर चाची शांति जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनका जितना संगतिया जितना परिवार हवन मराठी परिवार दागोजिया के उनकर खातिर अगला गीत गिरीश रूपचंद के आवाज में रखल रोमांटिक नानी और ई नाना और ई खास कर उनका जुन भगीना हवन ओ अप दागोजिया से उनकर खातिर चलाओ अब जा है अगला गीत और हंसते मुस्कुराते सब साथ जुड़ गल हवन तो बस साथ इसने देते रहिए जा

औरी जानत हव चचा जी कौन दिन एगो गांव में पार्टी पार्टी रहल त हौजा चल गल अकेले त जब हुआ गल त ओकर संगतिया सब पूछत त काहे काहे अपन काहे अकेले चलैलब पत्नी कहाँ ह बोले पत्नी के नै अनले हई बोले काहे बोले उ गांव के ह तो मनोहर भैया बोले गांव के हा हम तो सोचली तोहर हा तोहर बुढ़िया हा बोले अरे बुढ़बक बुढ़िया हमार हा पर गांव से हा उ नहीं जानेला है सब पार्टी वार्टी।

0: भोजपुरी तड़का
1: चले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जा और हाई जा पर बिल्कुल 10 बजे के बस एगो मिनट रहल बा और अगला गीत जन है सुनीता जी खातिन चलाओ अब जा जी हमनी के साथ देवत हवन गाँव गो बगल से उनकर बहिन हवन कोंगोमा से विमला जी गुडलैंड से हवन अमृता जी और गाँव गोप से ही साथ देवत हवन वीना जी और किशोर किमिया के आवाज़ में रखल हई अगला गीत चलाओ अब जाओ उनकर खातिन और उनकर सब परिवार खातिन साथ देते रहिए जा 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम
2: ये है रेडियो मॉरिशस
0: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
3: आज की रात रत्ना के संगी एमबीसी

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का तो भारत है बहुत मजेदार भोजपुरी गीत संगे और जितना मजेदार मजेदार गीत तू मंगले हवा बहुत बढ़िया बढ़िया गीत आज के मौसम के परिवर्तन कर देलक और इस शामदी के रात है और शामदी के रात ऐसा बढ़िया बढ़िया गीत चलेला तो सच्चे के बुझाला पार्टी वार्टी घर में बैठ के रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन संगे तो चला मजेदार गीत संगे हैजा पर श्रीमती जी हमनी के संगे हवन सुयाक से और अगला गीत मोहेश परिवार और चंद्र मुनि परिवार इस कालिये से जुड़ गल हवन तो चला विनोद सिवदत्त के आवाज में रखल है गीत करब जा उनकर सगरो परिवार सब परिवार खातिर और चाचा जी हमनी के बोले जानत हव काल रात के हमनी के एगो सपना चला बोले अरे वाह कौन सपना चाचा बोले सपना में भगवान दिखल हमनी के हम बोले अरे वाह साक्षात तोरा तो दर्शन हो गल भगवान के

बोले पत्नी बनावे के अगाड़ी भगवान हमनी के बोले अच्छी अच्छा औरी समझदार पत्नी दुनिया के हर कोना में तोहरा मिली। हाँ हर कोना में मिली तक कौन सी होल तो भगवान कोना बोल के दुनिया के गोल काहे बना देलक। बोले दुनिया के हर कोना में तोरा अच्छा बुढ़िया मिली और ये भगवान के कपार में कौन सी चलाल दुनिया के गोल बना।

0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम चला 10:15 हो गल बातें और गणपत सत्यमी सैन के आवाज में रखा लगला गीत करब जा निरपाल जरी खातिन और मजेदार गीत संगे जुड़ब जा और का बोलब चाचा गजोधर के कमाल कौन दिन शहर गल शहर में एगो भीख मंगा ओकर से बोले साहब जी तनी 20 रुपया दे द हमनी के कॉफी पिए के तनी मन करता तो चाचा तब बोले तो काफी तो 10 रुपया में मिलेला तो बोले हाँ हमर गर्लफ्रेंड है ना ओकरा भी पियाओ अब तनी काफी बोला अरे भिखारी होके तोरा गर्लफ्रेंड भी रख ले हो बोले नहीं हो साहब जी का बोलब हमर गर्लफ्रेंड हमनी के भिखारी बना दिलक

0: भोजपुरी तड़का तड़का।
1: अगला गीत किशोर कुमार राम इस्सा के आवाज में रखल कीड़िंग करांग और हाय गीत कर अब जा देवी जी खातिन दे जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनका सब परिवार खातिन कीड़िंग करांग। चलो तनी कर अब जा कीड़िंग करांग हाय गीत संगे।

0: भोजपुरी तड़का
1: जहाँ बर्तन रहेला हुआ तनी आवाज तो होला बजेला। तो चला हैजा पर मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई साथ देवत हवन की रिंकारंग चलते रही जीवन में ऐसे हंसते रह मुस्कुराते रह। औरी अगला गीत जोन चमेली के है गीत चमेली चमेली सुनीता नंद को गई हवन और है गीत अनीता लाल जी के ओर से सुनब जाओ और है गीत सब इतु परिवार गोगा परिवार नागेश्वर परिवार और लाल जी परिवार खातिर। और कौन दिन चचा और चाची तनी अपन तेरास में बैठल रहल और चचा तनी गुरकी मारत रहल।

आउरी चचा बोले हाँ हम तो हर बिन कबो जी नहीं सकब। तो चाची बोले सच्चे है तू बोलत हवा कि तोहर दारू। तो चचा बोले हम तो दारू से बोलत हई हो का तू सुनत हवा हम तोहर से नहीं बोलत हई दारू से बोलत हई।

0: भोजपुरी
1: तड़का
0: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आउरी चला रोजील से साजिद जी हमनी के संगे जोड़ गल हवन और उनका जितना सखी हवन जितना सहेली हवन जितना परिवार सब कोई हवन साथ देवत हवन और उनका रल बचपन के दोस्त रत्नाबाई और विजय लक्ष्मी बाई आज उनकर से भेंट होगल जे फ्लाक से हमनी के हमेशा साथ देवेलन और उनकर खास दोस्त दीना सरोवर खातिन सोना नोयन के आवाज में रखल है गीत के उमंग कर ले हुआ तो चलो मजेदार गीत संगे साथ देवब जा और हंसते मुस्कुराते बस देते रहिए साथ हमनी के 10:32 हो गए बाजा बोल है गीत सुना रही है इनकी आवाज़ में।

और ये चला अगला गीत बहुत मजेदार है जहाँ पर उमा जी हमने के संगे क्यों पीप से जुड़ गल हवन और सरिता जी भी साथ है देवत हवन क्यों पीप से माफ कीजिएगा सरिता जी हवन काटो बोन से चला अभी थोड़ा घड़ी में तोहर गीत चलाओ अब जा सरिता जी और है जहाँ पर फूंजू साख से उमा जी साथ जुड़ गल हवन लीलो माथुर सुकन के आवाज में रखल अगला गीत चलाओ अब जा उनकर खातिन उनकर सब परिवार खातिन और जितना कोई हरदी हाँ जेकर हरदी आज बा उनकर सब खातिन उन सब खातिन आज के है गीत तोहर खातिन और अमृता जी है ये गीत तोहर खातिन भी चलाओ अब जा अमृता गणेश हमनी के साथ है देवत हवन पीतों से उनकर नातिन हवन सोनिया और परी और सब गणेश परिवार खातिन है गीत लीलो माथुर सुकन के आवाज़ में

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का औरी रात के पौने 11 बज गल बात चला है जा पर अगला गीत जोन है संतोष महादेव के आवाज में रखल राधा जी खातिन चलावब जासे तौद गए आमले से साथ देवत हवन औरी संतोष महादेव के आवाज में रखल है गीत उनकर सब परिवार खातिन और है जा पर हमनी के नीता खेदनी जी भी संगे जुड़ गल हवन। गुरुवार के उनकर जन्मदिन रहल। नीता जी तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत बधाई से जुलिया विलास से तू साथ देवत हव सब परिवार संगे खेदनी परिवार और जीता परिवार की ओर से तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत बधाई और चला है गीत सुनाओ अब जा और जितना कोई शादी के बंधन में बंधी उनकर खातिन है खास और ये चचा चाची के किस्सा तो सुनते चला। चाची चचा के बोले हाँ

सुना ना, कोनो दिन हमने के कोनो भूत पकड़ ली तो हम कौन सी करब। तो चाचा बोले देखा एक एक बात बोलब तोरा, जे तोरा कोनो भूत पकड़ ले तो ओकरा फट से हाली से ओकर हाथ में तू राखी बांध दिया तो ओकर से तोहर भाई बन जाए। और तो जानत हो ना, भाई और चुड़ैल में बहुत बड़ा रिश्ता रहेला।

भोजपुरी तड़का 11:10 रगल बा और माहिन जी है जे हमनी के साथ जुड़ गला वन भाई माहिन खातिन चलाओ अब डा भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज कुनाल बाबूलाल के आवाज में रखल दमाद बाबू घर दमाद कैसे खुशी रहेलन सा और का बोलब चचा के किस्सा जानत हव। चचा जी अपन ससुराल गइलन, उनकर सास बोले अरे वाह दमाद बाबू आज अचानक कैसे हमनी के तू दर्शन दे देलक। तो चचा बोले हाँ हो तुहार बेटी है, बेटी से झगड़ा हो गल बा और हमनी के बोले जहन्नम में जाइया हवे से चल ऐनी तुहर हिया। चला हंसते मुस्कुराते हाइये बढ़िया गीत दमाद बाबू और दमाद बाबू के गीत जितना दमाद बाबू हवन उन सब कोई खातिन बहुत मजेदार गीत। हंसते मुस्कुराते तनी थपरी बजा के

0: भोजपुरी तड़का
1: और ये चला है जहाँ पर रोज बेल से हमनी के साथ है देवत हवन संजय जी, पत्नी वीना, संगे हवन गीता, कृष्णा, माला, उनका सब परिवार, अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लैग से हमनी के सोना नोयन के गीत के तू मांग कर ले रलान, पर अब बहुत कम ती समय रह गल बा तो चलाओ अब जा है अगला गीत बहाल गौरी और सुग्रीव गौरी के आवाज में रखल संजय जी के पसंद पर है ये गीत करब जा सरिता जी खातिन काथोबोन से, मानती जी हमनी के साथ है देवत हवन वेलफॉन्स से, अनंती आरती और उनकर चिंता जी साथ है देवत हवन, श्यामा जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन और चाची शांता सुकागी से जमील फॉरेस्ट साइड से हमनी के बोले जन्मदिन के है जो गीत तू चलाई रहे रहा बहुत खुशी होगा, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देते रहिए। और है आखिरी गीत रही मामा पापा और अगवा बहाल गौरी और सुग्रीव गौरी की आवाज़ में। अच्छा आशा है ये करब जा कि आप सब कोई के आज के कार्यक्रम अच्छा लगा, तो चला फेरों से भेंट आप सावत शाम दिगे रात के 9 बजे से लेके 10 बजे नहीं पर 11 बजे नहीं 2 घंटा के सफर। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे, चलते चलते हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, नमस्कार शुभ रात्रि सब कोई के।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। मेरे प्यारे प्यारे श्रोताओं को नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। आशा करती हूँ कि सर्दी के इस मौसम में आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बस अकेलेपन को दूर करते हुए आपका स्वागत है सुनहरे पल कार्यक्रम में। आपको हमेशा ले चलते हैं गोल्डन एरा में उन एक्टर्स एक्ट्रेसेस संगीतकार गीतकार म्यूजिक गीत के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। आज हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत ग्रेसफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक, अगर किसी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है तो वो है शर्मिला टैगोर। उनके गाने इतने मस्त है तो क्यों ना आज सुनहरे पल इनके नाम।

शर्मिला टैगोर की पर्सनालिटी में एक अलग ही नजाकत, सोफिस्टिकेशन और एलेगेंस नजर आती थी। 60s और 70s के दौर में जब बॉलीवुड अपने गोल्डन फेज में था, तब शर्मिला टैगोर ने अपनी एक्टिंग, अपनी ब्यूटी और एक्सप्रेसिव आंखों से लाखों दिलों को जीत लिया था। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा की एक टाइमलेस आइकॉन बनी।

शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में हुआ था। वो एक प्रेस्टीजियस बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं और नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से संबंध रखती हैं। बचपन से ही उनमें एक कल्चरल और आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट था जिसने उनके पर्सनालिटी को और भी रिफाइंड बना दिया। वैसे उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बंगाली सिनेमा के लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे के साथ फिल्म अपूर संसार से की थी। इतनी कम उम्र में भी उनकी एक्टिंग में मैच्योरिटी और नेचुरल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते थे।

बॉलीवुड में शर्मिला टैगोर की एंट्री किसी सपने से कम नहीं थी। फिल्म कश्मीर की कली में उनके ऑपोजिट द लेजेंडरी एक्टर शम्मी कपूर। इस फिल्म में उन्हें ओवरनाइट यानी कि रातों रात सुपरस्टार बना दिया। ये चांद सा रोशन चेहरा या फिर जितने भी गाने रहे, आज भी उनकी खूबसूरती और चार्म को याद दिलाते हैं। उनकी स्माइल और ग्रेसफुल स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें हर जेनरेशन का फेवरेट बना दिया।

इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे आराधना, अमर प्रेम, सफर, दाग, मौसम, चुपके चुपके, एन इवनिंग इन पेरिस।

पगेरा पगेरा फिल्म आराधना में राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया। मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना या फिर कोरा कागज था ये मन मेरा, गुनगुना रहे हैं भंवरे जैसे गाने आज भी एवरग्रीन क्लासिक्स माने जाते हैं। शर्मिला टैगोर की एक्टिंग में एक इमोशनल डेप्थ होती थी जो डायरेक्टली ऑडियंस के दिल को छू जाती थी।

वैसे उनकी फिल्मों की लिस्ट इतनी लंबी है, तो अमर प्रेम में उन्होंने एक ऐसी महिला का रोल निभाया जो समाज के ताने और दुख सहकर भी अपनी इंसानियत और ममता को नहीं छोड़ती। इस फिल्म में उनका डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस इतने पावरफुल थे कि आज भी लोग उनकी परफॉर्मेंस को याद करते हैं। उन्होंने ग्लैमरस रोल्स भी किए और सीरियस इमोशनल कैरेक्टर्स भी, और दोनों में ही वो इक्वली ब्रिलियंट रही।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू। आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

शर्मिला टैगोर की एक और खास बात थी उनका बोल्ड और मॉडर्न थिंकिंग। उस दौर में जब एक्ट्रेसेस को एक फिक्स्ड इमेज में देखा जाता था, तब शर्मिला जी ने अपनी इंडिविजुअलिटी को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस किया। वो बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेसेस में से थी जिन्होंने बिकिनी फोटो शूट करके सोसाइटी में ट्रेडिशनल सोच को चैलेंज किया, लेकिन उन्होंने हमेशा डिग्निटी और ग्रेस को मेंटेन भी रखा।

वैसे उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रही। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम के लेजेंडरी कैप्टेन मंसूर अली खान पटौदी से शादी की। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम आयशा सुल्ताना भी रखा, लेकिन फिल्म दुनिया में वो हमेशा शर्मिला टैगोर के नाम से ही मशहूर रही। उनके बच्चे भी एंटरटेनमेंट और पब्लिक लाइफ में सक्सेसफुल हुए। एक्टर सैफ अली खान, सोहा अली खान उनकी बेटी, और ज्वेलरी डिजाइनर सबा अली खान, अब तो बहू करीना और पोती भी है सारा अली खान।

शर्मिला टैगोर को उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए कई अवार्ड्स और ऑनर्स मिले। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें प्रेस्टिजियस पद्म भूषण अवार्ड भी दिया। वो इंडियन फिल्म सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही और सिनेमा के डेवलपमेंट में उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल्स भी निभाए।

रानी शर्मिला टैगोर को देखकर एक रॉयल एलिगेंस और टाइमलेस ब्यूटी का एहसास होता है। उनकी पर्सनालिटी में सिंप्लिसिटी और सोफिस्टिकेशन का परफेक्ट बैलेंस नजर आता है। वो उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने सिर्फ फिल्म्स में एक्टिंग नहीं की बल्कि इंडियन सिनेमा की डिग्निटी और क्लास को नई पहचान दी। शर्मिला टैगोर का नाम हमेशा बॉलीवुड के गोल्डन एरा की चमक, खूबसूरत अदाकारी और ग्रेसफुल स्टारडम के साथ जुड़ा रहेगा। उनकी फिल्में, उनकी मुस्कान, उनका अंदाज आज भी सिनेमा लवर्स के दिलों में एक खास जगह रखता है। प्रणाम, शुभ रात्रि।

इसमें हिकमत क्या है। सो उलमाए असरार में इसमें बहुत से असरार बयान किए, उसके बहुत सारे सीक्रेट्स मेंशन किए। उनमें से एक जो खुद हदीस पाक में, यानी इस सवाल का जवाब खुद हदीस पाक में और इसकी हिकमत खुद हदीस पाक में, वो ये है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफदलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, द मोस्ट सुपीरियर रिमेंबरेंस ऑफ अल्लाह इज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सबसे अफजल तरीन जिक्र और सबसे बेहतरीन जिक्र वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अफजलु दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड द मोस्ट सुपीरियर सप्लिकेशन इज अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में सबसे बेहतर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सो हुजूर सलाम ने इन दिनों के लिए हमें और आपको वो जिक्र अदा किया जो सबसे अफजल है, जो मोस्ट सुपीरियर है। हमें और आपको इन दिनों के लिए वो दुआ अदा की जो दुआ अफजल है, और ये दिन भी अफजल है, द मोस्ट सुपीरियर नाइट्स एंड डेज ऑफ द ईयर, पूरे साल की रातों में और दिनों में सबसे अफजल और बेहतरीन दिन और रात। सो यहां इंतखाब अफजल लिल अफजल हुआ, यानी अफजल तरीन जिक्र और दुआ को उन रातों के लिए मुंतखब किया गया और सेलेक्ट किया गया जो रातें और जो दिन सबसे बेहतर है। सो इस वजीफे को जो बहुत आसान है, सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये बहुत आसान इजी वजीफा है। 10 दिनों के लिए आपकी जुबान पर सुबह शाम इन मुबारक और पाकीज़ा कलिमात का विर्द होना चाहिए, ताकि इस जुबान को इन कलिमात का नूर नसीब और हमारी जुबान पर वो बातें आए, हमारे लिखने के दौरान हम वो बातें लिखें जिसमें नूर हो, जिसमें रोशनी, जिसमें उम्मत मुस्लिमा को यूनाइट किया जाए, उनको डिवाइड होने से बचाया जाए, जिसमें किसी को स्ट्रेस डिप्रेशन में डालने के बजाय उस गुफ्तगू से, उस तहरीर से, उस तकरीर से स्ट्रेस और डिप्रेशन और इस तरह की अमराज से निकाले, जिसमें किसी की तौहीन और तजलील के बजाय उसकी इज्जत और तकरीम का पहलू हो, बेअदबी रिस्क

डिसरिस्पेक्ट के बजाय अदब रिस्पेक्ट का पहलू है। जिन लोगों की जुबानों पर ये कलेमात होते हैं, जिनकी जुबानों पर सुबह शाम ये औरादे मुस्तफ़वी होते हैं, ये मुस्तफ़वी वज़ाइफ़ होते हैं, तो फिर अल्लाह पाक उनकी जुबानों को वो नूर अता करता है, उनकी जुबानों को वो रोशनी अता फरमाता है कि जिस रोशनी से माशरे के सोसाइटी के सारे अंधेरे छट जाते, सारी तारीखियां दूर हो जाती, डार्कनेस अंधेरा वो फिनिश हो जाता और उसके साथ साथ एक दुरूद है जिसको कहते हैं सलातुल कमाल, उसको भी अपना वजीफा मिला। सलातुल कमाल, कमाल का माना है परफेक्शन, कामिल। जाहिर है कि हर एक यहां भी परफेक्ट होना चाहता है, मोमिनीन में से, अहले ईमान में से और आखिरत में। तो इस दुरूद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इंसान को कामिल बना देता है, इंसान को परफेक्ट बना देता है। इस दुरूद में ये कलमा कमाल का आया है और उसका बराह रास्त पढ़ने वाले पर असर होता है। अगर आप ज्यादा ना पढ़ सके तो इन दिनों में और इन रातों में इसको 100 दफा पढ़ें, 100 times 100 दफा इसको पढ़ें। हर मुश्किल के लिए, हर डिफिकल्टी के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, फॉर एनी डिजीज, हार्डशिप के लिए, अलगरज इसकी बरकत से इंसान अल्लाह पाक से जो मांगता वो उसे आता है। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना मुहम्मद अदद कमालिल्लाह كما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وعدد كما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله وكما يليق بكماله آل حضرت نے فرمایا काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा तुम पे करोड़ों। इन रातों में, इन दिनों में स्पेशली वो काम करें जिससे अल्लाह राजी हो, जिससे उसके हबीब राजी हो। बहुत फितने हो गए, बहुत फसाद हो गए, आप कहते हैं ना बहुत दिजोत हो गया। खुदा के लिए इन 10 दिनों में अल्लाह की तरफ आए, अल्लाह के रसूल की तरफ आए। ये हज के अय्याम

0: ये ज्यारत के अय्याम है, ये हज के दिन है, ज्यारत के दिन है। हज का फैज और उसका नूर फकत मक्का मुकर्रमा तक और ज्यारत का नूर फकत मदीना मुनव्वरा तक महदूद नहीं होता। उसका वो नूर हर सू फैलता, पूरी दुनिया में फैलता चला जाता है। उस नूर को पाने के लिए जरूरी है कि हमारे दिल के बर्तन साफ हों, हमारे दिमाग के बर्तन साफ हों। इसलिए कि जब हम नापाक बर्तन में सालन नहीं डालते तो नापाक बर्तन में अपना पाक नूर कैसे डाल सकता है। सो फितने और फसाद से निकले, बुग़्ज़ो इनादो अदावत से निकले, जलेसी और गाकिन जैसी बीमारियां जिसने कैंसर की तरह आपको कमजोर कर रखा है, ये रूहानी कैंसर है, इससे निकला। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।

0: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।
1: My name is Anthony Gonsalves.

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट। मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट, मैं

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी, सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओ यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की।